0: दोस्तों, हम सभी एक मुसाफिर की तरह ही यहाँ पर हैं। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए और चलते रहिए।
1: मुसाफिर।
0: किशोर कुमार की आवाज में परिचय फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सब कुछ उस प्रभु के हाथ में है। अगर वो बनाना चाहता है तो बनाएगा, और अगर बिगाड़ना चाहता है तो बिगाड़ेगा। हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अली बाबा और 40 चोर फिल्म से ये गीत।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

दोस्तों भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का।

7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। आज सवेरे इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30 पर।

सुबह 10:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विश्व दर्पण का, दिल का मेल बॉक्स। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम तस्वीर, झांसी, उत्तर प्रदेश।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन आप सुनेंगे सुबह दोपहर 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल इस कार्यक्रम का समय रहेगा 1:10 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे

आदाब। यह आकाशवाणी है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, आज मंगलवार है, शक समत 1938।

41 के ज्येष्ठ महीने की 5 तारीख मुताबिक 26 मई 2026 ईस्वी सुबह के 6:30 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात का आगाज होता है।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। आइए प्रोग्राम सुनते हैं। सुबह गाहिए है।

0: अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्मविभूषणं, षड्भ्यः पद्मभूषणं सहैव अष्टपञ्चाशद् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ. एन. राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एच.डी. कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली

0: में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: थे, जहां पर इसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, जहां पर इसके रास्ते मुश्किल हो गए थे। तो इसने बहुत जगह पर देखा कि ये दो ही पैर हैं और ये वही वक्त है जब ये मुश्किल सफर में था। तो अल्लाह ताला से एक गिला करता है कि रब्बा आपने मुझे ये रास्ता तो दिखा दिया, ट्रैक तो दिखा दिया पूरी जिंदगी का, लेकिन आपसे गिला है मुझे। अल्लाह ताला पूछते हैं कि फरमाओ क्या बात है। कहता है मुझे ये गिला है कि जब मुश्किल सफर था आप मेरा साथ छोड़ के चले गए और आपने मुझे तनहा छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेटा जिस टाइम तुम्हारा ये मुश्किल वक्त था मैं तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो जो पैरों के निशान है वो मेरे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी गोद में लेके चला हूं उस सफर में, उस वक्त मैं तुम्हें गोद में उठा के चला हूं, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेवारी थे। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि अल्लाह ताला एक बंदे को उतना ही प्यार करते हैं जितना 70 माएं एक बच्चे को प्यार करें। तो वहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल वक्त आया मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया है। तो ये भरोसा इंसान को होना चाहिए, अगर इंसान को ये भरोसा हो तो अल्लाह ताला के हर फैसले के आगे सर झुकाएगा और इस उम्मीद के साथ सर झुकाएगा कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा आबाद ही रखेंगे।
1: और रिटर्न में वो हमसे क्या मांगते हैं? अगर हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करें तो उनसे तो उनके औलाद की कुर्बानी मांगी गई थी, हमसे तो वो नहीं मांगी जाती है, बल्कि जो हमारी गलत ख्वाहिशात है आप उनको कुर्बान कर दे, आप उनको साइड ऑन कर दे, और जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर्वसजूद होने की बात हो तब आप अपने ईगो को साइड ऑन करें, क्योंकि ईगो का इसमें कोई काम नहीं है। और अगर वो बीच में आ गया तो आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप रास्ते से भटक जाएंगे।
0: नवाज आपको पता है ईगो जो है ना एक्चुअली पूरा काम बिगाड़ा ईगो नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: शैतान का ईगो ही आया था जहां पर उसने अल्लाह ताला के सामने नाफरमानी करी।
1: जी
0: ठीक है, आप कभी भी गौर कीजिएगा आपका जो भी साजिशें होती ना, जो साजिशें होती हैं, जो खुराफात होती हैं, वो दिमाग से होती हैं। दिमाग खुराफात करता है, साजिशें करता है, दिल सिर्फ प्यार करता है।
1: बिल्कुल,
0: कल्ब के पास सिर्फ प्यार है, वो साजिशें नहीं करता। तो अपने दिल की सुने और फिर देखे जिंदगी के मजे।
1: बदकिस्मती की बात यह है कि अक्सर वो बेशतर हमारा दिमाग जो है हमारे दिल पे
0: हावी हो जाता है,
1: और एक्चुअली
0: नहीं होना चाहिए,
1: मसले मसाइल बन जाते हैं।
0: अगर आपका जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड हो, अगर आप पॉजिटिवली जिंदगी में चलें, तो आप हमेशा जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन पर हावी हो जाएंगे। दैट मीन्स आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया है। होता एक्चुअली ये है कि आजकल हम बशर हैं, इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमारी ये फितरत में है गलती करना, हमारी फितरत में। लेकिन जब हम, मैंने कहा ना, जब हम अल्लाह ताला के सामने 100% सरेंडर हो जाते हैं तो उसके बाद आप देखिए आपका दिल आपके दिमाग पे हावी होता है और दिल हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है। दिल आपको वो रास्ता दिखाता है जो सच्चाई का है, जो प्यार का है, मोहब्बत का है, इश्क का है। उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है, और कहीं ना कहीं जो हमारे सामीन है वो आपकी इन बातों से जो है वो मुस्तफीद ज़रूर होंगे। तो प्रोग्राम अभी हमारा जारी है, सामीन को बता दें कि आपने ट्यून इन किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, मीडियम व्यू 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो तबरेज़ भाई, बातें तो और भी ढेर सारी होंगी, लेकिन एक वक्फा लेते हैं और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, नगमा चलाते हैं अपने सामीन के लिए, और उसके बाद जो है बातों का सिलसिला जारी रहेगा।
2: एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार, तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा, तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह,
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है, खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: अरे मां देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ। रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
7: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
6: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
7: माँ, इस

0: में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: Issued in public interest by Office of the Transport Commissioner, Jammu and Kashmir.
3: Central University of Kashmir, Gandharbal की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। Central University Entrance Test बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के Central University of Kashmir के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
7: आरबीआई कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: आपने ज्वाइन किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और प्रोग्राम जारी है पयाम सुख। तबरेज़ भाई, बात करते हैं थोड़ी सी ईद उल अज़हा के हवाले से।
1: बिल्कुल, मौका है।
0: और आप की राय और इस हवाले से आपका क्या तजुर्बा है और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आपके अल्फाज क्या रहेंगे? जब हम इसको हम अक्सर जो है आम अल्फाज में ईद कुर्बान कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम जो है सामीन के तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि असल फ़लसफ़ा क्या है इस ईद का और जो असल इस ईद का हुसूल होना चाहिए, तो क्या हम उस तरफ जो है उस रास्ते पर है या फिर उस रास्ते से कहीं ना कहीं हम जो है वो भटक चुके हैं और उस ट्रैक से हम नीचे उतर चुके हैं।
1: मुझे गुड़क चीज़ हुई कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आव वन पनुन बच करवुन कुर्बान, पत आव लास्ट मोमेंट्स पे तुहुन बच रिप्लेस करने एकस जानवर सहित। सो ये चु अंडरस्टैंड करुन, ये चुन अतन जानवर के, ये चु एग्जैक्टली सो बच उस तो है रोच मुचू। तो अल्लाह ताला चुन कुर्बानी मंज मस्तम सन, मगर आजकल छेस बुछान यम साथ इस जानवर अनान छन, तेमस जानवर से कजा बेहरमती छ गसान। शो मेजॉरिटी ऑफ अस, लाइक हम सब लोग मिलकर जानवर को उस तरह नहीं रखते, क्योंकि ये आपको देखना है, बार बार आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी गई थी और उस बेटे की कुर्बानी को हटा के फिर वहां पर एक जानवर रख दिया गया। तो ये जो मामला है, ये इंसान को हटा के जानवर दे दिया, लेकिन उसी फीलिंग के साथ उसे आप कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह के राह में, जिस फीलिंग के साथ अपने बच्चे को लेके गए थे। आपके दिल में एक दुख भी होगा, आपके दिल में एक दर्द भी होगा, अश्वारी या उसमें
0: उसके तई मोहब्बत भी होनी चाहिए,
1: मोहब्बत होगी। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पूरे साल एक जानवर को पालते हैं, बच्चे की तरह उसको रखते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं,

0: नहलाते हैं, उसको घुमाते हैं। मैं अपने मोहल्ले की बात करूं, मैं अपने इलाके की बात करूं, मेरे इलाके में बहुत सारे लोग हैं जो पिछले साल भर से जानवर पाल रहे हैं, एंड दे हैव केप्ट देयर दोज शीप गोट्स लाइक देयर यू नो
1: चिल्ड्रन,
0: वैसे रखा हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कुर्बानी होती है, सारे लोग चार कुर्बान कराने पाथर बनाए खून थे गैस पे उन पाथर ये दफने जमीन आसमान। आजकल कुर्बान कराना कराने श्वासा खून नालियों किन पकान जानवर सुन अंदरम से नालियों मन नालियों की नेरान या सड़क पे पा हून खेवान तिम बस्त वुचम बस्त सड़कन पे पत्थर कलहर पत्थर मतलब ये कुछ कुर्बान करान तेल अगर ना ऐसे अमुक फलसफे फिक्र तोर्मुत कि फलसफ छु ये कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम उस बच्चे कुर्बान करूं बच्चे कुर्बान करा करान दुक तेमिस जानवर उस मन कर सा एम से बदल से ये कुर्बान आइस पाइस थोड़ा सा ख्याल करूं आइस पाइस ये वुछुन ईद कुर्बान छुन सिर्फ कुर्बानी होत के ईद कुर्बान छ बेशक अम पत अक मसरत ते अक खुशी हुन मौक ते मगर खुशी छ तिल गसा मुकम्मल इल सरी खुश आसन मे कोर गरस मस कुर्बान मे बगरो गोड छ बोड बार प्रॉब्लम ये कि बुछ कुर्बान करा पछ बगरामा मास ये सोचत कि सनन गस गसन रान फलनिस गस गसन बोड पीस फिस्तनिस गस गसन बोड पीस या सचम अफसर एम शुम दुन बोड तान ऐसा नहीं होता। ईद कुर्बान का फलसफा जो हमें समझाया गया है कि ये तीन हिस्सों में बटेगा, वो तीन हिस्से हमें बांटने हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक हिस्सा, गरीबों में पड़ोसियों में एक हिस्सा, और एक हिस्सा आप अपने लिए रखते हैं। ये त्रेन हिस्सा नमज मगर ये पकनावान तथ पट कह अगर ना इत पट पकनो तेल सोन कुर्बान कर मकसद कहें कह मतलब चुन। एंड ब्या चीज यम सात गरस मज ईद तैयारी करान आजकल सारी ईद तैयारी मज लगे और मैंने आज बहुत देर के बाद देखा है ईद का माहौल मुझे दिखा है सड़कों पर मुझे ईद का माहौल दिखा है एक ईद की फीलिंग मुझे लग रही है बहुत देर के बाद मुझे दिखा है। हमें देखना चाहिए कि क्या मेरे पड़ोसी जो हैं जो मेरे बगल में रहने वाला घर है क्या उसके घर में सामान है क्या वो ईद मनाने की हैसियत में है हालत में है तेमिस माशु गरस मस कहाँ चीज पर मे याद इस लॉकेट ये ईज दो रूट लाग है मे उस फादर वनान दपान उस कमिस तम बच्चा छन वे पलव आम अन्न अल्लाह तला त्रोवे रूद तो अस मिला अम सबक हेस सो हेस गुमत गब हमें आज भी समझना पड़ेगा कि हमें ऊपर वाले ने किसी मकसद से जमीन पे भेजा
1: सिर्फ
0: लंग लन सारे खुश तम ईद खत तैयार सैन हमसाय तैयार क्या रिश्तेदार तान पत वा गोसान हमसा लरि हमसाय अच्छे वम्स गरस मज अगर अम्स कहें मोन ईद मना ग जहन कामयाब मे पे सुत सोच
1: तब्रीज भाई यथ मन व कि यम जानवर इम्पोर्ट कर ईद दुशान कि मो दह ब्रो या हार्डली जो दह ब्रो इम्पोर्ट कर तम पा सड़कन पे अलग अलग जान गाड़ी आम खड़ा कर तसान तम जानवर आम थव तो कमाल कत कि लुख ग यमन तुन ओतान आसान अम चीज न तलाश ना खयाल बल्कि यम अमे सातन नेरान यम सातन यम नजर च पेवान यम वुशान कि मीन हुम हमसायन मीन यम रिश्तेदार मीन हुम
0: सानन
1: बिल्कुल यम दपान कि तम ओन हुतनसन ओन तम जानवर यम वथान तो
0: नेरान जानवर
1: यम सातन वुशो तम जानवर हिज हालत तिश
0: बड़ा खस्ता
1: ये जन चाहे सेहत रंग वो तिंद या तिंद साफ सफाई रंग वो तम बड़ खराब आसान तम बड़ इवन मरनस पे अगर
0: सही बिल्कुल सही
1: तो तम अनान तमी सात तुल तम अनान तो बेक दो सुबह
0: सनान
1: कुर्बानस खान अत मन सू रोजान सू अक कस्म सू रूह अमुक सू रूह
0: नबर
1: रोजान तो सिर्फ तो सिर्फ अत वनो आम जानवर
0: बिल्कुल सही तो ब्या चीज ख्याल कर कुर्बान मामल ये कि तम निशान जमीन हेकन रच तम निशान पॉसिबिलिटीज मगर तम आन निश पॉसिबिलिटीज तम निश जमीन तूत कम हेकन जानवर खतर जाय तम हेकन तम रच पाल पबह कर कहन खतर मजबूरी कि तम पे जो त्रे दो ब्रोह अन जानवर मगर अगर तुम जो त्रे दो ब्रोह तानवर अनान अगर तुम फलसफ फिक्र तोर्मुत

तो सबीन, ये नगमा जो है आप तक हम पूरा ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है कि हम आप तक पहुंचाएं आज हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील।

बज़्म सुखन पेश होगा रात के 9:30 पर। रात के 10 बजे आप प्रोग्राम सुनेंगे हेलो फरमाइश, पेश करेंगी रोहित मुश्ताक। स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। मौजू ईद के मौके पर बाजार में खरीदो फरोख्त का जब्त अखलाक। मौजू पर बात करेंगे मोहतरम मौलाना फैयाज अहमद जरू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपरा। आज की सुर्खी आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। फुली वन, यह प्रोग्राम समाप्त करें सुबह 9:30 पर।

स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफ़र आप सुनेंगे रात के 9 बजे। मौजू कुर्बानी के आदाब व अहकाम, मौजू पर बात करेंगे मोहतरम फैयाज़ अहमद ज़रू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपड़ा।

सूफी सदा प्रोग्राम पेश होगा सुबह 10 बजे। लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह पेश होगा सुबह 10:30 पर। सुबह 11:30 पर सुनिएगा सूफियाना मौसीकी। फिल्म म्यूजिक आप सुनेंगे दिन के 12:10 पर। बजमिनिस्वा रास्ता होगी दिन के 12:40 पर। NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन के 1:10 पर। फिल्मी नगमे आप सुनेंगे दिन के 1:40 पर। सूफियाना मौसीकी आप सुनेंगे दिन के 2:30 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सुपहर 4 बजे और पंजाबी प्रोग्राम 4:30 पर। गुजर प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे सुपहर 5 बजे। शाम के 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गमी बाय नहीं खतर। हालत हजरा का प्रोग्राम शहरबीन पेश होगा शाम के 7 बजे। वादी की आवाज़ ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 8 बजे। एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम पेश होगा रात 8:30 पर। ये थी तफसील आज हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों की।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 7:45 होने वाले हैं। आइए खबरें सुनते हैं।
1: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबर नाम हेत चुस बु तजम्मुल अहमद। गड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून के रात शामस राष्ट्रपति भवनस मज सपदेम से किस तकरीब पेट पद्म अवार्ड पेश। खजाना वजीर निर्मला सीतारमणन तुल एमएसएमईज मुस्तहकम करन तो गामी सन्नतन हज जदीद कारी अंदर वुस अन्न बापत कहियान स्कीमन 10। गुलमर्ग केबल कार निजामस अंदर तकनीकी खराबी किन अथ मज फसाम सालान हफाजत सान तत् कड़ कारवाई चे मुकम्मल सपजम तो सारी 3 सालान हफाजत सान बोन वाल आमत। भारत आस्ट्रेलिया जापान तो अमरीकी खर्ज वजीर करन आज नई दिल मज कॉड मीटिंग अंदर शिरकत।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम व्यू 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 8 बजने वाले हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया।

0: डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप

0: वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोप वे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज

0: से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनिषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पयाम सुब। मेरे साथ है तबरेज मदनी।
4: बहुत बहुत शुक्रिया नवाज। समय बात हो रही है ईद उल अजहा की और हम कुल मिला के बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस फलसफे को समझें और किस तरह से इसको अपनाएं। जहां तक बात हमारे कंट्रोल रूम की है, कंट्रोल रूम में आज हमारे साथ हमारे इंजीनियर्स हैं जो बने हुए हमारे साथ और कोशिश हम सब मिलकर यही कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर ट्रांसमिशन आप तक पहुंचे। सामिन, आज जैसा कि आज हमने आगाज में ही कहा कि हमें अपने घर में खुशियां मनाने से पहले देखना चाहिए कि क्या मेरे घर के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके घर में खुशियां मन रही हैं, क्या उनके घर में तैयारियां हैं। ये चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत पहले, आज से कई हफ्ता पहले मैंने एक प्रोग्राम में बात करी थी नवाज।

0: ये मैं आपको भी बता दूं, मैंने कई हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में बात की थी कि जब भी हम घर से निकलते हैं, आई
1: जी
0: स्पेस हमेश घर नियरन वीज पन्न माज इजाजत हूं
1: बिल्कुल
0: ते नियरन वीज माज हूं दोए खर रटून बहुत सही दोए थे पर साइड के पर पकाए में सब क्यों ना फरक तो बने मैं हस बूझ तून प्रोग्राम बहुत तून प्रोग्राम फॉलो करान हर बोमारे उस प्रोग्राम तून बोझा तो हस कोर वो जिक्र के माज हूं दुआ गैस रटून माज पर प्रसिद्ध गैस नियर मगर वारिया हस चितिम यमन ने गरम मोच कहीं या यमन ने वालदैन चकीन वारिया चितिम यम एक न्यूक्लियर फैमिली मज रोजान छ वारिया तिम यम सेपरेट फैमिली मतलब यमन पन्न लकड़ मकड़ फैमिली है तथा मे तम बर्ज आसान बच्चा आसान दैट्स इट वह यद गरस मज मोल मोच कहीं सिर्फ खानदारन खानदार छु बच्चे

0: समय ने अपने नगमा सुना बॉबी फिल्म का लिया हुआ नगमा था। उम्मीद करते हैं आपने नगमा एंजॉय किया होगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। समय हम बात कर रहे हैं पयाम सुबह में आज इस फलसफे की जो हमें ऊपर वाले ने समझाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा था और आज भी ये फलसफा जारी है और रहती दुनिया तक ये फलसफा जारी रहेगा। लेकिन ये फलसफा समझने की जरूरत है, इसको समझ के अपनाने की जरूरत है, जिसमें हम कहीं ना कहीं आजकल देख रहे हैं कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। समय मौसम ने भी करवट बदली, कल भी बारिशें थी, आज भी मौसम ठंडा है और पेशनगुई तो यही है कि आने वाले एक दो दिन और भी ये हल्की फुल्की बारिशें रहेंगी। हालांकि बहुत सारी जगहों पर बर्फ भी हुई है, फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ है, तो कुल मिला के ये अभी मौसम जो है बड़ा ही खुशगवार बना हुआ है। हालांकि मुझे याद है आज से साल दो साल पहले की बात है जब हर रोज रात को बारिशें होती थी, सुबह एक फ्रेश वो ना कहते हैं ना वो सनी डे हुआ करता था और उसके बाद पूरे दिन वो जो मौसम था ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, वो बारिश का रात का असर देखने को मिलता था, मौसम बहुत ही मजेदार होता था। आज भी वो मौसम मजेदार बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये मौसम मजेदार बना रहेगा।
1: तबरेज़ भाई, अगर हम साइंसी जो मामला थे उनको चंद एक पल हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, तो जब मौसम में भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, कभी कभार बीच में बारिश और खासतौर पर जब धूप की ज़रूरत होती है तब बारिश होती है, जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे असलाब जो है तो वो इन सारी चीज़ों को भी जो है वो अपने अमाल के साथ जोड़ा करते थे और कहीं ना कहीं हम कहें कि इस्तग़फ़ार करते थे और

0: उन पर वाले से माफ़ी मांगा करते थे कि शायद हमसे गलती हुई है और जिस वजह से मौसम के ये हालात हैं।
1: नवाज, यहां पर एक और बात बोलना चाहूंगा। शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो कि जब हम पुराना वक्त देखते हैं, पुराने वक्त में हमारे यहाँ क्या होता था, स्प्रिंग हुआ करता था, मई आखिर तक स्प्रिंग हुआ करता था, फिर मई आखिर से फिर जून की तरफ हम समर में आते थे। लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं कम हो गई हैं और बारिशों का जो ये सिलसिला है अब हमें बड़ा अनसर्टन लगता है। समय नेशनल हाईवे पर भी बारिशें हुई हैं, कल भी बारिशें हुई हैं और नेशनल हाईवे पर आज क्या हाल है सड़क का, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे साथी से। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मोहम्मद तस्कीन साहब बनिहाल से। आइए जानते हैं उनसे अभी नेशनल हाईवे का क्या अपडेट है। जी
2: जी नेशनल हाईवे बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है, ट्रैफिक चल रहा है, दोनों तरफ के ट्रैफिक को चलने की इजाजत है। अलबत्ता पिछले कई रोज से धूप, बादल और बारिशों का जो ये सिलसिला है, इम्तराज है, ये बराबर जारी है और आज इसके बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ है, हवाएं चल रही हैं और धूप भी खिली खिली निकली हुई है और जो ट्रैफिक की जो आमदरफ्त है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वो बगैर किसी खलल के जारी। और अगर कल शाम तक कहेंगे तो हजारों की तादाद में जो माल और मुसाफिर गाड़ियां हैं उनने दोनों तरफ से शाहरा का सफर किया, जम्मू से श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से जम्मू की तरफ। इस दौरान अगर रोजाना की बुनियादों पर कहेंगे तो ट्रैफिक पुलिस की एक एडवाइजरी होती है, ट्रैफिक पुलिस का एक बयान रोजाना की बुनियादों पर जारी किया जाए जिसमें यह कहा जाता है कि शाहरा के कई मुकामात रामबन डिस्ट्रिक्ट में यकतरफा ट्रैफिक के काबिल ही है, जहां पर गाड़ियों का गुजर जो है मुश्किल से होता है और उसके साथ साथ जो खाना बदोश बकरवाल और गुजर कुंभे जो है आज एक मतलब जो हिजरत की गर्ज से जम्मू से कश्मीर की तरफ आ रहे हैं तो उनकी तरफ से और कई गाड़ियों के बीच में सड़क के बीच में खराब होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन इलाकों में जो रामबन बनिहाल का सेक्टर इसका करीबन 15-20 किलोमीटर का बीच में स्ट्रेच है तो उसमें जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो स्लो रहती है, सुस्त रहती है, कभी कभार हल्का फुल्का जाम भी लग जाता है उधर। तो अगर मजमूई तौर कहेंगे तो ये चीजें छोड़कर तो ट्रैफिक जो है चलता रहता है और जो आमदरफ्त है दोनों तरफ से वो बगैर किसी खलल के जारी है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तस्कीन साहब इस अपडेट के लिए। और सामने को बताना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रवा दवा है, आप सफर कर सकते हैं और बहुत ही शानदार मौसम है और इस शानदार से मौसम में सफर करने का मजा ही कुछ और होता है। और जब सफर करते करते आपके गाड़ी के अंदर आकाशवाणी का ये रेडियो स्टेशन चल रहा हो, प्यारे प्यारे नगमे बज रहे हो और खूबसूरत सी बातें आप तक पहुंच रही हो, इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती। नवाज के चेहरे पर स्माइल आ गई इस बात को सुनते
0: हुए। जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश यही करें कि जब भी आप ट्रैवल करें तो उससे पहले जो रोड की सूरत हाल
1: अपडेट्स लेते रहें
0: तो वो आप लेते रहें और उसकी जानकारी जरूर रखें, उससे आपको सफर करने में आसानी होगी और जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दिक्कत बहुत ज्यादा
1: बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इसके लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर उनके एक्स हैंडल से लेटेस्ट अपडेट्स लेकर वो अपडेट्स पर ही आप सफर प्लान करें। समय फिलहाल 8:30 होने को है, वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं खबरों के लिए।
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहाँ फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करें।

0: होंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुलकाहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उजरा खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उजराए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुलकाहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूस करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशीं होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुलकाहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है, जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूस की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगे, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह BSF की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदामात किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज 4th दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज़ वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को

0: हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ़ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी एहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन आइए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनते हैं हम सफर।
3: समीन पेश खिदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम जो तहता वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: तो इसे भोजन स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आज की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं सईद नवाज शरीफ और मेरे साथ है तबरेज मदनी। आगाज करते हैं इस खबर के साथ। 100 रोज़ा मंशियात मुखालिफ मुहिम का 45वां दिन बांडीपुरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में स्पोर्ट्स स्टेडियम से 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। दहशतगर्दी और मंशियात के नेटवर्क्स के लिए कोई महफूज पनागा नहीं होगी। एलजी मनोज सिन्हा।
3: बहुत बहुत शुक्रिया नवाज। सामिन, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और खबरें कुछ इस तरह से। पहली खबर, 300 टूरिस्ट रेस्क्यूड आफ्टर गुलमर्ग केबल कार ग्लिच। होम मिनिस्टर

0: एलजी सीएम प्रेज रेस्क्यू टीम फॉर कैरिंग आउट सक्सेसफुल ऑपरेशन। जी,
1: मनासिकी हज का बाकायदा आगाज हो गया, लाखों आजमीन हज मिन्ना पहुंच गए।
0: अगली खबर, गवर्नमेंट डेवलपिंग ऑफ बी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस प्रमोटिंग एडवेंचर टूरिज्म सकीना इतु।
1: अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी ग्रिड कायम, हसास इलाकों में निगरानी, तलाशी और इंटेलिजेंस सरगर्मियां तेज।
0: ट्रेडर्स होप फॉर लास्ट डे सर्ज, सोरिंग प्राइसेस, फाइनेंशियल स्ट्रेन डैम्पन ईद उल अधा रश अक्रॉस कश्मीर।
1: बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ, मगरबी एशिया बहरान के दरमियान ईंधन, खाद और गैर मुल्की करेंसी पर ज्यादा तवज्जो देना लाजमी। सोने की ऊंची कीमतें बैरूनी महाज पर कुछ चैलेंज पैदा कर रही हैं, मरकजी वजीर खजाना।
0: मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा खबर कुछ इस तरह, फ्रेश स्नोफॉल इन मिनमर्ग द्रास, कश्मीर प्लेन्स रिसीव रेन हेल। जी,
1: एक और खबर की, ये एक और अखबार की ये सुर्खी है, जमाती इस्लामी से मुंसलिक दहशतगर्दी फंडिंग केस, एनआईए की श्रीनगर और शुपया में 3 मकामात पर छापामार कार्रवाइयां।
0: जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा, क्योंकि आज भी मेरे साथी ने मुझे अंग्रेजी रोजनामे थमाए हैं और उर्दू अपने पास है उनके। मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और इसकी एक खबर बड़ी ही खुशायन खबर, प्रोफेसर शफी शौक रिसीव्स पद्मश्री, हैज ऑथर्ड 106 बुक्स, टॉट एट कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर 33 इयर्स। जी,
1: बड़गाम सानिया पर कश्मीर में इज़्तिराब वाका मुआशरे के लिए संगीन खतरे की घंटी करार, और इसी के साथ जुड़ी एक और खबर, मुलजिम 36 घंटों में गिरफ्तार, जुर्म का इतराफ किया, शवाहिद मिटाने के मुमकिन पहलू की भी तहकीकात जारी।
0: जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि एक्शन अगेंस्ट नार्को टेररिस्ट ड्रग स्मगलर्स विल नॉट स्टॉप अंटिल दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम जेएंडके, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जी,
1: मेरे हाथ में एक और अखबार है और जिसकी सुर्खी है, जाली ऑनलाइन डिस्काउंट्स और शॉपिंग फ्रॉड से खबरदार, पुलिस का इंतबाह, सोशल मीडिया और जाली वेबसाइट्स के जरिए शहरियों को निशाना बनाने की चालें बेनकाब।
0: मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा खबर कुछ इस तरह, एलजी मनोज सिन्हा विजिट्स हजरतबल श्राइन, रिव्यूज प्रिपरेशंस फॉर ईद उल अधा, और इसी अखबार से एक और खबर, स्पेशल कैजुअल लीव फॉर जेएंडके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर ईद उल अधा ऑन मे 29th।
1: सुर्खियां जारी है, आप बने रहिए।
2: मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक।
3: कश्मीर मोटर्स तो जेके स्टेशनर्स एमए रोड श्रीनगर चे अहले वादी खुसूसन अहले इस्लामस वचे वंजे ईद मुबारक पेश करान, दुआ करान ये ईद कुर्बान यिन अहले वादी खुसूसन अहले इस्लामस खतर खुशियन हुन तो अमन पैगाम है, ईद मुबारक।
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
7: वो कहाँ है
8: मिठाई?
9: आरबीआई कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: वाई दपन छ जा मानहक म्यून सरी सबदे बागन कष्ट कड़े त गासन उनी अद बोन गाम के बागस मन छ कछन त जंडन नाल गुक तमीली से सस्त ब्रश कटरस खाम त
12: जंडन त कछस गालो नाल मिंटन म
11: खबर कम से
12: मे गई गलती आइक लेट तमी जनुम लोकल ब्रश कटर आज अनव होंडा ब्रश कटर, होंडा ब्रश कटर छ ज्यादा चलान त तेल कम खवान, 4-5 होंडा ब्रश कटर गो जमींदार सुन गहन।
13: होंडा ब्रश कटर हेल बाबत याद, होंडा कंपनी बाय इख्तियार डीलर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मनशियात के लानत के खिलाफ अपने अजम मुसम्मम का इजहार कर रहे हैं। जिला बांडीपुरा में भी मनशियात मुखालिफ पद यात्रा निकाली गई, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने ख्याल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान कौम की तामीर में एक अहम रोल अदा करते हैं और इन्हें तामीरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
1: हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग गंडोला में तकनीकी खराबी के सबब फंसे सयाहों को बहिफाजत बाहर निकालने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मकामी गाइड्स और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की हम आहंग काविशों की तारीफ की। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर कल नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने गुलमर्ग का दौरा किया, जहां उन्होंने गुलमर्ग गंडोला में तकनीकी खराबी के सबब फंसे सयाहों की बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। नायब वजीर आला ने कहा कि इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी, ताकि तकनीकी खराबी की वजह का तायुन किया जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे वाकात को दोबारा पेश आने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गलवानपुरा बडगाम में एक मासूम बच्ची के साथ पेश आए दिलखराश वाके का मुअम्मा 36 घंटों के अंदर हल कर दिया है। इस बारे में एसएसपी बडगाम हरि प्रसाद के ने बताया कि एक मुलजिम को पकड़ा गया है, जबकि दीगर मुश्तबा अफराद को भी जल्द ही कानून की अदालत में खड़ा किया जाएगा और इन्हें करार वाके सजा दी जाएगी।
2: बडगाम पुलिस ने वहाँ लोकल से बहुत सारे सस्पेक्ट को भी उठाया था इन द लास्ट 36 आवर्स, एंड वन पर्टिकुलर सस्पेक्ट, उनका जो डिमीनर था और उनके जो एग्जामिनेशन थे, सो मोस्ट ऑफ अवर एविडेंस

बेशक सामीन नस्कृत्या किस्मत वर्ज किस बनी उम्मती तिमन पैगंबर नींद यम रबुल आलमीनन आलमन खतर रहमत बनाई सूझ तो शु प्रोग्राम बोजाम फुलिवन मुझ बीश फयाज अहमद शिलवती तो सत्य हिज आवाज मज कलामी हमीद मिस्कीन।

सूफी सदा यो प्रोग्राम चो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दान बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नशर सब्दान।

0: के लिए एक खास डॉक्टर को आज हमने स्टूडियो में बुलाया है। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर मटन किचन और ये डिशेस, ये क्या कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारे से ट्रैक के लिए यहां पर रुकते हैं, ट्रैक के उस पर आपका जो सस्पेंस इसको बनाए रखते हैं इस ट्रैक के दौरान, ट्रैक के उस पर बताएंगे कि आज के डॉक्टर कौन है।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

दोस्तों अपने नगमा सुना, उम्मीद करते हैं ये चिकन और ये जो चिकन कुकुरुकू आपने जो नगमा सुना, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। हालांकि बच्चों को ये नगमा बड़ा प्यारा है और ईद होती है तो बच्चों के लिए होती है खास तौर पर, इस पे बच्चे ही एंजॉय करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ साथ बच्चे एंजॉय करते हैं, लेकिन बड़े फंस जाते हैं कि चीजें कैसे मैनेज करनी है। और इन्हीं पर आज बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मधु किया है। ये किचन के किंग हैं, किचन के डॉक्टर हैं, नाम है मोहम्मद यासीन ऋषि, जिन्हें हम प्यार से शेफ यासीन के नाम से जानते हैं। यासीन साहब,

0: आपका इस्तकबाल प्रोग्राम में आज दिल खोल के।
1: थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ मुझे एक टेक्निकली यहाँ पे गेस्ट बुलाया गया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि मन ही मन में बहुत बार मतलब उन सालों में जब मैं 10+2 कर रहा था, मन ही मन में मेरी मदर सोच रही थी कि ये डॉक्टर बने। मैंने एक दो अटेम्प्ट भी दिए और मैं मिजरेबली फेल हुआ। तो लेकिन आज मैं जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बनता, बहुत बहुत गंदा और बुरा डॉक्टर बनता, उससे कुछ नहीं होता। तो आपने डॉक्टर को ना बुला के मुझे आज उस जगह पे रखा
0: जी।
1: तो इट्स अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन कि दुनिया बदल रही है, लोग इंटरचेंज कर रहे हैं प्रोफेशंस। ऐसा नहीं कि हमें एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। और मुझे फिर एक बार यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस रिलैक्स्ड माहौल में वी आर टॉकिंग, वी आर लाइव लिस्निंग सम गुड म्यूज़िक। तो अगर मेरी माँ सुन रही है तो मैं उनको बता दूँ कि आज डॉक्टर को आना था और उन्हें नहीं बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं मैं एक छोटा सा कंपाउंडर तो बन गया हूँ।
2: कंपाउंडर नहीं, आप पूरे पूरे डॉक्टर हैं और माशाल्लाह आप किचन के फुल फ्लेज डॉक्टर हैं और लोग आपसे मशवरे लेकर अपना किचन सजाते हैं। अच्छा लग रहा है आज आप हमारे बीच हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये जो ईद की तैयारियां होती हैं,
0: बिल्कुल
2: ईद का जो माहौल होता है आपके घर में भी होता होगा, बचपन में जो आपने देखा, बचपन की जो प्रैक्टिसेस थी वो, और आजकल का दौर कैसे देखते हैं इसको?
0: मुझे लगता है बचपन जब मैंने देखा कि कैसे बड़ी ईद यानी बकरा ईद पे तैयारियां होती थी, आजकल भी बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी रहती है, उससे ज़्यादा चीज़ें हम अरेंज करते हैं आजकल। लेकिन मुझे लगता है वो शायद हमसे थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड थे, उन्हें बाय एक्सपीरियंस उन्हें पता था कि किन चीज़ों को कैसे संभाल के रखना है, क्या करना है। और इस जब बकरा ईद की बात आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो स्लॉटर होता है वो शीप होता है, तो हमारे घरों में लैम्ब होता है इंस्टेड ऑफ मटन। मटन बहुत कम होता है, लैम्ब होता है। और लैम्ब की ये क्वालिटी है कि वो बहुत सॉफ्ट मीट और बहुत ज़्यादा फैट होता है। लेकिन इस मीट को लेके हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, मिथ्स है। मिथ अगर मैं बोलूँ तो नंबर वन मिथ है कि मीट को धोना है। नंबर टू मिथ है कि ये रंगान थी हुई है कहीं फ्रीजर में, तो वी स्टॉक द फूड, हम इसे स्टैक करते हैं रादर, तो हम एक के ऊपर रखते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी मिथ है जो अब शायद थोड़ी कम हो गई है कि इशु कुरबान माज ये इसने ख़राब किया, ये मूवी नहीं इशु गाना, तो वो भी चली गई है। लेकिन स्टोर करने से पहले या कुक करने से पहले मुझे लगता है हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एनिमल है तो उसको अच्छे से नहलाना धुलाना है, उसको कोई माइट्स तो नहीं है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, उन चीज़ों से ध्यान रखना है। और उसकी बॉडी पे देखिए, हाथ घुमा के, कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं है, किसी उसकी लेग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको खुजली तो नहीं हो रही है, वो डाइजेशन ठीक से कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद जब उसको स्लॉटर किया जाता है तो वो जगह कैसी है, उसकी हाइजीनिक कंडीशन कैसी है। दो तरह के हाइजीन होते हैं, वन इज़ पर्सनल की जो उसके साथ डील कर रहा है, स्लॉटर कर रहा है, जो उस मीट को उठा रहा है या हम भी उठा रहे हैं, हम हाइजीनिकली ठीक हैं कि नहीं। उस जगह का माहौल कैसा है, हाइजीन कैसा है, जहाँ वो एनिमल ऑफ स्लॉटर कर रहे हैं वहाँ पानी है कि नहीं है, वहाँ ब्लड ड्रेन हो रहा है कि नहीं है, जो खाल है वो अच्छे से साफ हो रही है कि नहीं है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उस मीट की क्वालिटी को डैमेज कर सकते हैं या उसे ख़राब कर सकते हैं। उसके बाद किन बर्तनों में आप रख रहे हैं, उसे आप पैक कैसे कर रहे हैं, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बिफोर इवन स्टोरिंग और ईटिंग और कुकिंग इट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं और इन पर हम अक्सर ध्यान कम देते हैं।
2: बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कहीं ना कहीं हम ये जो कुर्बानी वाला मामला होता है इसको इमोशंस के साथ ज़्यादा जोड़ देते हैं, और इसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि इसमें कहीं कोई और चीज़ तो नहीं ऐड हो गई जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं।
0: मुझे लगता है कुर्बानी है तो हम कुर्बानी तो करता है, इसका बहुत अजर है, हमारा एक रुकन है ये। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है हमें इस ईद पे भी सोचना चाहिए कि इस कुर्बान जो हम एनिमल को स्लॉटर करते हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें कुर्बान करनी होती है। एक है अना, यू आई ईगो, उसे आप क्या कुर्बान करते हैं। एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना, क्या उस थॉट को आप कुर्बान करते हैं। एनवायरमेंट को साफ रखना है, सस्टेनेबिलिटी की बात है, हमें दूसरी जनरेशन को ये पास करता है, तो जो नहीं करते क्या उस चीज़ की कुर्बानी आप देते हैं। आप अपने घर से वो खाल, वो कूड़ा बाहर दरिया में या बाहर रोड पर फेंकते हैं, उस चीज़ को कुर्बान करना है। तो आपका पहले रोड है, उसके बाद घर।

0: घर तो एनीवे आप साफ करेंगे, रोड पहले कर दीजिए। और ये कैसा बंदा होगा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो उसके थॉट्स क्या होंगे, वो क्या सोचता होगा, उसका क्या रिलीजियस बिलीफ होगा, जो जो वो इंटेस्टाइन्स, वो गंदगी, वो खाल, बेड का सर्प, उसके बाद वाटर बॉडी में छोड़ देता है कहीं पे। और मुझे लगता है वो इग्नोरेंट है, उसे ये नहीं पता कि वही पानी फिल्टर होके उसने उसी शाम पीना है।
1: पीना है, बिल्कुल सही।
0: और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद जो टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि जो हम मीट जब स्लॉटर होता है एनिमल, चूँकि बड़ा कैरकस होता है, पूरी बॉडी होती है, अगर उसके बड़े बड़े चंक्स भी काटे जाते हैं, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस का मतलब होता है कि जब आप मीट को लटकाते हैं तो, या उसे बेड को स्लॉटर करते हैं, 3-4 घंटे के बाद एक केमिकल रिएक्शन इसके अंदर शुरू हो जाती है जिसे रिगर मॉर्टिस बोलते हैं। तो जूसेस एक्सक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, वो ब्लड बाहर निकलने लगता है और ये मीट ड्राई होने लगता है। एक्चुअली इट फेवर्स द स्टोरेज, ये बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप कभी बुचर से शाम को मीट खरीदते हैं जो बहुत ड्राई होता है, तो उसमें ब्लड कम रहता है, वो जल्दी पकता है और टेस्टी होता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिगर मॉर्टिस। तो जो कुर्बानी का मीट है, मुझे लगता है इससे आप ड्राई करें। ड्राई करने का मतलब है इसे आप हैंग कर लें या फैन के नीचे रखें, मसलन क्लॉथ से लपेट दें, और इसको कभी ना, मतलब वॉश करके स्टोर ना करें, बल्कि एक मलमल के कपड़े से इसको ड्राई कर लें, इसको ब्लड अच्छे से निकाल दें, अगर जूसेज है कोई गंदगी वो साफ़ कर लें। पानी अगर इस पे लग गया तो वो ब्लड थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन इसके जो जूस या बाकी चीज़ें बाहर निकलती है तो पानी से ये मॉइस्ट रहेगा और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो एक है ड्राई करना। ड्राई में आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो इसके ऊपर नमक लगा दें जिसे ड्राई सॉल्टिंग बोलते हैं, जितके ने म्योशुविंट याद में उन बिट बोबोस कुर्बान बस्त पत कुछ किले उसे ठासन कुछ वना यह मुझ दानी स्टोर करें।
1: सोता है
0: और मैंने वो भी देखा, मैं इतना लकी हूँ, मैं उसमें
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: खेला हूँ, अंदर गया हूँ उस दान में, तो सोचता लाइफ उस किले उसे ठासन पता उस नून मथान में उस टाइम इज एग्जैक्टली पता ही क्या। बट नमक जब आप लगाते हैं तो ऑस्मोसिस के थ्रू जिसमें पैथोजेंस होते हैं उनकी बॉडी में, वो नमक जाता है वो मर के बाहर आ जाते हैं और मॉइस्चर के साथ आते हैं, ये ड्राई होता है, दिस इज कॉल्ड ड्राई सॉल्टिंग। ये इसके ऊपर आप रब कर सकते हैं, उसके बाद ड्राई करें। दूसरा एक तरीका होता है ब्राइन सोल्यूशन। अगर आप ब्राइन सोल्यूशन लें, एक नमकीला पानी बना लें, जैसे आप मशरूम का टिन खरीदते हैं उसमें जो पानी होता है दैट्स ब्राइन सोल्यूशन। आप 1 लीटर पानी में करीबन 200 ग्राम नमक डाल रहे हैं, चाहे तो उसमें थोड़ा से हर्ब पुदीना डाल दें, एक लेमन काट के डाल दें या थोड़ी दालचीनी डाल दें, और ये मीट उसमें रख दें करीबन 1-2 घंटे, और उसके बाद निकालें और उसको अच्छे से ड्राई करके उसको आप स्टोर करें, आप ये बहुत दिन तक चलेगा। दूसरी जो हम बहुत बड़ी गलती कश्मीरी करते हैं, हम बड़े बड़े चंक्स मीट के रखते हैं और उसके बाद जब हम उसे पकाने जाते हैं, जितनी बार हम वो रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र से निकालते हैं उतनी बार हम सारे मीट पे हाथ लगाते हैं, या बड़ा पीस हमने निकाला उससे काटा 5-6 पीस वापस रखा, तो इट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। जितनी बार उससे हाथ लगेगा उतनी बार वो कंटेमिनेट होगा, ख़राब होगा। तो बेस्ट क्या है कि जिस दिन आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप फ्री हो गए, आपने सब में बांटा, आपने सब रिश्तेदारों को दे दिया, और उसके बाद आप उसे छोटे छोटे पीसेस में काटें, और जैसे आपको पता है कि आप एक बारी में 6 या 8 पीस पकाते हैं तो वह वैसा ही पार्सल बनाएं, 8 पीस का पार्सल बनाएं, और उसके अंदर एक स्लिप आप भी डाल सकते हैं कि डेट लिख दें किस डेट को डाला था, उस स्लिप पे ये भी लिख दें ये कट कौन सा है, इछा बख्तर, इछा रान, इछा सीन, इछा कमर, इछा लरकन,
1: एग्जैक्टली।
0: क्योंकि अगर उस पर आइस भी जमता है आप हटा के देख सकते हैं ये किस डेट को स्टोर हुआ था, ये कौन सा पीस है। और दूसरा जो हमारे घरों में मीट बाहर से भी आता है वो डिफरेंट एनिमल से आता है और डिफरेंट कट्स आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो अलग अलग कट्स को अलग अलग कर दें, बाद में आपको पकाने में भी इजी रहेगा। तो आप पीसेस कर लें जितने एक बार आप पका सकते हैं, उतने ही के पार्सल बना लें, पता चला जब आप निकालेंगे तो वही एक पार्सल निकलेगा, बाकी
1: निकलेगा
0: चीज़ों पे हाथ नहीं लगेगा। तो दिस इज़ वन वे। सेकेंड वे, आपको शायद बहुत लोग बोलेंगे कि अब आप ये फ्रीज हो गया है मीट पार्सल, आप निकाल रहे हैं, आप रात को इसको निकालना भूल गए। एक्चुअली तरीका ये है कि आप रात को ही फ्रीज़र से निकालें, किचन काउंटर पर रखें, ये धीरे धीरे डिफ्रॉस्ट होकर सुबह तक रूम
1: खुल जाएगा।
0: टेम्परेचर पर आएगा। वो एक्चुअल तरीका है जिस कॉल थॉइंग। अगर आपने गरम वो निकाल दिया, भूल गए, गरम पानी में डाल दिया, कुछ क्विक फिक्स डाल दिया, ऐसा मत कीजिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये नेचुरली रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। तो ये हो गया पार्सलिंग। दूसरा आप कर सकते हैं कि जो ये मीट है इसको आप मैरिनेट कर सकते हैं। मैरिनेट का मतलब होता है, मुझे लगता है

0: हमारे पास दो बहुत बढ़िया चीज़ें ऊपर वाले ने दी है, और ऊपर वाले ने पहले, और उसके बाद जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे जिन्होंने ये कुजीन प्रिजर्व करके रखा है, प्राण एंड वर। मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा मस्टर्ड तेल लें, जैसे 1 केजी मीट है तो 2 टेबल स्पून मस्टर्ड तेल लें, 1 टेबल स्पून वर ले लें, उसमें प्राण का पेस्ट 1 टेबल स्पून मिला लें और अच्छे से एक पेस्ट बना के मीट के ऊपर लगा लें। अब इसमें स्मेल भी नहीं रहेगी, ये बहुत पकेगा, थोड़ा नमक भी डाल दें पकेगा, ये फ्लेवर इसके अंदर जाएगा। अब अगर आपने ये निकाला, इसको आप कोई भी रेड करी पका सकते हैं और ये प्रिजर्व होगा। जो तीनों चीज़ें आपने लगाई, इसके प्रिजर्वेशन नेचुरल प्रिजर्वेटिव बनेंगे और बहुत समय तक रहेंगे ये। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप मीट को प्रिजर्व करें, तो अगर उसमें कोई गंदगी लगी है तो बेटर है कि उसे साफ़ करें। जैसे कभी कभार उसको हम दूसरी पीसेस के साथ रखते हैं तो उसमें जो घास खाया होता है उसमें पैथोजेंस होते हैं, वो उस पर लग जाते हैं। इट इज़ बेटर कि उससे आप वो निकाल दें, या तो ड्राई कर दें, या दूसरा तरीका है कि अगर वो उस वाइट सिल्वर स्किन के ऊपर लगा है, इट इज़ बेटर आप मीट को सिल्वर स्किन हटा दें। एक शार्प नाइफ ले लें, जितनी वो पतली मीट पे ऊपर फैट
1: लेयर
0: की लेयर होती है वही मेन मीडियम है, उससे वो ख़राब हो सकता है। तो पतली लेयर आप निकाल दें और उसके बाद उसे ड्राई करके स्टोर रखें। ऐसे आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं, बट बेटर है कि आप इसे कंज्यूम कर लें। ऐसा नहीं कि एक ईद से दूसरी ईद तक रख लें, या तो फिर आप वो तरीके कर लें। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक बेस्ट तरीका है, आप घर में मीट को ड्राई कर सकते हैं। आप क्या करें कि मीट को जो बोनलेस पीसेस होते हैं, जो इस माजी अच्छा सा, अगर आप उसको पतला पतला स्ट्राइप में काटेंगे, लंबा लंबा पातिम क्लॉथ हैंगर छ आसान यथ पलव अवेजान, तथि त्रावि अवेजान बे नून मथित, आप इसको शेड यानी छाँव में रख लें, ऊपर से मलमल का कपड़ा रख लें, ये बिल्कुल क्रिस्प और बिल्कुल बनिए बंगरी हो क्रिस्प, और इसको दिस इज़ कॉल्ड होम स्टाइल ऑफ ड्राइंग मीट। उसके बाद आप इसे किसी में भी डाल सकते हैं, किसी में भी पका सकते हैं, और ये बेस्ट तरीका है। बट बेटर है जितना फ्रेश उसे कर लें यूज़, वो बेटर है। और डिफरेंट डिफरेंट मैरिनेशंस के साथ इस्तेमाल करें। और हमारे यहाँ एक और चीज़ डेवलप हुई है कि यूँ ये कौरबान कट आसान रान वुछान, बह दिमान यह कंस नवाब वो गरी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ बेटर यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली,
1: बिल्कुल सही, जो तीन
0: नई
1: हिस्से।
0: नई सोइन तिमन ज़रूरी रान के, बिकॉज दिस रिलीजियस एक्टिविटी, आप ऐसे फॉलो करें। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब हम ऐसा सोचते हैं फिर हमें फ्रीज़र रेंट पे लेने पड़ते हैं, हमने अपने लिए ही इतना रखा होता है।
1: बिल्कुल सही। और
0: तो
1: मुख्तसर सा रखें, मुख्तसर सा रखें, और उसको
0: एग्जैक्ट
1: फ्रेश फ्रेश खाएं, ख़त्म करें। और जो आप पर फ़र्ज़ किया गया है कि आपने इसको 3 हिस्सों में बांट के खाना है, आप अपना हिस्सा उठा लें, बाकी 2 हिस्से बांट दें और सबको यूनिफॉर्मली दें, किसी को बड़ा या किसी को छोटा ना दें। उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शायद हमारे जो जो जो हमें जो सवाब मिलने हैं, शायद वो सवाब हमें पूरे पूरे मिल जाएं।
0: इंशाल्लाह, बट वी हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और दूसरा एक तरीका है कि आप ना घर में, जैसे हम रखते हैं, जैसे मैं करता हूँ घर में, जैसे मीट आता है तो हम उसे छोटे छोटे पीसेस में काट के, आई जस्ट पुट सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा रेड चिली पाउडर, और उसके ऊपर मैं हल्का कॉर्नफ्लावर डाल देता हूँ, और उसको अगर मैं स्टोर भी करता हूँ उससे कुछ नहीं होता, और उसे आप फ्राई करेंगे तो एकदम वो नरम आ जाता है, या ग्रिल भी करेंगे वो आप उसे एयर फ्रायर में डालेंगे वो बहुत बढ़िया बनता है। तो ऐसी रेसिपीज़ आप रखें। और मुझे लगता है आपके घर में इन दिनों कम से कम 3-4 मैरिनेशंस होनी चाहिए। जैसे एक चीज़ है घर में,
1: मैरिनेशंस क्या क्या होनी चाहिए इस पर हम आपसे
0: जी
1: जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक प्यारा सा नगमा जो है तैयार, आइए सुनते हैं।

0: 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर पयामे सुप
1: सुनो सजना
0: पयामे सुप।
2: जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुब। पयाम सुब में हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान से। जी हाँ, हमारे मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में जनाब यासीन ऋषि साहब, मोहम्मद यासीन ऋषि साहब, जिन्हें हम शेफ यासीन के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। यासीन साहब, ये जो हम
3: जी
2: प्रिजर्व करते हैं मटन, हमने बचपन में देखा था कि हमारी माएं लटका देती थी मटन और उसके बाद उसी को इस्तेमाल करती, कई दिनों तक वो चलता था। आजकल हम डीप फ्रीजर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं।
3: जी,
2: डीप फ्रीजर्स में मटन डालने के बाद जब वो मटन रहता है उसमें दिनों तक,

0: कभी कभार क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है,
1: राइट,
0: 8-10 घंटे बिजली चली गई, उस टाइम लोग परेशान हो जाते हैं, अब तो कूटा हुआ कटा हुआ मीट है, इसको कैसे लटकाएं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: मुझे लगता है कि अगर लाइट चली गई और आपको लगता है कि ये अब डिफ्रॉस्ट होने लगा है, यानी फ्रीजर के अंदर जो भी आइस जमा हुआ था या मटर जमा हुआ था वो पिघलने लगा है, तो अब ये एक अंदर एक बंद डब्बा बन रहा है, तो ये मटन को ख़राब कर देगा। इट इज़ बेटर कि आप वो मटन बाहर निकाल दें। अगर वो बड़े बड़े चंक्स हैं तो इनको आप किसी एयरेटेड जगह पर रख दें जहाँ हवा है, हो सके तो थोड़ा सा टिल्ट या लटका के रख दें ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। अगर आपने मीट ऑलरेडी कटा हुआ है और वो छोटे छोटे पीसेस में है तो उसे आप किसी बर्तन या फ्लैट सरफेस पे रख दें, ट्रे पे रख दें और ऊपर मलमल का कपड़ा रख दें और किसी हवादार या खिड़की के पास रख दें, फ्रीज़र से बाहर निकाल दें। जब आप ये वापस, अगर फ्रीज़र में पूरा पानी डिफ्रॉस्ट हो गया तो जब आप ये वापस रखने लगें तो फ्रीज़र को पहले साफ़ कर लें। बेस्ट तरीका है फ्रीज़र, जैसे मैं घर में करता हूँ, आई जस्ट मिक्स बेकिंग सोडा एंड विनेगर और उसको एक स्पंज में डाल के मैं फ्रीज़र को पूरा अच्छे से साफ़ करना हूँ। तो रीज़न दो, एक तो उसके सरफेस एकदम साफ़ हो जाते हैं, अगर कोई पैथोजेंस रह भी गए तो विनेगर और बेकिंग सोडा के मिक्सचर से वो मर जाते हैं, एकदम साफ़ करें। फ्रीज़र साफ़ होने के बाद ये वापस उसमें रखें, लेकिन अगर घंटों बिजली चली जाती है इट इज़ बेटर आप उससे उसी में ना रहने दें, बाहर निकाल दें, क्योंकि अब वो फ्रीज़र में भी ख़राब होने लगेगा। दूसरा मैं बात कर रहा था कि इस बड़ी ईद पे लोग हमें विज़िट करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, नेबर्स आते हैं, फूड कनेक्ट्स ऑल द डॉट्स, हमें इसे एक तकरीब की तरह लेना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई आया है, चाय से बेटर आप कुछ और उसे ऑफ़र करें, जैसे आप एक दो मैरिनेशन घर में रखें। मैंने परसों एक मैरिनेशन बनाई थी और मुझे भी नहीं पता था, और क्योंकि कल मैंने वो मीट पकाया वो अमेजिंग बना था, मैंने एक बोल में डाला था हनी, उसमें जैसे 1 टेबलस्पून हनी, 1 टीस्पून नमक डाला था, चिली फ्लेक्स मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे, उसके बाद 2 नींबू का जूस डाला था मैंने, मैंने उसमें डाला था सोया सॉस और सेसमे यानी तिल के दाने। आप चाहे तो 1-2 मसाले अपने ओर से और डाल सकते। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा और उसमें मटन के पीसेस रखे। कल मैंने वो निकाला, कुकर में डाला, 1-2 विसल्स दे दी उसको और वो अमेजिंग बना था, हल्का सा चिल्ली का स्पाइसीनेस, हनी, अमेजिंग बना था। और सरप्राइजिंगली मेरे बच्चों ने भी वो खाया, अदरवाइज़ वो दिखने में एकदम ब्लैक लग रहा था। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप घर में आजकल पुदीना है, निकालिए, ग्राइंडर में डालिए, उसमें 2-3 ग्रीन चिली डालिए, उसमें आप थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, हरा धनिया, सब्जी वाले ऐसे ही डाल देते हैं अगर घर में है, वो निकाल के उसमें डाल दीजिए। अब थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के एक पेस्ट बना लीजिए नमक के साथ। ये पेस्ट एक बेसिक ग्रीन मैरिनेशन है, इसमें चाहे तो आप ग्रीन स्पाइसेस डाल सकते हैं, जैसे कोरिएंडर पाउडर, सौंफ का पाउडर, जिंजर का पाउडर डाल के अब इसमें मटन को रख दीजिए। एक तो वो प्रिजर्व भी रहेगा और जितनी देर रहेगा उसमें फ्लेवर भी जाएगा और गलेगा भी, टेंडराइज भी होगा, तो दूसरा वेरिएशन आपको मिल गया। तीसरा मैंने एक बनाया था, मैंने वर मसाला लिया, उसमें मैंने दही डाल दिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया मैंने, गरम मसाला डाल दिया, क्यूमिन पाउडर डाल दिया और नमक डाल दिया, उसको मिला के एकदम वर की वजह से वो एकदम ब्राइट कलर की मैरिनेशन बनी, उसमें मीट डाल दिया। अब ये मैंने 2-2 किलो मीट या 2-2.5-3 किलो मीट उसमें डाले, दैट मीन्स 6 किलो तो यही हो गए। अब ये प्रिजर्व भी हो गए, इनमें फ्लेवर भी जा रहा है, ये टेंडराइज भी हो रहा है, और मेरे घर में कोई आ रहा है तो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसे ग्रिल कर रहा हूँ या हल्का सा पका रहा हूँ और इन्हें रोटी के साथ दे रहा हूँ, बिकॉज गर्मी है तो आप शायद चाय बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वीट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पकाने के लिए भी, लोगों को सर्व करने के भी, ये डिफरेंट मैरिनेशंस हैं, आप इन्हें तैयार रखें और आपको फिर चाहे वो फ्रीज़र में रखना है या खुद आप पकाना है। तो ये वेरिएशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक ही तरह के मीट बनाते हैं बकरा ईद पे खासकर, तो आप फिर आपका पैलेट जो है डल हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, आप वो खाना पसंद नहीं करते, और स्पाइसी बहुत खाने के बाद बीच बीच में स्ट्यू बनाइए। स्ट्यू का मतलब है आपने मटन निकाला, और जब भी आपने ये प्रिजर्व किया हुआ है या स्टोर किया हुआ मटन निकाला, देयर इज अ टर्म इन किचन, व्हेन यू हैव डाउट जस्ट थ्रो इट आउट। ये मत कीजिएगा कि इसमें स्मेल है तो आप फिर भी पका रहे हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, जस्ट चेक किए ठीक है कि नहीं। और आप हल्के से प्याज भून लीजिए तेल में, उसमें डाल दीजिए ग्रीन चिली, थोड़ा सौंफ, थोड़ा धनिया का पाउडर, और उसके बाद उसमें घी डाल दीजिए 1 टेबल स्पून, और उसके बाद मटन भुनिए, थोड़ा सा पानी या मटन का ही पानी डाल दीजिए, धीमी आंच पे उसे पकाइए, तब तक आप कारपेट झाड़िए, झाड़ू लगाइए, गैस

0: उसको अटेंड कीजिए, अपने लिए चाय बनाइए, वो स्ट्यू आराम से बनेगा, ना मसाले ना कुछ, हल्का ग्रीन कलर का। दीज आर कॉल्ड सूदिंग डिशेज। तो मुझे लगता है ये कब होगा, ये तब होगा जब आप मटन को ख़त्म करने की मुहिम में नहीं लगेंगे, जब आप मटन को एंजॉय करने की मुहिम में लगेंगे और अपने साथ दूसरों को बिठाइए ज़बरदस्ती, अपने रिलेटिव्स को बुलाइए, गार्डन में 10 मिनट बैठिए, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जगह लिया है। तो मटन ही सही, ऐसे करके आप आराम से बैठिए,
1: यही बहाना सही।
0: और बिलीव मी, बाहर बहुत, आपके घर के बाहर अनगिनत लोग लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि आप घर में ना पकाइए, तो उन्हें हराना है और ऐसे बैठा के आप कर सकते हैं मटन के साथ।
1: बहुत खूब, इस पर और बात करेंगे, यहां रुकते हैं, नगमे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत।

दोस्तों, अपने लकी अली की आवाज में ये नगमा सुना। उम्मीद करते हैं आपने नगमा पसंद किया होगा। हालांकि जब नगमा शुरू हुआ था तो हमारे आज के मेहमान शेफ यासीन यानी मोहम्मद यासीन ऋषि साहब, जो कि फैकल्टी हैं IHM राजबाग।

0: वो गुनगुनाने लग गए थे, थोड़ा सा वो भी मस्ती में आ गए थे इस नगमे के साथ, और मुझे अच्छा लगा कि उन्हें एक नगमा अच्छा लगा। अब समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पायाम सुबह, पायाम सुबह हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान से। जी हाँ, हमारे किचन के डॉक्टर शेफ यासीन। शेफ यासीन, हम बात कर रहे थे
1: जी
0: अब और क्या।
1: सबसे बड़ी बात है, खासकर क्वेश्चन सारवन हजीरी, तो मुझे लगता है उससे प्रिजर्व तो नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्टोर लंग्स। अगर उन्हें थोड़ी 1-2 घंटे बाद भी पकाना है तो बेटर है कि उनमें पूरा पानी भर दें, फुलाए उनको, पूरा ब्लड इम्प्योरिटीज बाहर निकाल दें। और पकाने से पहले बेस्ट है कि उनको पीसेस में काटें, एक ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक और सिरका डाल दें, वाइट विनेगर, और उसमें करीबन 20 मिनट ये कटे हुए पीसेस रख दें। आप देखेंगे कि थोड़ा सा उसमें बबल जैसे आने लगेंगे। उसके बाद 1-2 बार ठंडे पानी से उनको वॉश कर लें। अब जब चारवन बनाने की बारी है, जो भी आपकी रेसिपी है वो बेस्ट है, वैसे ही बनाइए। लेकिन मसाले डालने से पहले इसको तेल में अच्छे से भुनिए। बुनने का मतलब है, एक स्टेज आएगी कि उसमें बहुत सारा पानी बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे पानी कम होने लगेगा और आपको लगेगा इसमें झाग जैसा आ रहा है। वो झाग जब तक खत्म ना हो जाए पूरा और वापस ये चमकीला और ऑयल वापस ना आए, तब तक इसे भुनिए। उसके बाद मसाले डालिए और उसके बाद उसे पकाइए। ये हो गया चारवन। बिकॉज चारवन को अगर आप कच्चा रखेंगे तो बहुत बार डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, लोग बीमार भी हो सकते हैं, और ये बहुत टेंडर और बहुत डेलिकेट आर्गन है, एक जल्दी ख़राब होता है। तो बेटर है इसे आप सही तरीके से पकाएं। ये थे कंचे डेमी यानी स्टमक, उससे भी आप अच्छे से साफ करें, हो सके तो थोड़ा नींबू थोड़े से विनेगर में अच्छे से वॉश करके पूरी इसकी स्किन उठा लें, और उससे भी आप स्टोर करने के बजाय जल्दी से पका लें, क्योंकि उसी में स्टमक में ही वो सारा खाना चर्न होता है, तो वो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चरवन के बारे में बात है। अगर आप मीट से स्मेल आती है, गॉड मुझे आप माफ़ कर लें, ऐसा कोई ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुर्बानी का मीट ख़राब नहीं हो सकता, वो भी ख़राब हो सकता है। अगर आपने सही से स्टोर नहीं किया, उसे सही से हैंडल नहीं किया, तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो बेटर है अगर उसमें से स्मेल आ रही है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ब्राइन सॉल्यूशन में डालते हैं, नमकीले पानी में कुछ देर रखते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं स्मेल आई चली गई कि नहीं। कुछ लोग उससे रिफाइंड फ्लावर से रब कर देते हैं उसके 1-2 बार, उसके बाद ठंडे पानी से धोते हैं 1-2 बार, उसकी वो स्मेल चली जाएगी। अब डिपेंड करता है ये कितना पुराना है, कहीं ये ख़राब ही तो नहीं हो गया, इसका कलर भी डिसकलर हो गया है, तब भी आप पका रहे हैं, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। लेकिन अगर हल्की फुल्की स्मेल है, जैसे अगर आप इन दिनों मेरे एक इंस्टाग्राम हैंडल पे देखेंगे, मैंने एक मिक्सचर बनाया था जिसमें मैंने थोड़ा सा वर्म मसाला, थोड़ा प्रान पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक मिलाया, अच्छा सा पेस्ट बनाया और वो मीट के ऊपर लगाया, और उसके ऊपर फिर मैंने मैदा लगाया और उसको आधे घंटे रखा, फिर ठंडे पानी से धोया। धोने के बाद वापस एक बार उस पर मैदा लगाया ताकि वो इम्प्योरिटीज़ हटे और उसकी भी स्मेल कम हो जाए, और जब मैंने वो धोया तो बिल्कुल उसमें अच्छी खुशबू आ रही थी मसालों की, प्रान की, और वो स्मेल पूरी चली गई थी। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट इससे स्मेल चली जाएगी। बट ये एक और टिप मैं दे दूं, अगर आप मीट स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उसे पका रहे हैं, शार्पन इट। शार्पन का मतलब है इसकी मसालियत जो है थोड़ा हाई रखें, ज़्यादा ब्लॉन्ड ना कर दें। बहुत बार वो उस मीट की स्मेल पंजेंट हो जाती है, डोमिनेंट करती है बाकी स्पाइसेस को, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी आप पुराना मीट या स्टोर किया हुआ मीट पकाएं तो उससे आप शार्पन करें, थोड़ा स्पाइसी बनाएं। और अगर आप कोई राइस प्रिपरेशन के साथ मिक्स कर रहे हैं तो बेटर है आप पक्की बिरयानी स्टाइल करें। पक्की बिरयानी स्टाइल मींस आप चावल अलग पका रहे हैं, मीट को अलग पका रहे हैं। जब उसको अच्छे से भुनें, अच्छे से तैयार करें, उसके बाद लेयरिंग स्टाइल से उसको पकाएं ताकि आप वो आनंद ले पाएं। और सबसे अच्छी बात मैं वही कहूँगा जो आपके आजू बाजू हैं, अभी पुदीना है, धनिया है, आज छन्नर, आज छंद, आज सौचल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छे सुपर फूड्स हैं और इनके साथ मीट की कॉम्बिनेशंस बनाएं। और हाँ, तेल का इस्तेमाल बहुत कम करें और मस्टर्ड करेंगे तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि तेल से टेस्टी नहीं बनता खाना, या अगर आप बनाने के बाद जितना हो सके तेल उसे निकाल दें, क्योंकि इसमें फैट ऑलरेडी होता है, वो उसमें पक जाता है। बट ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं घर में, लेकिन खाएं उतना ही जितना आप पचा सकें। ऐसा नहीं है कि आजकल अवेलेबल है तो आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब में मीट खा रहे हैं। और मुझे लगता है आपके घर में दो तीन चीज़ें इन दिनों होनी चाहिए, कम से कम दही में इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं, कमी।

0: दोस्तों आपने नगमा सुना, उम्मीद करते हैं नगमा आपने पसंद किया होगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सु में। बने हुए हमारे साथ आज के हमारे मेहमान शेफ यासीन। शेफ यासीन से हम बात कर रहे हैं। शेफ यासीन, पाए बहुत निकलते हैं इन कुर्बानी वाले में,
1: बिल्कुल,
0: और अक्सर बेशतर लोग जानते नहीं इन पायों का क्या करना है। दो बेड़ तीन बेड़ हर घर में करते हैं।
1: मैं ये कश्मीरी में बोलूँगा, ये गर पाच कलहर आसान, सारी गरिक शौक कर पाच हना खमो कलहर माजा गोच आसन, मगर पत क्या है लेडीज आसान बिचार तम बुजान, तमिश अथन तो तमुन बुथिस पलव खराब, या नो आज समझ कतन लिखित। अगर शौक सारे करें इसमें आप उस लेडीज की हेल्प करो, उसको रोस्ट करने में, उसकी कम्बरसम जॉब है। रहा पकाने की बात, मुझे लगता है जो बेड का सर है या

0: आप सब ये हेल्दी है और ये चीजें हैं, अगर आपने घर में मीट स्टफ किया है तो इनको इसको इफेक्टिवली यूज करना है, अदरवाइज आप रिस्क को बर्बाद करेंगे। दूसरा, ये हमारा रिलीजन है और कल्चर है। बच्चों को साथ बिठाइए, उसको बोलिए कुर्बानी। मुझे लगता है बेड स्लॉटर हो रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काट रहे हैं, इससे बेस्ट लाइव सेशन क्या हो सकता है बच्चे के
1: बच्चे को
0: लिए, कुर्बानी
1: समझाने
0: समझाने के
1: में
0: लिए,
1: बिल्कुल सही बात
0: वो कॉन्सेप्ट उजागर करने में। और उसके बाद त्याग करें, उस ईद पे ना खुद के दिल को इतना बड़ा करें, अगर आपके पास नहीं बचता, मुझे
1: कोई
0: लगता है
1: नहीं।
0: योर जॉब इज डन,
1: यस,
0: तो बांटिए इसको, ये मत देखिए।
1: दिल खोल के
0: मैं कहता हूं
1: बांटिए।
0: चेहरे, जब भी आपको ऐसी कोई चीज करनी हो ना, चेहरा देखिए, बस आंखें अपनी नीचे रखिए और दे दीजिए,
1: बांटना शुरू कर
0: क्योंकि
1: दीजिए।
0: चेहरा देखेंगे तो श्रीनगर बहुत छोटी जगह है, आपको वो जाना पहचाना ही दिखेगा
1: बिल्कुल
0: चेहरा।
1: सही,
0: आंखें बंद करके
1: देना
0: दे
1: शुरू कर
0: दीजिए,
1: दीजिए,
0: एंड वो जो खुशी आपको मिलेगी, मुझे लगता है
1: उसके
0: वो
1: बराबर
0: कहीं
1: कोई
0: कहीं
1: खुशी
0: नहीं।
1: नहीं। बिल्कुल
0: और
1: सही,
0: मुझे एक याद आता है, गांधी जी ने एक दिन कहा था, उसको कहा था कि अगर कोई बंदा, इफ ही और शी स्टार्ट थिंकिंग वेरी हाई ऑफ हिम और हरसेल्फ, उसको आसमान दौड़ने लगे, से क्या बोलते, उसने बोला कि उस इंसान को चाहिए नीचे जाए, एक भिखारी को ढूंढे और 30 सेकंड उसके चेहरे को देखे, जो होपलेस बेयारो मददगार होता है, तो उसको पता चलेगा कि मैं कितना लकी हूँ। तो बीच में छे ऐसा मस वाल, इट इज लिटरली एक
1: एक
0: बाल,
1: बाल
0: कि
1: जैसी
0: आप इस
1: बारीकी से,
0: साइड
1: अगर है
0: हैं
1: इस
0: और इस
1: साइड में
0: साइड
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: सही
0: और
1: कहा
0: इस
1: आपने।
0: साइड आप लकी है, ये मत कीजिए कि मैं ही कुछ स्पेशल हूं।
1: ये
0: तो
1: ऊपर
0: मुझे
1: वाले का
0: लगता
1: कर्म है आप पे कि उन्हें आपको
0: एग्जैक्टली
1: इस बाल के इस साइड रखा है। अगर खुदा ना खास्ता इस
0: एग्जैक्टली
1: साइड होते
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: पछताते।
0: बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सारी चीज आप ट्राई कर सकते हो, और मेरे पेज पे भी आप जा सकते हैं, वहां ये सारी ये ट्रिक्स हैं, ये किचन हैक्स हैं, रेसिपीज हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं।
1: शेफ यासीन, आज आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू।
1: स्टूडियो आने के लिए और हमें ये बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें समझाने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस ईद पर लोग डेफिनेटली इन चीजों का ख्याल रखेंगे
0: इंशाल्लाह
1: और डेफिनेटली अपने किचन को हेल्दी रखेंगे। आज
0: इंशाल्लाह।
1: के दिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको हमारी तरफ से, आकाशवाणी श्रीनगर की पूरी टीम की तरफ से, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारक।
0: आई विश यू द सेम एंड थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामिन, ये थे शेफ यासीन, डॉक्टर शेफ यासीन कहना चाहिए मुझे, जो किचन के डॉक्टर हैं, और उनने आज हमें ये ट्रिक्स बताई, और हमें उम्मीद है कि आप इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो आज के इस पयाम सुबह में बस इतना ही, इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 7:10 पर आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत, कि आप अपना ख्याल डेस रखेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहिए, और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। शेफ यासीन सूफी मिजाज के हैं, तो चलते चलते शेफ यासीन के लिए ये सूफी ट्रैक।

समय ना आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पयम सुबह। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 78.8 मीटर एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन वली सूफियान मौसीकी बोजो फनकार शे मोहम्मद याकूब शेख तीन सती यमन निज बुजुते मकामे झंझोटी।

0: मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय 12 बज रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई।
2: ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।

दोस्तों आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं और ये नगमा आपने सुना फिल्म सावन की घटा से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। एस एच बिहारी के बोल थे, ओपिनर की मौसीकी थी। और अब अगला गीत आपको सुनवाएंगे, ये है मोहम्मद रफ़ी और शारदा का गाया हुआ नगमा। गुलजार के बोल है, शंकर जयकिशन की मौसीकी है और फिल्म है सीमा।

जी दोस्तों, आप सुनेंगे अब ज़मीर फिल्म का नगमा। साहिर के बोल है, सवन चक्रवर्ती की मौसिकी है और किशोर कुमार की आवाज़ है।

आप सुनेंगे अब जमीर फिल्म का नगमा। साहिर के बोल है, सबन चक्रवर्ती की मौसिकी है और किशोर कुमार की आवाज़ है।

0: जी दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे और ये आखिरी नगमा आपने सुना आर डी बर्मन की मौसीकी में फिल्म ये वादा रहा से। गुलशन बावरा के बोल थे और आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मुनशियात की लानत के खिलाफ अपने अजम मुसम्मम का इजहार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जिला बांडीपुरा में एक पद यात्रा की क्यादत की। अपने ख्याल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान कौम की तामीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और इन्हें इन सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
2: हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
1: इधर जिला श्रीनगर में नशा मुक्त अभियान के तहत कसूरवारों के खिलाफ अब तक 84 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। 117 गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, जबकि 100 ड्राइविंग लाइसेंस, 46 RCs और 17 केमिस्ट लाइसेंस मंसूख की गई हैं। इस दौरान जिले में मुनशियात समगलरों से मंसूब 40 करोड़ रुपये के असासों को कुरुक या मुनहदम किया गया है। इन बातों की जानकारी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की सदारत में मुनक्किदा जिला की एनकॉर्ड मीटिंग में दी गई, जिसमें SSP श्रीनगर डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद थे। मक्का शरीफ में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है, जहां अजमीन किराम तलबिया का विरद करते हुए अल्लाह की खुशनूदी और फजल करम के तलबगार हैं। आज़मीन किराम आज मैदान अरफात में जमा हैं, जहां वो हज का रुकन अजीम वकूफ़ अरफात में महव हैं। वो वहां जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। आज नमाज मगरिब से पहले वो मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे और वहां रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। वहीं पर वो मगरिब और ईशा की नमाज भी एक साथ अदा करेंगे। इसके बाद वो रात खुले आसमान तले गुजार कर कल सुबह मिना पहुँचेंगे और हज के अरकान अदा करेंगे।
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك।
1: कल मनाई जाने वाली ईद उल अज़हा की तकरीब सैयद के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम तैयारियां और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड इंतजामिया और अहम मसाजिद के अइमा हजरात के साथ एक तफसीली मीटिंग के दौरान तमाम ज़रूरी उमूर का तफसीली जायजा लिया।
4: एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे मीटिंग होना लाजमी था और सबों ने अपना रिव्यू दिया और वक्फ ने भी अपना मौकिफ सामने रखा, क्योंकि सबसे बड़ा इज्तिमा जो हजरत बल दरगाह में होगा और बाकी जो हमारी दरगाहें हैं, जैसे नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर की बात करें, उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान ईद की नमाज बड़े अच्छे तरीके से होगी।
1: जम्मू कश्मीर खासकर वादी के दीगर सभी अजला में भी मुनक्किद होने वाले ईद नमाज के रूह परवर इज्तिमाआत के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डूनीवार चाडूरा जाकर वहां MLA अली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दो

दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी ठीक वैसे ही ना, जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के

0: समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा,
0: जी
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है?
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन
0: जी
1: फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी,
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo.

0: animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल
4: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जयरापुर, जय भारत।
7: जय जयरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज।

0: पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
1: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
0: जी।
1: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
0: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
1: बिल्कुल,
0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
5: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
5: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
5: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
5: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
5: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
5: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
7: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
8: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
9: बिल्कुल।
8: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
9: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
8: लेकिन जरा होशियारी से।
9: जो हुकुम सरकार।

0: कर दिखाओ आओ सामने
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी फौजियों
2: हुजूर
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से
2: जी
0: हाँ छोड़ो मुझे
1: हाथ
0: मत लगाओ मुझे मुझसे हाथ हटाओ मैंने कहा छोड़ो मुझे हटो यहाँ से
1: शाबाश शाबाश सारल जंग मैं खुश हुआ तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
3: हुजूर
0: अच्छा तो ये सब इसकी कारस्तानी है एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है लानत है तुम पर सालार जंग लानत है लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था
1: फौजियों ले चलो इसको
0: छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए तरह तरह के लालच भी दिए गए लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे
6: देखो जोरावर अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा
0: अप्पा ये नहीं हो सकता
6: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम बात मान लो मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा
0: ये नामुमकिन है
6: Why?
0: हमें माफ कीजिए हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते हम देशद्रोह नहीं करेंगे हरगिज नहीं करेंगे अप्पा साहब अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है
6: तो नहीं मानोगे देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें ये सजा
0: अप्पा साहब हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए हमने जो किया हमें उस पर गर्व है कैद फांसी या काला पानी इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे जरा भी नहीं
6: एक्चुअली यू आर अ फूल
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई
5: काला पानी की सजा
4: हाँ काला पानी की सजा भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं भारत माँ का बहादुर बेटा हूं इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा फिर मैं तो राजा हूं
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।

0: John Allen! Which hall? तुम चारों तरफ से घिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: समीन, ये था NCERT का तैयार करदा तालीमी प्रोग्राम उमंग। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: मीडियम वेव 268 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। आइए समीन जावेद अख्तर के बोल सुनते हैं, शंकर महादेवन की मौसिकी और शंकर महादेवन की आवाज में। फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: सुना स्लम डॉग मिलियनेयर का वो साया नगमा। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 2.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें होंगी और 2 बजे मिड डे न्यूज़ होगी।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कनकनी और इन्हें काबिले इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गाँवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और IPL क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में ख़त्म हो गई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फ़रोग के खातिर इख्तिरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के मुल्कों ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है।
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया और क्वाड के 4 मुल्कों ने खास तौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जेरे समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने की सरगर्मियां शामिल हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद पेशरफ्त की है।
3: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of 4 strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
1: जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा आज सेवा तीर्थ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उधर वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज सुपहर ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 रोज़ा दौरे पर गंगटोक पहुँच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर सीनियर शख्सियतों ने किया। सदर जमहूरिया अपने दौरे में ख्वातीन के लिए मखसूस पिंक बसों का इफ्तिताह करेंगी, जिसका मकसद रियासत में महफूज और काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट सहूलियात में बेहतरी लाना है। वो सिक्किम की मालामाल माहौलियाती और फूलों की सैर करने के लिए रिज पार्क में ऑर्किडेरियम भी जाएंगी। बाद में वो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का भी दौरा करेंगी। ये इदारा नायाब मखतूतात और बौद्ध सकाफती फनपारों की हिफाजत के लिए जाना जाता है। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया नाथुला दर्रा जाएंगी और गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन वो सिक्किम पुलिस को भारत के सदर जमहूरिया के पुलिस कलर मेडल से नवाजेंगी। इसके साथ

ही सिक्किम मुल्क में ऐसी 15वीं रियासत बन जाएगी जिसे बावकार एजाज हासिल हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाक बैन अलावामी सरहद पर सांचू सरहद चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस इलाके में सरहदी हिफाजती दस्ते के अमले से बातचीत की और मुल्क की सरहदों की हिफाजत में खुद को वक्फ कर देने पर उनकी तारीफ की। वजीर दाखिला ने अपने दौरे में रियासत के सरहदी खित्तों के लिए दरख्शा गाँवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले को वक्फ किया। इस पहल के तहत तालीम, सड़कों, बिजली और रोज़गार के मौक़ों समेत बुनियादी ढांचे और लाजमी सहूलियात को बैन अलावामी सरहद पर वाक़ गाँवों में इस्तेहकाम हासिल होगा। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर ज़िले के गाँवों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वजीर आला भजन लाल शर्मा और कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, BSF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह तपन देका और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज देर गए जनाब अमित शाह बीकानेर में BSF सदर दफ्तर में सरहदी हिफाजत के बारे में एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर वजारत दाखिला, राजस्थान सरकार और BSF के सीनियर अफसरान भी तालमेल से मुतालिक इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक मुश्तरका बचाव टीम के जरिए गुलमर्ग में केबल कार में फंसे हुए 300 सयाहों को कामयाबी के साथ बचाया जाना भारत की आफात से निपटने वाली एजेंसियों की पेशावराना सलाहियत, जुरत और इश्तराक का इजहार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने चैलेंजों से पुर कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारतीय फौज, जम्मू और कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम की कोशिशों को सराहा। भारत और अमेरिका ने आज एक दोतरफा फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना है। ये अहम माहदा नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक दूसरे को सौंपा। वजीर खारजा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क से मुतनव्वे सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलेगा, दोनों मुल्कों को माली मामलात से मुतालिक तआवुन में मदद मिलेगी और अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर के मौसर बंदोबस्त में भी मदद मिलेगी। तमिलनाडु में 3 असेंबली हलकों मदुरंतकम, पेरुंदुरई और धारापुरम को AIADMK से वाबस्ता 3 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद खाली हलके करार दे दिया गया है। ये सीटें इसलिए खाली हुई कि स्पीकर ने कल उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। इससे पहले त्रिची मशरकी हलके को भी खाली करार दे दिया गया था क्योंकि वजीर आला जोसेफ विजय ने, जिन्होंने 2 हलकों से कामयाबी हासिल की थी, त्रिची मशरक से इस्तीफा दे दिया था। AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी के पलानीस्वामी ने इन 3 अरकान असेंबली के इस्तीफे को मंजूर करने के स्पीकर के फैसले की नुक्ताचीनी की है। भारत समेत दुनिया के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीजा हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज़ के मौके पर आजमीन हज मिना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ हज का रुकन आज़म अदा किया जा रहा है। ये आजमीन वहाँ तौबा व इस्तग़फ़ार में दिन गुजार रहे हैं। आजमीन हज मस्जिद नबरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंगरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में लू से कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि बहुत से मकामात पर दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री के दरमियान चल रहा है। जुनूब मगरबी मानसून के आज या कल केरलम पहुंचने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे की जानिब से मानसून की आमद के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे IPL के फाइनल में पहुँच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारत खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तकम महफूज और मजबूत तवानाई के मार्केट्स के लिए पुख्ता अजम का इरादा किया। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गाँवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा

0: Have won Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। आई समय चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज करते हैं तमाशा फिल्म के नगमे से। इरशाद कामिल के बोल है, ए आर रहमान की मौसीकी है और इस नगमे को गाया है अलका याग्निक और अरिजीत ने।

दोस्तों आप फिल्मी नकमे सुन रहे हैं और ये इरशाद कामिल के अशआर थे रहमान की मौसीकी में, अलका याग्निक और अरिजीत की आवाज़ें थी, फिल्म थी तमाशा। और अब आपको सुनवाते हैं आकांक्षा भान और जावेद अली की आवाज़ों में फैज़ अनवर के बोल, फरजान फैज़ की मौसीकी है और फिल्म का नाम है वीरे दी वेडिंग।

दोस्तों आप नगमे समात कर रहे थे। ये था फिल्म तो बात पक्की का नगमा। सईद कादरी के बोल थे, प्रीतम की मौसीकी थी और सोनू निगम की आवाज़ थी। ये छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर ते FM 71.5 MHz पर। जमीन वली सूफिया ने मौसीकी बोजो। फनकार छे वस्ताद मोहम्मद याकूब शेख थी, हिंसा थी ये मनीष बोजो थी मकामी तेलंगा।

بچهش نه وکا شد بولون ده سمجون گاشت چه سطح میر زبان

मीडियम वेव 200.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल है, उत्तम सिंह की मौसीकी है और आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

जी फौजी भाइयों, आपने ये नगमा सुना ट्यूबलाइट फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य की ये बोल थे, प्रीतम की मौसीकी थी और आतिफ असलम की आवाज़ थी। और अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत हमने क्यों किया है, यह है साजिद वाजिद की मौसीकी में इरशाद कामिल के बोल। फिल्म का नाम है सनफ सरदार और आवाज़ राहत फ़तेह अली खान और साथियों की।

फौजीभाइयों, आपने ये नगमा सुना। ये था समीर का लिखा हुआ नगमा आनंद मिलिंद की मौसिकी में। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। फिल्म का नाम था ज़माने से क्या डरना। आइए अब आपको एक और गीत सुनाते हैं। ये है तमाचे फिल्म का नगमा। सोनू निगम की आवाज़ में है ये नगमा। आइए समाप्त करते हैं।

जी फौजी भाइयों, आपने सोनू निगम की आवाज में तमाचे फिल्म का ये नगमा सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।

में आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं FM 102.3 MHz पर, और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर भी। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सा नगमा। यह है फिल्म सिर्फ तुम का नगमा। नदीम श्रवण की मौसिकी में ये नगमा गाया है अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाज़ें हैं, और बोल समीर लिखे हैं।

जी फौजी भाइयों, ये थे रजत अरोरा के बोल। शंकर विशाल शेखर की मौसीकी थी, सुनिधि चौहान की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था द डर्टी पिक्चर। और अब प्रोग्राम में आपके लिए पेश करेंगे आखिरी गीत, और ये हमने लिया है हे बेबी फिल्म से। शंकर एहसान लॉय की मौसीकी है, समीर के बोल हैं और आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहां से उर्दू खबरें नशर होंगी।
1: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा के मीटिंग इख्ताम पजीर। ममालिक ने दहशतगर्दी से निमटने का दोहराया आजम। मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के गुनागुं सकाफती वर्से को तहफ़ देने की वादाबंद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सऊदी अरब में मनासी के हज का सिलसिला जारी। आजमीन मैदान अरफात में, वकूफ़ अरफात में महव। और ईद उल अज़हा के ताल्लुक से आज वादी के बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी। अब पेश है खबरों की तफसील।

0: बात दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि ये त्यौहार आपसी भाईचारे और रवादारी का आकाश है और हमें ये त्यौहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन, जमियत हमदानिया जम्मू कश्मीर के सरबरा मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को ख़त्म करने, नीज इसलत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: उसका का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बिदत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक स्टेज अदाकार अशरफ फयाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशे करने वाला शख्स अकेला रह जाता है और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगती है। याद रखें, नशा किसी मसले का हल नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस दलदल में फंस चुका है तो मायूस न हो, बात करें अपने घर वालों या किसी मुखलिस दोस्त से बात करें, मदद लें। डॉक्टर और माहिरीन इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इरादा करें, आपकी जिंदगी आपके नशे से ज्यादा कीमती है। आइए आज हम मिलकर अहद करें कि हम नशे को ना कहेंगे और एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
0: श्रीनगर में 30 और 31 मई को कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनाकाद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की अहमियत के बारे में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नायरा मंजूर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनाकद किया जाता है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st मई को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। सो वील हैव अ मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा। वील ऑल्सो हैव अ सेकंड स्टेज व्हिच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन। हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशन्स, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा,
4: मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे अपडेट हो जाएगा।
0: कठवा के सुखनाल गांव से ताल्लुक रखने वाली अंजलि देवी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया है। वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस से वाबस्ता खवातीन पर मबनी एक मुहिम जोए का हिस्सा है। 8,843 मीटर की ऊंचाई को सर करते हुए उन्होंने वहां कौमी परचम लहराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
5: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

जी सामीन, सैयद तारक परदेसी पेश कर रहा से आरफाना कलाम। तैसामीन, कल ईद उल बकर मनाई जुलसी, इस दिया कई खसूसताएं। ईद उल अजहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुनत है। ये हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी दी याद बिच मनाई जुलदी है, जिड़ी अल्लाह दी रजा वास्ते सब कुछ कुर्बान करने दा दरस देंदी है। इस दिन दा सब तो खास अमल कुर्बानी दे जानवरों को कुर्बान करना है, जिसका मकसद मांस हासिल करना नहीं बल्कि तकवा और इखलास दा इजहार है। इस दिन को हजे अकबर दा दिन भी आखे गेंदा है, क्योंकि इस दिन हाजी हजरात मक्के बिच मनासके हज अंजाम दें देन। सामीन, प्रोग्राम जारी है, ते आओ अगे सुजाद अहमद कुरैशी दी आवाज़ बिच सुनदे हां ए गीत।

जी सामीन, सुजात कुरैशी दी आवाज़ विच गीत सुनिया, उम्मीद है पसंद आया उसी। ते सामीन, कुर्बानी देने दा वक्त जड़ा है वह त्रै दिन तक चलता है, 10, 11 और 12 जुलहजा दे दी गुरूब होने तक, जिन्हों को अयाम नहर आख्या जुलदा है। ईदी वाले त्याड़े ईद नमाज तो पहले कुर्बानी करनी जायज़ नहीं, और 9 जुलहजा दी फजर तो 13 जुलहजा दी डिगरी तक हर फर्ज नमाज तो पिछे तकबीर तशरीक आखना वाजिब है। कुर्बानी दे मासा को त्रै हिस्सों में बंडिया जुलदा है।

0: अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम सुन रहे थे। आइए अब पहाड़ी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब सामीन, 4:20 होए। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पहाड़ी खबरनामे दे नाल में सैयद उमर मुख्तार। पहला सुर्खियां ते एक नज़र। नवी दिल्ली विच क्वाड मुल्कां दे वज़राए खारजा की मीटिंग मुक गई। ममालिक सोन दहशतगर्दी नाल मुकाबले वस्ते मुकाबले दा दोहराया अज़म। मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर दे सकाफती वरसे को तहफ़ुज़ देने दी वादा बंद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। सऊदी अरब विच मनासके हज दा सिलसिला जारी। आज़मीन मैदान अरफात विच वकूफ अरफात विच मसरूफ। तय ईद उल अज़हा दे तालुक नाल अज वादी दे बाज़ारां विच जबरदस्त चहल पहल। हुण पेश है खबरां दी तफसील। क्वाड मुल्कां दे वज़राए खारजा दी मीटिंग अज नवीं दिल्ली विच मुक गई है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर सुन वज़राए खारजा

0: अभी आप पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे, पेशकश समी नशा। मीटिंग 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। शाम के 5 बज रहे हैं। समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले एक छोटा सा वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: ओ अपना देश माँ बाहर हो।
1: इस साल यानी 2026 को मौजू है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, मतलब आज को मुशाहिदो कल को तहफ़्फ़ुज़। इस मौजू का मकसद यह है कि अगर हम आज मौसमी निज़ाम या माहौल को सही अंदाजो ला सकें और साइंसी डाटो जमा करा तो इसते आने वाला मौसमी आफात और मौसमी तब्दीली का असरात बेहतर तौर पर सामना किया जा सके। मौसमियात हर साल एक खास मौजू के तहत मनाया जाए ताकि किसी एक अहम और उभरता मसला पर तवज्जो दी जा सके। मिसाल के तौर पर 2024 ने एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, 2023 ने द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, 2022 ने अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, 2021 ने द ओशन और क्लाइमेट एंड वेदर, 2020 ने क्लाइमेट एंड वाटर। ये मौजूद इस गल की निशानदेही करें कि दुनिया भर में मौसमी तहकीक और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ना कितनी अहमियत दी जा रही है। सामिन मोहतरम, अगर हमारे कुलनात ये कलाम है।
0: सरकारे दो आलम का दर पर।

हमारे को एक इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू इसराइल असर साबरों को है, जिड़ा कि एकेडमी अवार्ड विनर था। उन्हें एकेडमी का अवार्ड भी हासिल किया और इनके नाल जी गलबात है वह मारो अदबी सफ़र।

दरअसल संताली तो पहले हमारी टॉक जी थी वे आजकल पाकिस्तान का हिस्सा भी चली गई हैं, वे बड़ी अच्छी टॉक थी। तो आजकल जी हम रात जब डोर गार्ड सर के वाह इलाका त्रेल बच वो है नियाबत जी उसकी नियाबत नहीं बल्कि हम तहसील बन गई है, तहसील गुरेज है, तो इलाको जो है वो त्रेल है, तो ना उस जगह को है जब डोर गार्ड सर है, ज्यादातर मशहूर जगह जी है वो गार्ड सर। यह गल भी अगर हूँ दसती हूँ तो दिलचस्पी दिखाली नहीं रह से मेरा दादा साहब जड़ा था वे उन्होंने काजी कहें था लोग वे कजा भी बरते था और वे बड़ा ओलिया अल्लाह था। तो इस सिलसिला के बच्चे उनको तरीकेकार यो हो थो कि अपना डेरा के नाल एक कोई मौलवी रखें था जो बच्चा ना पढ़ाए थो ज़्यादातर इस्लामी तालीम और उससे ज़्यादा अगर हो थो तो यो फारसी या कुछ इस तरह की चीज़ जी थी वे बढ़ाए तो मैं

0: वह आखन कर आसान ओखे। यो उन्हा का उसको जवाब थो कि अगे मैं अपनी तरफों उनके ऊपर सवाल कियो, वो इस तरह थो कि औखत औखियां कई सिर जग पईयां, होया कि जे आए फरमान औखे, अदब शेर तारीर मखौल नाई, जेकर समझने पै समझान औखे। परखण सदा जानान अनजानियां नूं आउंदे बेलियां दे इम्तिहान औखे, असी सत बेतालियां आल करखां असर तार ते मर्द मैदान औखे। ते यो सवाल मैं लिख के उन्होंने भेजे, इसको मतलब तो तालब और मतलूब, और ये उन्होंने हल भी कर ली थे। या उस वक्त को आई के यादगार थी, शेर मैंने याद रही, तो वो पंजाबी का सिलसिला भी कम कुछ था।
1: खैर तो, कितनी उम्र रही उस वक्त
0: जी? उस वक्त मेरा ख्याल ना बालक था
1: जी।
0: हाँ
1: ठीक
0: जी।
1: फिर गोजरी वाले पास है तुम कहा गए?
0: हाँ, गोजरी को ऐसा हो कि हमने एक अंजमन मनाई इस नमेड़ी बेची, तो हम कोई दो त्रे आदमी था, एक पाल अजीम था, मौलाना इस्माइल निज़ामी था, हम उन अंजमन हमने बनाई, और उसको हमने यो रखे कि ज़्यादातर गोजरी के बेची कुछ की हो जाए। तो वह कुछ ऐसा अच्छा वक्त के बीच कुछ उसकी बुनियाद पई कि वाकई गोजरी जड़ी थी वह उतम अगे चली, और ऐसी चली कि वह मेरा ख्याल है कि आज जितनी मेरी रियासत के बीच वह फैली हुई चीज़ है, वो समझू कि वह उसकी उसकी अंजमन की देन है।
1: असल रेडियो व थारो तारफ किस तरह हुआ?
0: रेडियो के पर जनाब एक लम्बी सारी गल है। मेरा जो कलाम था इब्तिदा के पीछे कदे भुल तो नहीं दिता, यह है कि वतन की एक मेरी नज़म थी, वतन मेरा का आशिक लोक सारा, खमीर इसका में जन्नत का नज़ारा। तो सबसे पहली गोजरी शायरी जी थी वह रेडियो पर यह नज़म छाया हुई थी।
1: जी अच्छा साहब, कल्चरल अकेडमी ने सारा कलाम ते नसरी मवाद ना जिस कदर छापे और जिस तरह थारी कदरदानी की, उसको कुछ एक जिक्र हो जाए
0: जी। कल्चर अकेडमी में दरअसल मेरी काफ़ी गजल भी छापी, नज़म भी छापी, शायद कोई गीत भी छापया होगा, लेकिन गजल और नज़म जड़ी में बहुत ज़्यादा छापी हैं। मकाला मेरा तो बहुत काफ़ी लिए हैं, जिन्होंने कोई ख़ास शख्सियतों का बारा के बीच मकाला था, एक मकालो शेख साहब का बारा बीच भी मैं लिखे हुए, तो इस तरह की चीज़ थी।
1: मैं एक मकाला था पढ़े तो साई कादर बख्श रहमतुल्लाह के बारे
0: जी। हाँ साई
1: मतलब जितना भी उनका मतलब जो लतीफ़ा था जमा करके रखता था
0: जी। हाँ वो भी था, तो ऐसा साईं कादर बख्श है के नाम में कुछ 6 महीना गुजारिया था तालिब इल्मी का ज़माना में
1: जी।
0: उस वक़्त तो मेरा आवाज़ चंगो था और मेरा तो वो शेर गुआए हुए था
1: जी।
0: तो इस तरह साईं कादर बख्श की मजलस लिए हुए मैंने आज भी याद है।
1: थारी अपनी किताब तुमने छपाई थी कुछ अर्सों पहला, तुख्तियाँ
0: जी। हाँ
1: उसके बारे थोड़ी जानकारी देता चले।
0: तुख्तियाँ उसके बीच दरअसल जी गज़लों को मजमू है, उसके बीच गीत भी नहीं आ सकया और चीज़ नहीं आ सकी, क्योंकि नसीम साहब ने मैंने क्योंकि मजमू जो इलादा ही छापना चाहिए, और वह मैं उसी तरीका ना छापी थी, और बाद में कल्चर अकेडमी ने मैंने उसको अवार्ड भी दिखा था, उसको शुक्रगुजार हूँ।
1: जरा ये गोजरी शायर मौजूदा दौर की जी नवी पौध है, इन्होंने कोई हिदायत
0: जड़ा नवा नौजवान गोजरी अदब के बीच दाखिल हो रहे हैं, एक से भी जो कुछ बिके हुए अपनों के हैं, किसे किया का शेरों की कटपाट जड़ी चोरी जड़ी है वह करनी जड़ी उसके भी जादू के बच्चे समझू के जायज नहीं, एक वह नहीं होनी चाहिए। तो دوجے اگر اخلاص ہوئے

0: या कि जमीन जरखेज है तो इसके बिच काश्त की जरूरत है और गोदरी जड़ी है बड़ी जरखेज मैदान है इसको इसके बिच बड़ा कुछ हो सके। अगर नौजवान जड़ा है उन्होंने इखलास के नाल काम करना शुरू किया तो हम समझेंगे कि इसको अंजाम जड़ा वो ताबनाक है।
1: जनाब एसआई लखर साहब, हम इंतहाई मशकूर हैं कि तुमने हमारी दावत कबूल की, ना सिर्फ हमारी मजलिस की रौनक बढ़ाई बल्कि नहायत कीमती मालूमात भी मुहैया की। यकीनन हमारा सामईन और ख़ासकर हम थारा बेहद मशकूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामिन मोहतरम, तुमने इंटरव्यू सुनो इसराइल सरोरों को।

0: शजरकारी बारे मारे को एक गल बात है और सुन ले।
1: एफॉरेस्ट्रेशन यानी शजरकारी इस अमल ना किए हो जाए जिसमें ऐसी ज़मीन पर बूटा लावें जित जंगलात नहीं होता या बहुत कट हुए हैं। इसको मकसद माहौलियाती खराबी ना कट करनो और माहौल ना बेहतर बनाना है। शजरकारी मौसमियाती तब्दीली ना काट करन को एक अहम जरियो है क्योंकि बूटा कार्बन डाइऑक्साइड ना जज़ब करे, मिट्टी का कटाव ना रोकें और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ना बेहतर बढ़ाएं। बूटा की तादाद बढ़ाकर हम एक सरसब्ज और पायदार मुस्तकबिल बना सकें। सनाती तरक्की और शहरी आबादी में इजाफा की वजह से जंगलात तेज़ी ना ख़त्म हो रहे हैं। इसी वास्ते माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने वास्ते शजरकारी बहुत ज़रूरी है या कई माहौलियाती मसाइल ना हल करने में मदद दे है। बूटा कार्बन डाइऑक्साइड ना जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करें जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कट होएं और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आवे। बूटा की जड़ मिट्टी ने मजबूती ते बद कर रखे जिससे मिट्टी को कटाव कट होए और ज़मीन की जरखेसी बरकरार रहे। जंगलात पानी की कुदरती निज़ाम ना बरकरार रखे और अचानक आने वाला सैलाब ना कमी करण में मदद दे है। जंगलात ते लकड़ी फल जड़ी बूटी और दीगर वसाइल हासिल होएं। इसके अलावा सयाहत ना फरोग मिले और लोगों वास्ते रोज़गार का मौका पैदा होएं। शजरकारी वास्ते बीज बराह रास्त ज़मीन में रह सकें या निका बूटा लाकर जंगल तैयार किए जा सके। शजरकारी माहौलियाती मसाइल वास्ते एक मयसर तरीको है कि जेड़ो बंजर ज़मीन ना सरसब्ज और मुफीद माहौलियाती निज़ाम में तब्दील करें। यो एक पायदार अमल है जेड़ो ना सिर्फ माहौल ना महफूज रखे बल्कि इंसाना ना साफ हवा जरखेसी ज़मीन और कुदरती वसाइल भी फरहम करे। इस वास्ते अफराद और हुकूमता ना चाहिए कि वे ज़मीन ना दोबारा सरसब्ज बढ़ाने वास्ते शजरकारी ना फरोग दें।
2: हम तो हमारा को लग गया।

0: आप आज का गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। हमारे अगले ऐलान के इंतजार फरमाइए।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद

0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। इसे आकाशवाणी श्रीनगर शब्द 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बाय खतरा।

Boşan tayranma zor mu? Çuyp bak zaten gormut.

0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करा।
1: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनक्कद किया जाता है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st मई को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। सो वील हैव मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशन एंड वील हैव परफॉर्मेंसेज एक्सेट्रा। वील ऑल्सो हैव अ सेकेंड स्टेज विच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन। हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशन मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशन्स, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
0: तो वन आखरस पे ये खुश करवन तो हौसला दिन वाजन खबर जे जम्मू कश्मीर के कठवा जिल च सुनखाल गांव च अंजलि देवी छु थजर हिसाब दुनियाक सारवी खत थोद पहाड़ माउंट एवरेस्ट सर कोरमुत। अंजलि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स सत वस्त जनान पे मबनी अकिस मुहिम जू छक हिस्से ये पहाड़ सर कर लहरो तमो तत भारत कौमी परचम। खबरन हुंद ये खबरनामा अंद वातनान ब्रो त्रावो खास खास खबरन पे बी अख नजर। नवी दिल्ली मज क्वाड मुल्कन हिंद खारज वजीर हज मीटिंग अंद मुल्को दर्रो दहशतगर्दी मुकाबला कर जम्मू कश्मीर किस वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन वन मौजूद सरकार जम्मू कश्मीर किस रंगा बरंग सकाफती वर्स रश कर वाद बंद। सऊदी अरबस मज मनासिक हज सिलसिल जारी अजम मैदान अरफात मज वकूफ अरफात मज महव तो बज ईज हिंद हवाल वादी कशीर हिंदन बाजरन मज सख वसुदरस। अमे ब्रोह जातन खबरन हिंद बुलेटिन अंत थो पन्न बोजन वाले वन आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद कशन खबर बुलेटिन ठीक शाम के 7:30 नशर ऐसे इजाजत खुदा हाफिज।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अदिके बिलार साहब तो आज से थवान ब्याह बजे जारी आज संगीता जी पाठ बेसान लीला
7: तहन आ सोज महफिल
6: अहन

समीन, रात 9:30 पर शोरा की महफिल सजेगी बज़्म सुखन। जो शोरा इकराम इसमें शिरकत कर रहे हैं उनकी असमाई ग्रामी यूं हैं: रोशन आरा, डॉक्टर नज़ीर आज़ाद, डॉक्टर सैयद निघत, सागर सरफराज और मसरूफ़ा कादिर।

0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, ईद उल अजहा के मौके पर ताजरों और दुकानदारों ने आजमाए वही पुराने हथकंडे। ईद उल अजहा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तैयारियां। बिजली की आंख मिचौली से शहर श्रीनगर और कस्बजात के सार्फीन परेशान। और कठुआ जिले के बिजली सार्फीन महकमे बिजली से सख्त नाला। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है

0: नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 9018074333।
3: 9018074333।
4: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
5: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी,
7: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच लें कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
11: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
10: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
11: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
10: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
11: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
10: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
11: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
10: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
11: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
10: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
9: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
12: शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। सबीन ईद उल अजहा की तकरीब सईद कल पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है। पिछले चंद रोज से वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के बाजारों में लोग ईद की खरीदारी में खासे मसरूफ रहे, अगरचे इत्तिलात के मुताबिक बाजारों में अब की बार कोई ज्यादा गहमा गहमी नहीं पाई गई। ताहम ताजरों और दुकानदारों के बारे में इत्तिलात हैं कि वो इस बार भी गिरा फरोशी से बाज न आए। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
13: ईद उल अजहा के पेश नजर गांधरबल जिले के बेशतर बाजारों में आज अरफा के रोज इस तरह की भीड़ भाड़ और रश देखने को नहीं मिले और न ही लोग खरीद फरोख्त में मशगूल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक तो जमीनी सतह पर लोग जबरदस्त माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और दूसरा गिरा फरोशी अरूज पर है, जिसके बाईस सार्फिन इस महंगाई के दौर में खाने पीने की चीजें, मलबूसात, बच्चों के लिए खिलौने और दीगर अखराजात खरीदने से कासिर रहे। अगर आज जिले के मुख्तलिफ बाजारों जिला इंतजामिया के चेकिंग स्क्वाड नमूदार हुए और उन्होंने बिहामा, ददरहामा और कमरिया चौक के बाजारों में जाकर चंद एक दुकानदारों की चेकिंग की, ताहम गिरा फरोशी पर कदगन लगाने और कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए इंतजामिया ने बेबसी का मुजाहरा किया। इस दौरान कसाबों, बेकरी वाले, दुकानदारों, सब्जी और मेवा फरोशों के साथ साथ रेड़ी वालों ने भी सार्फिन को दो दो हाथों से लूटने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। जिले के मुख्तलिफ बाजारों में सार्फिन ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए शहरबीन को बताया कि कसाबों ने मनमानी करके गोल किया, जबकि मुर्ग 150 से 160 रुपए, पनीर 300-350 रुपए फी किलो फरोख्त किए गए, जबकि दूध, दही, बेकरी, मिठाई, सब्जी, मेवाजात और दीगर गजाई अजना की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसे आम सार्फिन की कोई खरीद न रही। सार्फिन का इल्जाम है कि सरकार की जानिब से मुकर्रर शुदा नरख नामों पर अमल पैरा होना तो दूर की बात है, जबकि यहाँ दुकानदारों के पास सरकारी नरख नामा कहीं भी आवेदन देखने को नहीं मिल रहा है। हद तो ये है कि पटरी वालों ने मनमानी करके सार्फिन से मुंह मांगी रुकूमात बिना झिझक वसूल किए हैं। इसी तरह कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए जगह जगह मंडियां कायम की गई थी, जहां सार्फिन को दो दो हाथों से लूटा गया। बताया जाता है कि इन लोगों ने सरकारी नरकनामा बाला ताक रखा और लोगों से कुर्बानी के जानवरों के इवज मुंह मांगी रुकूमात वसूल किए।

0: लोगों का मानना है कि अगर मुल्क के दीगर मकामात पर त्योहारों और बड़े दिनों के मौके पर खास छूट दी जाती है तो यहाँ इन मुकद्दस दिनों पर लोगों को क्यों लूटा जा रहा है, जिस पर कदम लगाने के लिए मुख्तलिफ महकमे और इंतजामिया हमेशा बेबसी का मुजाहरा करते आए।
1: ईद अज़हा के मौके पर गिरां फरोशी उरूज पर रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। समर वादी के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल शहर श्रीनगर के कई एक इलाका जात से शहरबीन को शिकायत मौसूल हो रही है कि बिजली महकमे ने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से गैर ऐलानिया कटौती का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके नतीजे में सार्फीन को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि शहर श्रीनगर के खयाम चौक, नौपुरा, डलगेट, छानपुरा, नौगाम, बाग महताब और कदीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फीन गैर ऐलानिया कटौती के नतीजे में आजीज आ चुके हैं और पूछते हैं कि इस मौसम में बिजली कटौती के क्या महरिकात हो सकते हैं। सार्फिन का कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक कई बार बिजली बिना किसी ऐलान के अचानक मुनकत की जाती है, जिससे उनके मामूलात शिद्दत से मुतासिर हो रहे हैं। उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। बिलखसूस अनंतनाग कस्बे के मुतअद्दिद इलाकों से शिकायत आ रही है कि बिजली महकमे ने पिछले 2 हफ्तों से गैर ऐलानिया कटौती का अजब सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके बायस न सिर्फ घरेलू मामूलात बल्कि कारोबारी मामले भी मुतासिर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक।
2: कस्बा अनंतनाग में मोहकमा बिजली की जानिब से जारी मुसलसल आंख मचोली और गैर ऐलानिया तवील बिजली कटौतियों ने आवाम में शदीद तशवीश और गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है। जिला भर में मेटर और नॉन मेटर दोनों इलाकों में यकसा तौर पर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों से कस्बा के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें लाल चौक, मटनगढ़ा, डांगरपुर, चेली चौक, ऋषि बाजार, पुशुमाला, काजी माला, अच्छा बनाडा, नाजुक माला, मौला बापंदान, गांधीवाड़ा, जंगलात मंडी, आबाजार, ख्वाजा मीर अली, मलकलाग, शिरपोरा, धोनी पावा, अशंजीपोरा, मोमिनाबाद, देवा कॉलोनी, फैसलाबाद, डीसी कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी और हैदर कॉलोनी शामिल है में शदीद गैर ऐलानिया बिजली कटौतियों का सिलसिला जारी है। अवामी हल्कों का कहना है कि इन इलाकों में दिन भर बमुश्किल 11 घंटे ही गैर मुनज़्ज़म और बेतरतीब बिजली फराहम की जा रही है। शहरियों ने मोहकमा बिजली पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मोहकमा सार्फीन से बिजली बिलों के बरवक्त वसूली में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतता, तहम बिजली की फराहमी से मुतलिक अपने ऐलानात और वादों पर कायम रहने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि अवामी शिकायत के अदाने के लिए कोई मौसर जवाबदेही का इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसके बाद सार्फीन सख्त जहनी अजियत का शिकार है। अवामी हल्कों ने मजीद इल्जाम आयद किया है कि हफ्ते में कई बार शटडाउन के नाम पर बिजली बंद रखी जाती है, जबकि जराए के मुताबिक महकमा के एरा अफिसरा की जानिब से जिला के पावर ग्रिड को दी गए कटौती शेड्यूल के अलावा मुकामी सतह पर भी बार बार गैर ऐलानिया तौर पर बिजली मुअत्तल करने की गैर रस्मी आजादी दी गई है, जिसे लोगों ने इंतजामी तानाशाही करार दिया है। लोगों का कहना है कि मुतालिका एजेंसियां अपने मुकर्रर अहदाफ के मुकाबले में इंतहाई सुस्त रफ्तारी से काम अंजाम दे रही है, जबकि मैट्रिक और कैबलिक के नाम पर दिन भर बिजली बंद रखी जाती है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां, तैलीमी निजाम और घरेलू जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। इधर आवाम में बढ़ती नाराजगी के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने महकमा बिजली को मुतब करते हुए कहा है कि अगर गैर ऐलानिया कटौतियों का ये सिलसिला जारी रहा तो लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने पे मजबूर होंगे।
1: इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस मामले के तनाजुर में केपीडीसीएल यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह से बात करके उनका रद्द अमल जानने की कोशिश की। अलबत्ता उन्होंने हमारा सवाल सुनने के साथ ही फोन काट दिया और फिर दोबारा कॉल न लिया। समय ईद अज़हा के सिलसिले में हर साल ईदगाह श्रीनगर में कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगाई जाती है। इन साल भी ईदगाह में मंडी लगी हुई है। तमाम कुर्बानी के जानवर बेचने वाले अफराद का कहना है कि इस मंडी में न सिर्फ सफाई और मजमू रख रखाव का फुकदान है बल्कि उन्हें पीने का पानी भी दस्तियाब नहीं है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
3: ईद उल अज़हा के पेश नजर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में कायम रिवायती मवेशी मंडी में जहाँ खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी है, वहीं मवेशी ताजरों ने मंडी में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर शदीद नाराजगी और तशवीश का

0: इजहार किया है। ताजरों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 40 से 50 बरसों से इस कारोबार से वाबस्ता हैं और हर साल ईद उल अजहा से कबल अपने मवेशी फरफुत के लिए ईदगाह मंडी लाते हैं, लेकिन आज तक यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी। ताजरों के मुताबिक मंडी में ना पीने के साफ पानी का मुनासिब इंतजाम मौजूद है, ना आरजी टेंट्स लगाए गए हैं और ना ही वॉशरूम या सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की गई है। इनका कहना है कि हालिया बारिश के बाद ईदगाह का बड़ा हिस्सा कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ ताजरों बल्कि खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी ताजरों ने कहा कि वो दिन रात मंडी में रहकर जानवरों की देखभाल करते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से इन्हें सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई ताजरों ने शिकायत की कि जानवरों के लिए पानी और मुनासिब जगह न होने से इन्हें इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। एक ताजर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा, हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ आ रहे हैं मगर अफसोस आज तक हुकूमत या इंतजामिया ने हमारी मुश्किलात को संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ न पानी है, न वॉशरूम और न ही बारिश से बचने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम। कीचड़ की वजह से जानवरों और लोगों दोनों को दुश्वारी हो रही है। एक और ताजर ने कहा कि हर साल हम इंतजामिया को इन मसाइल से आगाह करते हैं लेकिन सिर्फ वादे किए जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि ईद जैसे बड़े मजहबी मौके पर इतनी बड़ी मंडी में बुनियादी सहूलियात का न होना अफसोसनाक है। ताजू ने मजीद कहा कि ईदगाह मवेशी मंडी कश्मीर की सबसे बड़ी और कदीमी मंडियों में शुमार होती है, जहां वादी के मुख्तलिफ अजला के अलावा जम्मू और दीगर इलाकों से भी ताजर अपने जानवर लाते हैं। इसके बावजूद इंतजाम इंतहाई नाकिस हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि आइंदा बरसों में मंडी के लिए बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए, जिसमें साफ पानी, आरजी शेल्टर, वॉशरूम, सफाई सुथराई, नकासी आब और कीचड़ से नजात के लिए मुनासिब इकदाम शामिल हों, ताकि ताजरों और आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
1: ईदगाह की एनिमल मार्केट में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। समय ईद उल अजहा के सिलसिले में कल पूरे जम्मू कश्मीर की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद होने की तवक्कु है। हमने अभी कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंदराबी से बात की और साथ ही ईदगाह में लगे जानवरों के मार्केट की नस्बत से भी अभी नश्र की गई रिपोर्ट के तनाजुर में उनसे सवाल किया। मौसूफा ने सबसे पहले ईद की तैयारियों के ताल्लुक से अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया।
2: के जरिए से मैं तमाम सुनने वालों को भी, हमारे लोग हैं उनको ईद मुबारक पेश करना चाहूंगी और आपको भी। रही बात की जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने जो इंतजाम किए हैं, आप जानते हैं कि हमारी जो ज़ेर एहतमाम हमारे खानकाहें, दरगाहें, ज़ियारतगाहें, मसाजिद, उनमें टाइमिंग भी और जो वहाँ पे फैसिलिटीज नमाजियों के लिए फराहम करनी है, वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इनको बेहतर से बेहतर मिले, बेस्ट से बेस्ट मिले। और हमारी कोशिश इस बार भी रहेगी कि जो सबसे बड़ा इज्तिमा होगा वो आसार शरीफ हजरत बल दरगाह में होगी। वहाँ ईद की नमाज 10 बजे शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। और फिर बाकी ज़ियारतों पे जो कश्मीर श्रीनगर में आती हैं, फिर नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर की बाकी जो दरगाहें हैं उन पे भी वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। रही बात की जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कल हमारी मीटिंग फुल प्रूफ मीटिंग हुई, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे सिक्योरिटी, पीडीडी, जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे जो काम रहते हैं उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि ये काम फिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क बोर्ड इकट्ठे मिलकर ये सारे काम अंजाम देते हैं। लोगों को एक ऐसा माहौल मिलता है जो वाकई ईद में ईद की खुशी लोगों को दे देता है। ये हमारी कोशिश है वर्क बोर्ड की और हमारी जिम्मेदारी है। 99% हमारा काम रहता है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ईद भी खुशियां लेकर आए।
1: ईदगाह में जो एनिमल मार्केट लगता है हर ईद

0: अज़हा के मौके पे।
1: हाँ
0: तो अब की
1: हाँ
0: बार हमारे पास जो इत्तिलात हैं, एक रिपोर्ट हमने बाज़ाब्ता रिकॉर्ड किया अभी कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ का फुकदान है, कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, जहाँ पर साफ सफाई की फैसिलिटी है, बारिश होती है तो फिर वहाँ
1: जी,
0: पानी जमा होता है,
1: अरे
0: तो
1: हमारे
0: इस बारे में क्या
1: हम
0: कहेंगे आप?
1: देखिए, हमारे जो जिम्मे हैं, हमें जगह फराहम करनी है मंडी के लिए, वो हमने की। और हमारे जिम्मे जो है कि पहले गेट्स खोलते नहीं थे, तो ऑन स्पॉट जब हम परसों गए तो हमने दोनों गेट, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम रहती थी, बड़ा ट्रैफिक जैम रहता था, वो हमारे जिम्मे आता है। बाकी क्योंकि वो जगह सपोर्ट के लिए है या ईदगाह है, तो उसमें बहुत सारी चीजों की जो जरूरत है, वो जो वहां पे मंडी लगाते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मे नहीं आता है।
0: यानी आप जगह प्रोवाइड करते हैं, बाकी उनका जिम्मा है कि
1: हाँ,
0: वो वहाँ
1: बाकी बाकी
0: मेंटेन
1: उनका
0: कर लें
1: जिम्मा
0: उसको।
1: है। हाँ, मेंटेन करना कैसे वो कर सकते हैं, हमारे जिम्मे होता है जगह फराहम करना, वो हमने कर दी और बहुत ही नॉमिनल रेट्स।
0: ये थे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी 5वीं किस्त सुनेंगे। समीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे।
4: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
0: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। सीनियर केएस ऑफिसर खालिद जहांगीर और मारूफ गुलकार राशिद जहांगीर की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। उनकी वफात पर कई समाजी और सकाफती अंजुमनों और शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जम्मू कश्मीर माजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल माजूर, दायरा अदब दलीना बारामुल्ला, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वागूरा, साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉ रफीक मसूदी, क्रूहन कल्चरल फोरम क्रीरी मुरादाबाद और दीगर कई अंजुमनों और शख्सियात ने राशिद जहांगीर और खालिद जहांगीर से दिली ताजियत का इजहार किया है। समन, कल ईद उल अजहा की तकरीब सईद मनाई जा रही है। इस सिलसिले में कल सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों, कस्बजात और गांव देहात में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं। नमाज ईद की अदायगी के ताल्लुक से जो तफासील शहरबीन को मौसूल हुई हैं वो कुछ यूं हैं। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल, ज़ियारत हजरत मखदूम साहब और ज़ियारत हजरत ख्वाजा नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसार शरीफ जनाब साहब सऊरा, ज़ियारत हजरत मिर्जा कामिल साहब हव्वल और मरकजी ईदगाह जंगलात मंडी अनंतनाग में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। ज़ियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब खानियार, ज़ियारत हजरत मीर सैयद याकूब साहब सोनावार, ज़ियारत हजरत अलमदार कश्मीर चरार शरीफ और आसार शरीफ काबा मर्ग अनंतनाग में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। खानकाह मौला श्रीनगर में

वजीर सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। ज़ियारत हज़रत मलिक साहब सऊड़ा खान का हिफाज़ पनाह अहतराल, ज़ियारत हज़रत शाह सादिक कलंदर लार गांदरबल, ज़ियारत हज़रत बाबा दरियाउद्दीन खलमुला अलस्टेंग अली मस्जिद ईदगाह और मस्जिद शरीफ मलिक आंगन फतेह कदल, जामा मस्जिद मिलता बागात कनीपुरा में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद बाबा हनीफुद्दीन ऋषि रटसुन बीरवा में नमाज ईद सुबह 9:45 बजे अदा की जाएगी। किश्तवाड़ की ईदगाह चौगाम और चनगाम किश्तवाड़ में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी, जबकि सरूड़ में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। मरकजी जामा मस्जिद अमरगढ़ सोपोर में नमाज ईद सुबह 6:30 बजे अदा की जाएगी। मरकजी ईदगाह पटन आसार शरीफ पेठमखामा बीरवा और जामा मस्जिद हनफिया दालवाश खाग में नमाज ईद सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। इधर जामा मस्जिद त्रापे खाग में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी, जबकि जामा मस्जिद टीआरसी श्रीनगर और

0: साढ़े छह बजे अदा की जाएगी। मरकजी ईदगाह पट्टन, आसार शरीफ पैठमा खामा बीरवा और जामा मस्जिद हनफिया दानवाश खाग में नमाज ईद सुबह साढ़े आठ बजे अदा की जाएगी। इधर जामा मस्जिद त्रापे खाग में नमाज ईद सुबह आठ बजे अदा की जाएगी, जबकि जामा मस्जिद टीआरसी श्रीनगर और जामा मस्जिद चकूड़ा पुलवामा में नमाज ईद सुबह सात बजे अदा की जाएगी। मरकजी जामा मस्जिद हिबडांगरपुरा रफियाबाद और मस्जिद बिलाल छानपुरा श्रीनगर में नमाज ईद सुबह साढ़े सात बजे अदा की जाएगी, जबकि ईदगाह ताल में नमाज ईद सुबह सवा आठ बजे अदा की जाएगी। इधर ईद उल अज़हा के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात की तरफ से हमें तहनियती पैगाम मौसूल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम की खातिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में दुआ की है कि ईद उल अज़हा जम्मू कश्मीर के लिए दायमी सलामती की नवीद साबित हो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अज़हा पर अपने पैगाम में लोगों को मुबारकबाद देते हुए दुआ की है कि यह ईद जम्मू कश्मीर के लिए बेइंतहा खुशहाली की बारात ले आए। इसी दौरान पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, पीडीपी के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन, साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद, पीडीपी के जिला कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक, गांधी किंग फाउंडेशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू, जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पुसवाल, जियारत रहीम सखी साहब ट्रस्ट त्रूसा मानसबल के इंतजामिया, कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर, समाजी कारकुन शेख कवामुद्दीन शिलवती, जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जी एम शाहीन, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रुकन डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम के सदर अनवर हुसैन वानी और तर्जुमान आला जी क्यू कामरान और दीगर कई शख्सियात और इदारों ने जम्मू कश्मीर के आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। और आपसे इजाजत लेने से पहले शहरबीन की पूरी टीम की तरफ से शहरबीन की निगरा समीना शाह, आपके मेजबान और प्रोग्राम के एडिटर अशफाक लोन, हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर और परमजीत सिंह की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ये ईद हम सब के लिए खुशियों की नवीद साबित हो, ये हमारी दुआ है। आपसे इजाजत लेते हैं, खुदा हाफिज।
1: पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान, रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
3: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
4: अरे ये सेवराम की दुकान बंद क्यों है?
5: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
6: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
10: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी 5वीं किस्त सुनेंगे। समीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर

0: लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक स्टेज अदाकार अशरफ फयाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशे करने वाला शख्स अकेला रह जाता है और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगती है। याद रखें, नशा किसी मसले का हल नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस दलदल में फंस चुका है तो मायूस न हो, बात करें अपने घर वालों या किसी मुखलिस दोस्त से, बात करें, मदद लें। डॉक्टर और माहिरीन इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इरादा करें, आपकी जिंदगी आपके नशे से ज्यादा कीमती है। आइए आज हम मिलकर अहद करें कि हम नशे को ना कहेंगे और एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
1: नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कार्रवाइयां जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने जिला में दर्ज एक केस के सिलसिले में बनपोरा बिजबिहाड़ा से ताल्लुक रखने वाले आमिर हसन मीर नामी मनुष्यात फरोश का बिजबिहाड़ा में तामीर करदा 1 करोड़ रुपए मालियत का रिहायशी मकान अटैच किया है। पुलिस ने शोपियां में महकमा माल के इश्तराक से गैर कानूनी तौर पर काश्त की जा रही खशखाश फसल को तबाह किया है। शोपियां में ही पुलिस ने 3 मनशियात फरोशों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। बारामूला में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर काश्त की जा रही खशखाश की फसल को तबाह किया। पुलिस ने सांबा में एक मनशियात फरोश के कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा बरामद करके उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने रियासी में 2 बदनामी जमाना मनशियात फरोशों के 45 लाख की मालियत के 2 रिहायशी मकान अटैच किए। रियासी में ही पुलिस ने नाकों के दौरान कई अशखास से नशीली अशिया बरामद करके उनके खिलाफ केस दर्ज किए। कठुआ पुलिस ने एक मनशियात फरोश के 1 करोड़ 25 लाख मालियत के दुकान अटैच किए। उधमपुर जिला में भी पुलिस ने 2 अफराद से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उनके खिलाफ केस दर्ज किए। डोडा पुलिस ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बल्ला बद्रवा और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीवन में मनशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के गुनागुन सकाफती और तामीरी वर्से को तहफ़ देने के साथ साथ लोगों के मसाइल को हल करने की वादाबंद है। वजीर आला ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में आज राबता दफ्तर पर कई वफूद और अहम शख्सियात के साथ मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात करने वालों में जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी, NCC के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वैट्स के अलावा एडिशनल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के कन्वीनियर और सरबरा सलीम बेग की सरबराही वाला एक वफ भी शामिल था। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और MD अर्जुन धवन ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके उनकी कंपनी की तरफ से जम्मू कश्मीर में तामीर किए जा रहे बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चटर्जी ने भी आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ ने भी आज वजीर आला के साथ मुलाकात की और उन्हें यूनिवर्सिटी में जारी तालीमी और तहकीकी शोबों में किए जा रहे इकदाम और मुस्तकबिल के मनसूबों के बारे में जानकारी दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज 53 उम्मीदवारों को SRO 43 और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत तकरूरी नामे तकसीम किए। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि तैनाती के बाद ये अपनी खिदमत तंदी और ईमानदारी से अंजाम देंगे। सऊदी अरब के शहर मक्का मौजमा में मनासिक हज का सिलसिला जारी है।

0: बेकरी मलबूसात और दीगर अशियाई जरूरिया की खरीदारी में महव रहे। ताहम शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर कस्बजात में कहीं कहीं पर ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर भी देखने को मिले। पूरे जम्मू कश्मीर में कल नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं। इंतजामिया ने इन इज्तिमात के अहसन इनकाद के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए हैं और जियारतगाहों और मसाजिद के इर्द गिर्द सफाई सुथराई और पानी व बिजली की बिलाखलल सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने वादी की कई मसाजिद खानकाहों और ज़ियारतगाहों पर नमाज ईद के अवकात मुश्तहर किए हैं। आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ जनाब साहब सोहरा और आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में नमाज ईद सुबह 9 बजे, ज़ियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब खानियार और ज़ियारत मीर सैद याकूब साहब सोनवार में सुबह 9:30 बजे, ज़ियारत हजरत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में सुबह 10 बजे, जबकि खानकाह मौला श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद बाबा हनीफुद्दीन ऋषि रटसुन बीरवा में ईद की नमाज सुबह 8:45 पर अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद टीआरसी श्रीनगर में ईद नमाज सुबह 7 बजे, जबकि नमाज ईद बटवारा श्रीनगर में सुबह 7:30 बजे, जामिया मस्जिद हनफिया नाजन बीरवा में नमाज ईद सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। जम्मू के मरकजी ईदगाह रेजिडेंसी रोड में नमाज ईद सुबह 7:30 बजे अदा की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने कहा कि इस तरह के त्यौहार हमारे लिए खुशहाली और तरक्की का पैगाम लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस ईद के मौके पर लोगों को गुरबा और मसाकीन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने दुआ की कि ईद हमारे लिए फलाह बहबूद और अमन अमान की नवीद लेकर आए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये दिन हमें दयानतदारी और सच्चाई इख्तियार करने की तरगीब देता है। मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद के रोज नादारों और समाज के मफलूकुल हाल लोगों की मदद करें। उन्होंने दुआ की कि ये त्यौहार हम सब के लिए तरक्की, खुशहाली और अमन अमान की नवीद लेकर आए। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने भी लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबिनी वुजरा सकीना इतू, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राणा और सतीश शर्मा ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे और रवादारी का आकाश है और हमें यह त्यौहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने भी लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के एक पैगाम में उन्होंने दुआ की कि यह त्यौहार जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों की नवीद लेकर आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं और गुरबा और मसाकीन को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वक्फ बोर्ड के एक मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान और सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज, बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान आला अल्ताफ ठाकुर, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिन, जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन, जमीयत हमदानिया जम्मू कश्मीर के सरबरा मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती अजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने लोगों को ईद उल अजहा के मौके पर मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: ईद उल अजहा के बाबरकत मौके पर मैं तमाम अफराद को मुबारकबाद ही पेश करता हूँ। ये ईद हमें तस्लीम और रजा का पैगाम देती है। वालिद और उसके फर्जंद ने इस अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जज्बे ईसार की ऐसी मिसाल पेश कर दी कि इंसानी अकल आज भी मुतहय्यिर है। ईद सादगी से मनाए, गुरबा मसाकिन और अपने रिश्तेदारों और कराबतदारों का खास ख्याल रखे, माहौलियात को न बिगाड़े। जानवरों को ज़बह करते वक़्त नदी नालों चश्मों में कुर्बानी के गैर मुस्तमल अज्जा फेंकने से इज्तनाब करें, क्योंकि उनसे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। प्लास्टिक की जगह मुतबादल चीजों का इस्तेमाल करें। खुदाई कुदूस से मुल्तमिस हूँ कि ईद हमारे लिए बाइस यमन बरकत साबित हो।
0: जिन दीगर शख्सियात ने लोगों को मुबारकबाद दी है उनमें इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर के बानी चेयरमैन एडवोकेट अब्दुलरशीद हांजूरा, एजैक के सदर फयाज अहमद शबनम, जे एंड के बिलाल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शौकत अहमद लोन, सागर कल्चरल फोरम चोकुर पटन के सरपरस्त सागर नजीर भी शामिल हैं। ईद उल अजहा के तनाजुर में बुजुर्गों को भी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: चूँकि गर्मियां हैं इस ईद पर बुजुर्ग लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। गोश्त खाएं लेकिन मॉडरेशन में, तेल वाली और हेवी मील्स खाने से परहेज करें, कलेजी गुर्दे और बेजा जैसे और

0: अगर मीट कम मकदार में खाएं, खासकर अगर गाउट, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी की बीमारी हो। पानी ज्यादा पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक जूस पीने से परहेज करें। खाने के बाद हल्का वॉक करें और अपनी दवा वक्त पर लें। गोश्त को अच्छी तरह रेफ्रिजरेट करें और ज्यादा देर तक गर्मी में बाहर ना रखें। घर के बुजुर्गों को चाहिए कि जानवर की खाल, अंतड़ियां और दूसरे वेस्ट को म्युनिसिपल गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक तरीके से डिस्पोज करना इंश्योर करें, ताकि कुत्ते, मक्खियां, बदबू और इन्फेक्शन से बचाव हो सके। सफाई भी सेहत के लिए जरूरी है। ईद मुबारक।
1: दरी असना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गलवानपुरा बड़गाम जाकर वहां हाल ही में एक मासूम बच्ची के साथ पेश आए वाके के सिलसिले में गमजदा अहलखाना से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वाके से पूरे समाज में एक दुख की लहर दौड़ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वाके में मुलवस मुजरिमों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम ने एक हुक्मनामे के जरिए से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आम लोगों को खबरदार किया है कि वो गलवानपुरा बड़गाम में हाल ही में कत्ल की गई मासूम बच्ची की तस्वीर और उसकी शनाख्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने से इज्तनाब करें। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज जम्मू कश्मीर ने मुख्तलिफ कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के सिलसिले में उबूरी कॉलेज अलॉटमेंट और कट ऑफ ट्रेंड्स एडमिशन पोर्टल पर रखी हैं। उम्मीदवार हतमी एलोकेशन से पहले अपनी तरजीहात को अपडेट कर सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को हमने आज से ही अवेलेबल कर दिया है। जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स अभी तक हैं, उनका एक प्रोविजनल लिस्ट पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया है, इंडिकेटिव सिलेक्शन लिस्ट, जिससे उनको आइडिया आएगा कि उनका सिलेक्शन इस प्रोग्राम में हो सकता है। और उन बच्चों को आइडिया आएगा कि जो इस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, उनको आइडिया आएगा कि हमारा एडमिशन यहां नहीं हो सकता है, तो अपनी चॉइसेस और बढ़ाएंगे, कॉलेजेस और बढ़ाएंगे, प्रोग्राम्स ऐड करेंगे। तो एम भी है, आज हमने लाइव कर दिया है पोर्टल पे। अगर वो विजिट करेंगे स्टूडेंट्स अभी पोर्टल पे, हमें 40,000 से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई है अभी तक। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये एक इंडिकेटिव सिलेक्शन लिस्ट है जो रिवाइज होगा एज पर द कंडीशनलिटीज, जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी या जो और एप्लीकेंट्स अभी आएंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारी फाइनल लिस्ट में आएंगी। jkadmissions.in है ये URL, तो हमें कल शाम तक 5 बजे तक खुली रहेगी लिंक। लेकिन इसमें ये चीज भी हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है इसको एक्सटेंड करने की, तो दैट इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन, उसका भी हम देख रहे हैं कि एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एक्सटेंशन होगा वो नोटिफाई हो जाएगा।
1: डायरेक्टर जनरल पुलिस नायलन प्रभात ने आज PCR श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद उल अजहा और आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जियारत गाहों और मसाजिद में होने वाले बड़े बड़े इज्तिमात में लोगों की निजामत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि ईद और यात्रा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जाएंगे। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर से खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:22 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:34 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं आबिदा अख्तर। आज मैदान अरफात में लाखों फर्जंदान तौहीद का इज्तिमा एक रूह परवर मंजर पेश कर रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ खुतों, जबानों, नस्लों और रंगों से ताल्लुक रखने वाले आजमीन हज सफेद अहरामों में मलबूस एक ही रब के हजूर सर बसजूद है। वो कूफे अरफात हज का सबसे अजीम रुकन है जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। यही वो मुकदस लम्हा है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हज अरफा करार दिया। आज का दिन बंदगी, आजिजी, दुआ, तौबा और मगफिरत का दिन है, जब लाखों लब एक साथ अल्लाह ताला की हमदो सना और इस्तिगफार में मशगूल हैं। अरफात की सरजमी पर जुहर और असर की नमाजें जमाबैन सलातीन अदा की जाती हैं, जो इस अजीम इबादत की रूहानी वहदत और नज्म जब्त की अलामत है। ये मंजर इंसान को कयामत के दिन की याद दिलाता है, जब तमाम इंसान एक मैदान में अपने रब के सामने हाजिर होंगे। आजमीन हज आज अपनी जिंदगी के गुनाहों से माफी मांगते, उम्मत मुस्लिमा के इतिहाद, अमन और खुशहाली की दुआएं करते दिखाई देते हैं। سورج غروب ہونے سے قبل قافلے عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ کی رات سادگی، صبر اور عبادت کی ایک منفرد مثال ہوتی ہے، جہاں عازمین کھلے آسمان تلے

0: क़याम करते हैं। यहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें भी जमा बैन सलातीन अदा की जाती हैं। इसी मकाम पर रमी जमरात के लिए कंकरियाँ जमा की जाती हैं, जो बातिल शैतान और नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत हैं। कल सुबह आजमीन दोबारा मिन्ना रवाना होंगे, जहाँ रमी कुर्बानी और दीगर मनासिक हज अदा किए जाएंगे। इन्हीं मुबारक मराहिल की तकमील के बाद ये खुश नसीब लोग हाजी कहलाने का एजाज हासिल करेंगे। हज दरअसल इंसान की रूहानी तत्हीर, कुर्बानी, मसावात और अल्लाह ताला से ताल्लुक की बंदगी को मजबूत करने का नाम है। आज अरफात से मुजदलफा तक का ये रूहानी सफर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इतिहाद, उखुवत और ईमान की एक अजीम याद दहानी है। तबसरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: मीटिंग 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
3: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए यह प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

वादी की आवाज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम सुनने वालों तक हमारा प्यार और खलूस भरा आदाब पहुँचे। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। आइए सामिन बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की। सामिन, ईद उल अजहा सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि कुर्बानी, ईसार, मसावात और इंसान दोस्ती का अजीम पैगाम भी है। इस त्यौहार पर मुसलमान अपने वसाइल के मुताबिक कुर्बानी करते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं और माशरे में खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब किसी मुल्क में माशी बहरान शदीद हो, महंगाई बेकाबू हो जाए, बेरोज़गारी बढ़ जाए और अवाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने से भी कासिर हो, तो त्यौहारों की रौनकें मानिंद पड़ जाती है। आज पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरतहाल दिखाई देती है। ईद उल अज़हा करीब आते ही जहां बाज़ारों में गहमा गहमी होनी चाहिए थी, वहां आवाम की बड़ी तादाद महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बेयकीनी के बाइस शदीद परेशानी का शिकार नज़र आती है। समय पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के संगीन माशी बहरानों में से एक बहरान से गुजर रहा है। आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल बनता जा रहा है। बाज़ारों में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आटा, चावल, दालें, चीनी, घी, दूध, सब्जियां और गोश्त, हर चीज़ आम शहरी की पहुंच से दूर होती जा रही है। माहरीन मईशत का कहना है कि पाकिस्तानी रुपया मुसलसल कमज़ोर होने, दरामदात पर इन्हिसार बढ़ने और माशी बद इंतज़ामी की वजह से महंगाई ने ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। ईद उल अज़हा के मौके पर सूरतहाल मजीद संगीन दिखाई देती है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं। कई खानदान जो हर साल कुर्बानी करते थे, अब सिर्फ जानवरों की कीमतें सुनकर ही मायूस लौट जाते हैं। बाजारों में व्यापारी खरीदारों की कमी की शिकायत करते नजर आते हैं, जबकि खरीदार महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। मुतवस्ता तबका, जो किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, सबसे ज्यादा दबाव का शिकार है। सामिन, पाकिस्तान के माशी माहरीन बार बार इस बात की निशानदेही करते रहे हैं कि मुल्क को दरपेश माशी बहरान की एक बड़ी वजह नाकस हुकूमती मनसूबा बंदी और

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामीन, बात हो रही है पाकिस्तान की। माहरीन का मानना है कि हकीकी तरक्की उस वक्त मुमकिन होती है जब एहतसाब सबके लिए यकसां हो और इदारे सियासी दबाव से आज़ाद हो। सामीन, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन यही नौजवान आज बेरोजगारी, महंगाई और गैर यकीनी मुस्तकबिल के बाइस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। आला तालीम हासिल करने वाले हज़ारों नौजवान मुनासिब रोज़गार के मुंतज़िर है। बहुत से नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाने को तरजीह दे रहे हैं। तालीम याफ्ता तबके में मायूसी बढ़ रही है क्योंकि उन्हें अपनी सलाहियतों के मुताबिक मौके कम दिखाई देते हैं। समाजी माहरीन खबरदार करते हैं कि अगर नौजवानों को मस्बत मौके फराहम न किए जाएँ तो माशरती मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। सामईन किराम, ईद उल अज़हा खुशी, इज्तिमाईत और कुर्बानी का त्यौहार है, लेकिन पाकिस्तान में इस साल कई खानदान शदीद माशी मुश्किलात के बाइस परेशान दिखाई देते हैं। एक मजदूर जो पूरा साल अपने बच्चों की खुशियों के लिए मेहनत करता है, आज ईद के अखराजात पूरे करने में खुद को बेबस महसूस करता है। बाजारों में खरीदारों की तादाद कम दिखाई देती है, जबकि दुकानदार कारोबार में कमी की शिकायत करते हैं। कई खानदानों के लिए ईद अब खुशी के बजाय माशी दबाव की अलामत बनती जा रही है। सामिन, पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहां हैं। लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो, रोज़गार बढ़े, इंसाफ मजबूत हो और इदारे शफाफ अंदाज में काम करें। माहरीन का कहना है कि माशी इस्लाहात, सियासी इस्तेखाम, मजबूत एहतसाबी निज़ाम और बेहतर हुकुमरानी के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। अवाम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिनसे आम आदमी की मुश्किलात कम होंगी। सामिन, ये एक वाजिया हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत तो हमेशा से ही नशीबो फराज का शिकार रही है। इसके साथ साथ एक गद्दारी और हुबुल वतनी की सर्टिफिकेट जारी करने वाली एक फैक्ट्री भी हर दौर में फाल रही। इस फैक्ट्री ने किसी को खुश करने के लिए किसी को गद्दार ठहराया तो किसी को सिक्योरिटी रिस्क। चंद जूते पॉलिश करने वाले सियासतदानों ने जिन्हें गद्दार के अलकाब दिए, बाद में फिर उन्हीं को पारसा भी कहा। वो तो अपने मफाद के लिए किसी को गद्दार ठहराने में एक मिनट नहीं लगाते। इस मुल्क में गद्दार का दब्बा लगाना नहायत आसान है। न किसी को गद्दार की माने मफहूम का इल्म है और न कानूनी पेचीदगियाँ। बस जो घर से रूठा उसने दूसरे के दर पर गद्दार का पोस्टर चस्पा कर दिया। इस बात का तो आजकल पाकिस्तान में एक जदीद इस्तिलाह का भी चलन है, सिक्योरिटी रिस्क। सो अब जिसका दिल चाहता है दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कह देता है। खान साहब और पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। कितना आसान है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क कहना। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब तो होता है कि जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो। क्या नवाज शरीफ मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है? अगर एक ऐसा शख्स जो सिक्योरिटी ख़तरा है फिर वजारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान हुआ, वो एक बार नहीं बल्कि अब तक तीसरी बार, तो फिर सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सियासतदान है जो वाकई इख्तदार के तख्त पर बराजमान हो सकता है। सामीन, पाकिस्तान के हवाले से और भी बात करेंगे, पहले आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामीन, बात हो रही है पाकिस्तान की। शायद ये एक मम्मा ही रहेगा। सामीन, चलिए अब गद्दार गद्दार खेल का माजी करीब की एक मिसाल उठाते हैं। दानियाल अजीज और चंद दूसरे अहबाब जो मुशर्रफ के जूते की चमक में मशहूर थे, उस वक्त नवाज शरीफ को गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। अब अपने मुफाद में यू टर्न लेते हैं कि मियाँ साहब से ज्यादा मुहिब वतन तो इस अर्ज वतन पर है ही नहीं। मौसूफ आजकल एक ही राग आलाप रहे हैं कि खान साहब मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। वहाँ वजीर आजम की जमात भी कहाँ इस खेल से परे है। धरनों के मौसम में उनकी जानिब से मौकिफ आया कि खान साहब ने धरने देकर सीपैक के खिलाफ साजिश की है। खान साहब अगर सिक्योरिटी रिस्क हैं तो वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों खान साहब के घर बनीगाला जाते हैं? अगर खान साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं तो क्यों दानियाल अजीज के सियासी आका यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को APC में बुलवाते हैं, वो APC जिसमें नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। बाहोश अवाम इस सोच में डूबी है कि सलामती के इस खसूसी इजलास में कोई खतरे को किस तरह दावत देगा। फिर इसी इजलास में कप्तान और पीपल्स पार्टी ने क्यों नवाज शरीफ की सदारत को कबूल किया? तो क्या सारे सिक्योरिटी खतरात सलामती पर गौर फिक्र कर रहे थे? सियासत में बयानबाजी अच्छी बात है, मगर इस तरह के फतवे लगाना कहाँ की अकलमंदी है। तहम ये सिलसिला कोई नई बात नहीं, जरा इसका तारीखी पस मंजर भी मुलाहिजा हो। खुदाई खिदमतगार कहलवाने वाले खान अब्दुल गफार बाचा खान को गद्दार कहा गया। इस बाचा खान को अपना कायद तस्लीम करने वाली ANP मुल्की धारे में सियासी सरगर्मियां कर रही है। इसी तरह हुसैन शहीद सोहरवर्दी को भी गद्दार कहा गया था। अब्दुल समद खान अचगजई, फैज अहमद फैज जैसे लोगों पर भी गद्दार का ठप्पा लगा दिया। इसी फैज की आज पूरा पाकिस्तान माला जपता है। अताउल्ला खान मेंगल, गौस बख्श बजंजू, खैर बख्श मरी भी गद्दार कहलवाए। ये सिलसिला यहाँ तक ही न रुका, बल्कि जिया के दौर में गुलाम मुस्तफा खर और जाम सादिक अली को मुल्क दुश्मन साजिशी एजेंट बताया गया। फिर

वो मुस्तफ़ा खार और जाम सादिक हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट लेकर वजारत आला के मनसब पर फाइज हुए। बटू ने नैप नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई, इसके रहनुमाओं पर साजिश का इल्ज़ाम लगा, वो गद्दार करार पाए। जिया दौर में MRD के कई रहनुमाओं पर संगीन मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगते रहे। बटू दौर में पीपल्स पार्टी पर मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस दौर में गुलाम इसहाक खान सदर थे। इस दौर में बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा। बेनज़ीर भुट्टो के सबसे बड़े मुखालिफ और आज के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे। आज खुद मियां साहब पर सिक्योरिटी रिस्क लगा दिया गया। ये एक सियासी खेल है जो बारी बारी खेला जाता है। अवामी मकबूलियत का स्कोर बढ़ाने के लिए ये खेल खासा मकबूल रहा है। अवाम में सस्ती मुखालफत कैश करने के लिए ये फतवागरी बड़ी कारगर है। खुदा के लिए सियासत ज़रूर करें, मगर ऐसे खेल को इसका हिस्सा न बनाएं। सियासत के भी कुछ असूल होते हैं, इसलिए अपने खुद साख्ता बेबुनियाद फतवे देने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए, वरना सियासी इस्तेकाम कभी पैदा नहीं होगी। और शायद सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस सियासी खेल ने कौम के असल मसाइल को हमेशा पसे पुश्त डाल दिया। हर दौर में असल बहस यही रही कि कौन मुहिब वतन है और कौन गद्दार। यूं अवाम को जज्बाती नारों में उलझाकर असल सवाला से दूर रखा गया। सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि जिन लोगों को कल गद्दार कहा जाता है, वक्त गुजरने के साथ वही कौमी हीरो बना दिए जाते हैं। जिन्हें कभी मुल्क दुश्मन करार देकर जेलों में डाला गया, बाद में उन्हीं के नाम पर सड़कें, एयरपोर्ट्स और तकरीबात सजाई गई। गोया पाकिस्तान में असूल नहीं, सिर्फ मुफादात मुस्तकिल होते हैं। सियासी जमातें इक्तदार में हो तो रियासती इदारों के फैसले दुरुस्त लगते हैं, मगर अपोजिशन में आते ही वही फैसले इंतकाम कहलाते हैं। यही दोगलापन पाकिस्तान के सियासी कल्चर की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसने इख्तलाफ राय को दुश्मनी बना दिया है और तनकीद को बगावत समझ लिया है। हालांकि जमहूरियत की खूबसूरती ही इस बात में है कि मुख्तलिफ आवाज़ें सुनी जाएँ, बर्दाश्त की जाएँ और दलील से जवाब दिया जाए। दुनिया की महजब कौमें अपने मुखालफीन को गद्दार करार देकर खामोश नहीं करती, बल्कि मुकालमा करती हैं। वहाँ सियासत नज़रियात का मुकाबला होता है, किरदार कशी का नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सियासत का मयार इस हद तक गिर चुका है कि मुखालिफ के मौकिफ का जवाब दलील से नहीं, बल्कि इसकी हुबुल वतनी पर सवाल उठाकर दिया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान बतौर कौम ये तय करे कि गद्दारी और सिक्योरिटी रिस्क जैसे संगीन अल्फाज का इस्तेमाल महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होना चाहिए। यह अलकाबात अदालतें और आईन तय कर सकते हैं। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न ज़रूर है, मगर इल्ज़ाम तराशी, नफरत और फतवों की सियासत जमहूरियत की रूह को ज़ख्मी करता है। उन्हें यह समझना होगा कि इक्तदार आनी जानी चीज़ है, मगर अल्फाज के ज़ख्म नस्लों तक बाकी रहते हैं। जब सियासतदान अपनी नाकामियों का बोझ मुखालफीन की हुबुल वतनी पर डालने लगे तो अवाम के जहनों में भी शकूक व शुभात जन्म लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कौम तकसीम दर तकसीम का शिकार हो जाती है। लोग नज़रियात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नफरत की बुनियाद पर एक दूसरे के मुखालिफ बन जाते हैं। पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को ये समझना होगा कि वक्ती फ़ायदे के लिए बोया गया नफरत का बीज मुस्तकबिल में पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। आज जो ज़ुबान एक मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है, कल वही ज़बान खुद उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई बड़ा सियासतदान हो जिस पर कभी गद्दारी, मुल्क दुश्मनी या सिक्योरिटी रिस्क का इल्ज़ाम न लगा हो। उन्हें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि सियासत दुश्मनी नहीं, खिदमत का नाम है। इख्तलाफ करना सीखना होगा, बर्दाश्त पैदा करना होगी और दलील को गाली पर तरजीह देना होगी। क्योंकि कौमें सिर्फ सड़कों, इमारतों और मंसूबों से नहीं बनती, कौमें अपने रवैयों, अपने इंसाफ और अपने सियासी शऊर से बनती है। और जब तक वो गद्दारी के फतवों और हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट्स की सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक न जमहूरियत मजबूत होगी, न ही सियासी इस्तेकाम एक हकीकत बन सकेगा। सामिन, ये तो थी बात पाकिस्तान के हवाले से। और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज, यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम में 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए।

0: थे, वो सब बारी बारी चीजें ले लेकर आते रहे, जितनी भी डिशेज उनके पास थी, और हर एक को पूछ पूछ के उन्होंने सर्व किया।
1: पापड़ चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए,
0: चाहिए, चपाती चाहिए,
1: जिसका जो मिजाज था उसने अपने हिसाब से लिया
0: और अपनी मकदार के हिसाब से लिया।
1: बिल्कुल।
0: और ये मैंने महसूस किया कि वहाँ पे वेस्टेज जो है वो बिल्कुल निग्लिजिबल कह सकते हैं कि इतनी थी। क्या इस तरीके को हम बढ़ावा दे सकते हैं? पहले तो हमारे यहाँ ऐसा ही तरीका था, आपको याद है ना, पहले हम लोग नीचे फर्श पे बैठते थे।
1: अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें भी वेस्टेज काफी होता है। जैसे वाजवान हमारा यहाँ कल्चर है, कश्मीर का कल्चर जो है, वाजवान हम सर्व करते हैं शादियों पे या किसी और जगह भी, ऐसे भी कोई फंक्शन होगा घरों में तो वहाँ होता है, लेकिन वेस्टेज भी होता है। दिस इज यू नो एक्नोलेज्ड फैक्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोग हैं वो बिल्कुल कम मिकदार में वो रखते हैं जो एक इंसान खा सकता है एक टाइम। तो लेकिन हम भी वेस्टेज बहुत करते हैं, दैट इज ट्रू।
0: अब अगर हम बात करें जैसे कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, तो अभी जो दूसरे कंट्रीज में इसका पूरा पूरा रिवाज हो चुका है कि सस्टेनेबल गिफ्टिंग करेंगे, ताकि इस तरह से जो लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें कि वो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। तो इसका
1: लाइक क्या क्या हो सकता है उसमें?
0: जैसे कि वुड के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बैम्बो के प्रोडक्ट्स हैं, या इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जूट के बैग,
1: कागज भी इसमें आता है।
0: जी जी, तो रिसाइकल पेपर इसमें आता है
1: जी।
0: तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड ले लें, तो वहां पे ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स के कुछ नॉर्म्स हैं कि वो ये चीजें हैं जिनको फॉलो करते हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, और अगर वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो फिर उनको ग्रीन बिल्डिंग का वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इसके अलावा और जितने भी जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस की का जो फील्ड है, उसमें भी हम देखें, उस सेक्टर में भी, तो उसमें भी जीरो वेस्ट है, या इसके अलावा और भी पॉलिसीज बनाई गई हैं कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये सब जो अवेयरनेस है और प्रैक्टिस है, दो चीजें हैं, अवेयरनेस टू एक्शन। ये मुझे लगता है कि अभी भी हमारे मुल्क में इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, जबकि और दूसरे
1: मुल्कों
0: में इस पे बहुत तवज्जो दी जा चुकी है। अगर मैं सिंगापुर की मिसाल दूं, सिंगापुर में मैं जाती हूं, वहां रहती हूं अपने बेटे की फैमिली के साथ, तो वहां पे जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, वो एक एक फैमिली इतनी अवेयर और इतनी कॉन्शियस है कि वो रिसाइकल्ड मटेरियल को कभी भी वो गार्बेज में फेंक ही नहीं सकते, तो वो अलग से ही रिसाइकल मटेरियल को रखते हैं। जैसे कि आप देखिए अमेज़न से कितने हमारे पार्सल्स आते हैं, छोटी सी चीज आप ऑर्डर कीजिए, पेन ऑर्डर कीजिए, कितना पैकेजिंग का सामान उसके साथ होता है।
1: बिल्कुल।
0: मैं तो सबसे पहले कहती हूँ इसे ही बंद कर देना चाहिए, ये ऑनलाइन शॉपिंग को, ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है हमारे सस्टेनेबिलिटी को। तो वो जो रिसाइकल मटेरियल्स होते हैं उनको वो अलग सेग्रीगेट करते हैं, जो किचन मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पील्स होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उसे वो अलग सेग्रीगेट करते हैं, बाकी और जो दिगर वेस्टेज होते हैं तीन हिस्सों में उसे बांट करके उसके अकॉर्डिंग उनके लिए प्लेसेस बने होते हैं जहां वो डालते हैं, और जो रिसाइकेबल मटेरियल्स हैं वो डायरेक्टली रिसाइकिल के लिए चले जाते हैं।
1: डॉक्टर मैम, आपने और जितनी कंट्रीज का आपने दौरा किया है, बहुत सारी कंट्रीज का, तो कहां कहां आपको देखने में आया कि जहां एक्सपीरियंस आपने की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वी शुड फॉलो या वी शुड यू नो इंप्लीमेंट दोस प्रैक्टिसेस, कुछ मिसालें देंगे आप?
0: जी, जैसे देखिए मैं मालदीव्स की मिसाल दूं, मालदीव्स एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, और ओशंस है वहाँ पे, वाटर बॉडी के पास ही है। वहाँ मैं ये कहूँगी कि वहाँ के लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने वाटर बॉडीज के लिए, ओशंस के लिए बड़े कॉन्शियस हैं
1: जी।
0: तो जिस स्कूल में वहाँ प्रिंसिपल मैं रही BIS में, वहाँ मैंने देखा स्कूल एजुकेशन में ही इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है कि वहाँ पाबंदी से बच्चे बीच क्लीनिंग के लिए जाते हैं
1: जी।
0: वहाँ पाबंदी से बच्चे नाइट कैंप्स करते हैं स्कूल के अंदर, और उन नाइट कैंप के दौरान सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब वो एक्टिविटीज होती हैं जो उनको सस्टेनेबल बनाती हैं, कि हमें एज आइलैंडर किस तरह अपने आप को सस्टेन करना है,
1: हमारा फ्यूचर क्या है,
0: हमारा फ्यूचर क्या है, उसमें हमें जो लोकल वहाँ पे सामान है
1: जिंदा रहना है, आगे जिंदा रहना है जो भी आएंगे।
0: जी जी जी जी। तो इसीलिए आप अगर जाएं वहाँ के बीचेस पे, तो आप देखेंगे कि इतनी सफाई, इतना शफाफ पानी। मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस भी की थी वहाँ
1: जी जी।
0: तो मेरी एक फ्रेंड कानपुर से वहाँ आई
1: जी,
0: और जैसे ही वो लैंड की मालदीव्स में, माले एयरपोर्ट पे, उसने वहीं से अपने बच्चों को फौरन ही वीडियो कॉल पे लिया और कहा कि बच्चों देखो अभी भी दुनिया में नीला आसमान है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली के आसपास
1: क्या एयर क्वालिटी है,
0: एयर क्वालिटी और आसमान कैसा है, ग्रे आसमान,
1: एवरीवेयर इट इज यू नो इट इज हैपनिंग, एयर क्वालिटी खराब हो रही है।
0: और उसने फौरन ही कहा कि देखो और ओशन भी नीला है और इसका पानी भी इतना साफ है, अभी भी दुनिया में ऐसा है। तो मैं वहां उसकी तारीफ करूंगी मालदीवियंस की, वो बहुत ही एफर्ट्स लगा रहे हैं इसके लिए, मिनिस्ट्री भी लगा रही है और वहां की जो कॉमन पब्लिक है वो भी। अब अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में वेस्टेज का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है
1: जी।
0: तो वहाँ पे लोग जितने भी उनके गार्बेज हैं उससे नित नहीं क्या हम रिसाइकलेबल चीजें कर सकते हैं, उन्होंने उससे अभी एनर्जी प्रोड्यूस किया है, उसकी भी

0: मशीन को मैंने देखा और कि उन्होंने किस तरह से उसे बनाया है और कैसे उनके गार्बेज को एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं।
1: मैम, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से हम बात करें, क्योंकि अब आपकी जो बातें हैं या आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताया कि वी हैव टू बी, यू नो, वी हैव टू वर्क इन अ सस्टेनेबल मैनर, सस्टेनेबल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और हमें काम करना है प्रैक्टिकली, चाहे कोई एक दूसरा करे या ना करे। हमें क्या ये समझना चाहिए कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि ये इंडिविजुअल जो हम कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है, दरिया बनता है, पौंड बनता है, क्या हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? क्या हमें इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने बताया वही तो है वहां पे, तो क्या इस तरह हमें इस उम्र में या जो भी जिस उम्र में है अभी भी जो हमें सुनने वाले हैं, सामयीन हैं, हम देखते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, किस तरह का अप्रोच हमें अपनाना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट हमें बनाना चाहिए?
0: जी, सबसे पहले तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए
1: जी,
0: कि अगर कहीं भी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, या और भी दीगर प्रॉब्लम्स की बात करें, तो हम भी जिम्मेदार हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम ये नहीं कह सकते अरे हम क्या करें, हमारी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम क्या करें, हमारा तो कोई हाथ नहीं है इसमें। नहीं, हमारा हाथ है, क्योंकि हम साइलेंट विक्टिम हैं, इसलिए भी हमारा हाथ है। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो अगर दुनिया में
1: जो गलत काम हो रहे हैं तो उसको हम सह रहे हैं, देख रहे हैं,
0: उसको हम देख रहे हैं, यस, तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो कम से कम अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए, आप उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में आप एक्सप्रेस कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए। उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, पहले उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
1: बिल्कुल,
0: हम दुनिया को तरगीब देने जा रहे हैं और खुद हमारा ये हाल है,
1: हमारा घर नहीं है,
0: सही करते जा रहे हैं, हम एनर्जी नहीं सेव कर रहे हैं, हमारे पास वाटर वेस्टेज हो रहा है। इसके लिए क्या है कि हमें एक कॉशियस एफर्ट करके हर महीने अपने बिल को भी देखना है कि अच्छा, मैंने पिछले महीने का ये था, इस महीने मैंने एफर्ट लगाया, अब कितना कम हुआ, वाटर कंजम्पशन कितना कम हुआ, इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज के यूजेस होते थे वो कितने कम हुए, वेस्टेज हमारे घर से कितना निकल रहा है। अगर हम स्कूल चला रहे हैं तो हमारे स्कूल में वेस्ट कहाँ कहाँ पे ज्यादा हो रहा है।
1: आपने वार्डरोब की बात की, उस बारे में जरा बताइए हम सबको कि वार्डरोब को कैसे समझना चाहिए लोगों को।
0: जी जी, देखिए, हकीम साहब के नाम से शायद आप सब वाकिफ होंगे, हकीम अब्दुल हमीद, जो कि हमदर्द के फाउंडर हैं
1: जी।
0: और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके स्कूल में काम किया, और जब वो बाहयात थे
1: जी,
0: तो मैंने उनसे बहुत ही क्लोज वे में मैंने उनके साथ काम किया। मैंने उनके लिए बल्कि चपाती भी एक दिन बनाई थी, वो भी मुझे फख्र है उस चपाती पे, हालांकि मैंने हजारों चपातियां बनाई होंगी लेकिन उस पर बहुत फख्र है। हकीम साहब एक शेरवानी 18 साल तक पहनते रहे,
1: अच्छा,
0: एक फिएट गाड़ी में घूमते रहे, जबकि उनके पैसों से कमाने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे
1: जी,
0: और बड़े बड़े सूट पहनते थे, महंगे महंगे सूट, मगर उन्होंने 18 साल तक उस एक शेरवानी को पहना। उन्होंने ये कहा कि जब इससे मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो मुझे दूसरे को बनाने की क्या जरूरत है।
1: अच्छा,
0: तो जब भी हम अपने वार्डरोब
1: तो ऐसी शख्सियात जो है बहुत ही नायाब होती हैं दुनिया में, वो ये है ना, क्या कहते हैं उसको, ऐसी शख्सियात तो बिल्कुल नायाब और बहुत कम मुनफरिद होती हैं जी।
0: लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना?
1: मेरा मतलब है, हम आम लोग हैं तो आम लोगों को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, आम लोगों को क्या करना चाहिए कि आम लोगों को सबसे पहले जब भी कुछ नया खरीदने जाएं तो पहले जो आपका पिछला है उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिस्पोज ऑफ करना
1: okay.
0: है। अगर वो पहनने के लायक है तो आप किसी ऐसे को दीजिए जिसके पास नहीं है और वो उसे पहन सके, जरूरत है। अगर वो उस लायक नहीं है, बहुत घिस गया है, पिट गया है, तो फिर उससे और क्या दूसरी चीजें बन सकती हैं। आजकल आपने देखा कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पुराने कपड़ों से दूसरे मटेरियल्स बना रही हैं, उसको काट काट करके उससे बनाते हैं, उसको फिर दोबारा से धागों में कन्वर्ट करके फिर बनाते हैं। तो हमें उस तरह की एजेंसीज को पता करके
1: ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जहां ये वेस्टेज है वहां पे वो यूटिलाइज हो
0: जी जाए। जी, वहां पे हमें भेजना चाहिए। तो एक तो सब
1: वो रिसाइकलिंग वगैरह करते होंगे, जो
0: रिसाइकलिंग करते हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि उसको सिर्फ लैंडफिल में नहीं फेंक देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होता है जब हम किसी भी चीज को बस लैंडफिल के लिए डाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, हम सब जानते हैं इसराफ कितना मना है हमारे
1: ओवरऑल है,
0: इसराफ मना है,
1: ऑस्टेरिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिस।
0: बिल्कुल, मॉडरेशन में, इत्तेदाल में जिंदगी गुजारना है, जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट आजकल हो गया है कि रिपीट नहीं करना है।
1: Yes.
0: अब मैंने एक जगह पहन लिया, दोबारा कैसे पहनेंगे?
1: अच्छा,
0: तो हर कोई ये सोचता है कि वो क्या कहेगा। भाई, वो कौन है? हम और आप ही तो वो है ना।
1: जी जी,
0: वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा? अगर हम कहना बंद कर दें दूसरों के लिए तो वो कुछ नहीं, वो तो हम ही है, और कौन है वो? तो ये रिपीट करना शुरू करें। आप 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगाते हैं, जो वेडिंग वगैरह में लोग कपड़े लेते हैं, क्या इस्तेमाल होता है उनका?
1: बस ए वन टाइम।

0: वन टाइम इस्तेमाल होता है, और जो आसपास के जो
1: मर्दों के भी कपड़े वन टाइम ही होते हैं शादियों पे या किसी और जगह,
0: वो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके भी काफी महंगे होते हैं। तो हमें यहीं पे इसको रोकने की जरूरत है कि हम उसे क्या कुछ इनोवेटिव वे में कुछ उसकी चुन्नी तब्दील करके, कुछ उसका जंपर तब्दील करके, या उसमें कुछ और डिजाइन चेंज करके, क्या हम उसे दोबारा तिबारा चौबारा नहीं पहन सकते हैं?
2: डॉक्टर हलीमा सादे जी, 2 जून को अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया बहुत बहुत।
2: सामईन, इसके साथ ही आज के खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है, हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
3: अभी आप हमारे शोबे खबर का यह खुसूसी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी, और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
6: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
5: समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
7: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता

0: में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर।
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकार

0: दरों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है।

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। रात के 9 बज चुके हैं।
2: समीन पेश खदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम जो तहतम वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर BSF, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नज़दीक BSF की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुशतरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया, जिसकी अक्कासी अक़वाम मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया, जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोज़ा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडोरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पा जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज़ कम यकीनी ख़रीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फ़ी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया है। नज़रसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक़ आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के अमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के अमूर के महकमे और भारत की कौमी ज़रई कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुकाम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के ज़खीरों की मुआसिर ख़रीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वज़ीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिलशुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देख रेख की पेशरफ्त का जायज़ा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा शाहराहों का अहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के ज़मीनी हुकाम ज़मीनी कामकाज को तेज़ करने की ज़रूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ़ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मॉन

0: मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और यह दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के पास

0: रात के 9:30 हुए हैं। समाप्त करें प्रोग्राम बज़्म सुखन। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: बज़्म सुखन।
3: खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आज के बज़्म सुखन के इस तादस्त शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। हम तह दिल से आप सबका खुश आमदीद करते हैं और ये कहते हुए खुशी महसूस होती है, फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ जो मधु शौरा हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हमारे उस्ताद, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा जनाब डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। निगहत नज़र साहिबा हमारे साथ, इतनी खूबसूरत शायर के जिन्हें लोग बहुत बहुत मोहब्बत से याद करते हैं, मेरी मुराद है सागर सरफराज साहब से। और हमारे साथ हमारी नई नस्ल की एक बहुत तवाना आवाज है जिन्हें हम राथर रोशन आरा के नाम से जानते हैं, और मैं आपकी मेजबान मसरूफा कादिर। इस मुशायरे की खसूसियत ये है कि यहाँ पे दिल की बात होगी दुनियादारी की बाद में, और आज का ये मुशायरा इसलिए भी खास है कि यहाँ पे मोहब्बतें बांटी जाती हैं और हम मोहब्बतों के अमीन खुद को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी ताज़ा आदम शायरा राथर रोशन आरा साहिबा से। राथर रोशन आरा साहिबा, आपका इस्तकबाल है।
4: सदर महफिल की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, तरन्नुम में कोशिश करूँगी। फिर शोक़ के दीदे गुल है

0: बहुत अच्छा,
1: शेर सुनेगा कि फिर
0: शायरी
1: बख्त खुल गया कि फलक पर ये बख्त का,
2: वाह
1: फिर

0: रोशन हुआ सितारा
1: सितारों
0: में आज देख। बहुत शुक्रिया। नरमी ये बरगे गुल ये गुलाबों की किस तरह
1: नरमी ये बरगे गुल ये गुलाबों

0: ईसाई से डरते थे दहर में, खुश बाश है वो गम के
1: हिसारों में आज दे।
0: हिसारों में आज दे।
2: फिर से

हिसारों में आज देख, खुश बाश है वो गम के हिसारों में आज देख। शेर है क्यों जो

0: देख के
1: देखा
0: हजार बार, वो एक तुम भी दिल से
1: हजारों
0: में आज देख,
1: बहुत अच्छे,
0: वो एक तुम भी दिल से हजारों में आज देख।
1: क्या बात,
2: बहुत शुक्रिया,
1: क्या बात,
2: शेर बतौरी खास की।

0: बन कर खुदा कभी मिट कर वो सो गए हैं मजारों में आज गए, मिट कर वो सो गए हैं मजारों में आज देख
1: क्या बात, क्या बात।
0: बहुत शुक्रिया मक्ता मुलाहिजा फरमाएगी।

0: मारू मैं आज
1: जिक्र
0: उनका दर्द के मारू मैं आज दे।
1: क्या बात, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने।
0: और एक गजल से चंद
1: अता कीजिए।
0: अव्वल वो जुनू तेरे शरारे में नहीं है,
1: अव्वल
0: वो जुनू तेरे शरारे में नहीं है, और दूसरा की तूर नजारे में नहीं है।
1: हाय हाय
0: बहुत शुक्रिया। रोकेगा नहीं वो मैं अगर डूब भी जाऊं, रोकेगा नहीं वो मैं अगर डूब भी जाऊं, शफकत की नमी उसके किनारे में नहीं है।
1: बहुत
0: शुक्रिया।
2: शफकत की नमी,
0: वो मजहबी है सो वो मेरा नाम न लेगा।
1: अरे वाह, वो मजहबी है,
0: वो मजहबी है सो वो मेरा नाम न लेगा, ये इश्क मेरा उसके सिपारे
1: में नहीं है। क्या बात, क्या बात, क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया,
1: क्या बात,
2: बहुत अच्छा।
0: धड़कन तेरे कदमों के बराबर चली यानी, धड़कन तेरे कदमों के बराबर चली यानी, अब से मेरे दिल के इजारे में नहीं है। मक्ता देखिए, आइए जरा और बैठिए आरा के बराबर,
1: आइए
0: जरा और बैठिए आरा के बराबर, मेरी अमा में आप खसारे में नहीं है।
1: अरे वाह,
0: मेरी अमा में आप खसारे में नहीं है,
1: अमा में आप खसारे में नहीं है।
2: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थी रोशन आरा साहिबा, रात रोशन आरा साहिबा, बहुत अच्छा कलाम सुनाया आपने। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चूंकि आगे उस्ताद हैं हमारे तीनों के तीनों, तो मैं साहिब सदर की इजाजत से चंद एक अशार पेश करती हूँ। एक तरही मिसरा मिला था एक बार कहीं पे, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। उसमें दो तीन शेर हुए थे, पेश खिदमत है कि कैसे करूं यकीन के मुकद्दर में आ गया, कैसे करूं यकीन के मुकद्दर में आ गया, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया।
0: क्या बात, क्या बात,
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। और आपकी नजर सर, आजाद सर, आपको देख के ही लिखना सीखा है, तो आप सुनिए कि बिखरा तो दश्त दश्त बयाबा बिखर गया, बिखरा तो दश्त दश्त बयाबा बिखर गया, सिमटा सफर तो मील के पत्थर में आ गया।
0: क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया। बिखरा तो दश्त दश्त बयाबां बिखर गया, सिमटा सफर तो मील के पत्थर में आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और धोखे में फिर से आ गए कैसे ये सारे लोग, धोखे में फिर से आ गए कैसे।

0: ये सारे लोग रहजन ये कैसे बहस में रहबर के आ गया। बहुत शुक्रिया, बिखरा तो दश्त दश्त बयाबां बिखर गया, सिमटा सफर तो मील के पत्थर में आ गया। और दो चार अशारों और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी बहर में सहल मुमतना में कही गई एक गजल है कि रंगों से भरी थी वो, रंगों से भरी थी वो जैसे जलपरी थी वो, रंगों से भरी थी वो जैसे जलपरी। शेर सुनिएगा सागर सरफराज साहब के, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, बात आखिरी थी वो, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चलो मैं आता हूँ, बात आखिरी थी वो, क्यों बचाता शहजादा, क्यों बचाता शहजादा, क्या कोई परी थी वो, क्यों बचाता शहजादा, क्या कोई परी थी वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीसा तुम समझ बैठे, सीसा तुम समझ बैठे, रेत बुरबुरी थी वो, सीसा तुम समझ बैठे, रेत बुरबुरी थी वो, और धुन थी जैसे वो बोली, धुन थी जैसे वो बोली, मानो बांसुरी थी वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने हरदिल अजीज शायर जनाब सागर सरफराज का कलाम सुनते हैं और सर धुनते हैं।
1: आपका नवाजिश आपकी इस खूबसूरत मुशायरे में मुझे मदऊ करने के लिए। नज़ीर आज़ाद साहब की सदारत में मैं जुर्रत कर रहा हूँ, एक नज़्म से शुरुआत करना चाहता हूँ सर। नज़्म लिखने की कोशिश बहुत की मगर, नज़्म लिखने की कोशिश बहुत की मगर, मुझको लफ्जों से आया नहीं खेलना, दर्द को काट कर शेर का ताना बाना में बुनता रहा, दर्द को काट कर शेर का ताना बाना में बुनता रहा, आंसुओं को पिरोने की खातिर मुझे दर्द का कोई दागा नहीं मिल सका, आंसुओं को पिरोने की खातिर मुझे दर्द का कोई दागा नहीं मिल सका, जो मेरा ख्वाब था खाक में मिल गया, जो मेरा ख्वाब था खाक में मिल गया, कैनवस पर ख्यालों की रंगीनियां पेंट करते हुए जल गई उंगलियां, कैनवस पर ख्यालों की रंगीनियां पेंट करते हुए जल गई उंगलियां, कितने ताजा मजामीन थे जहन में, कितने ताजा मजामीन थे जहन में जो धुआं हो गए, कितने ताजा मजामीन थे जहन में जो धुआं हो गए, राख ही राख चारों तरफ है यहाँ, मैं नहीं बढ़ सका रंग तस्वीर में, मैं नहीं बढ़ सका, मैं नहीं बढ़ सका रंग तस्वीर में, रायगा हो गया मेरा फन दोस्ता, और मेरी आंखों से अशकों के अनमोल हीरे बरसते रहे, मेरी आंखों से अशकों के अनमोल हीरे बरसते रहे, बारिशों की तरह चांद को इस्तारा बनाकर किसी नाजनी शोक का अक्स खेचा तो वो भी अधूरा, चांद को इस्तारा बनाकर किसी नाजनी शोक का अक्स खेचा तो वो भी अधूरा रहा, दिल ने बादे सबा से कहा आ जरा रक्स किरतास पर करके खुशबू लुटा, उसने सूरज को ताना दिया धूप का, उसने सूरज को ताना दिया धूप का, चंद किरणों ने फूलों को झुलसा दिया, चंद किरणों ने फूलों को झुलसा दिया, चांद तारों को कागज निगलने लगा और मसला बन गया, मसला बन गया, एक साये ने आवाज दी क्या हुआ, कुछ धुंधलकों ने हंसकर कहा और क्या, तीरगी ने चिरागों से बदला लिया, कुछ धुंधलकों ने हंसकर कहा और क्या, कुछ धुंधलकों ने हंसकर कहा और क्या, तीरगी ने चिरागों से बदला लिया, रोशनी का पता जिसको मालूम था वो सितारा कहीं आज फिर खो गया, रोशनी का पता जिसको मालूम था वो सितारा कहीं आज फिर खो गया, और बर्फ जादी ने दरिया से पूछा तो था, बर्फ जादी ने दरिया से पूछा तो था, क्यों परिंदों को खूह में नहाया गया, बर्फ जादी ने दरिया से पूछा तो था, क्यों परिंदों को खूह में नहाया गया, जर्द पत्तों ने मातम किया इस तरह, पेड़ रोने लगे कश्तियों ने सहा, दुख सिया रात का मेरा फनकार जाने कहां मर गया, मैं नहीं लिख सका चाह कर भी कोई नज्म सागर मियां मैं नहीं लिख सका हाँ नहीं।

0: क्या बात है, क्या
1: शुक्रिया।
0: वो तो दरिया था मुझे दूर बहा ले जाता,
2: जाने क्या सोच के तालाब खरीदे मैंने।
0: मुंतजिर अब भी किसी ख्वाब की ताबीर की थी, मुंतजिर अब भी किसी ख्वाब की ताबीर की थी, इसलिए ख्वाब पे बस ख्वाब खरीदे मैंने, इसलिए बस ख्वाब पे बस ख्वाब खरीदे मैंने। और शेर देखिए, फिर भी उतरी न कहीं रोशनी की एक रमक,
2: फिर भी उतरी न कहीं रोशनी की एक रमक,
0: फिर भी उतरी न कहीं रोशनी की एक रमक, रात बाजार से महताब खरीदे मैंने, बाजार से महताब खरीदे मैंने।
2: क्या क्या शेर है, क्या क्या शेर,
3: वाह बहुत मजा आ गया।
0: आखिरी शेर भी नहीं कहिए क्योंकि मकता नहीं है
3: इसलिए। अता की।
0: मैं भी बहती हुई तिनके की तरफ बह जाऊं,
2: मैं भी बहती हुई
0: तिनके, मैं भी बहती हुई तिनके की तरफ बह जाऊं, सोच कर ये कहीं सैलाब खरीदे मैंने, सोच कर ये कहीं सैलाब खरीदे मैंने। और कितनी झूठी थी कहानी वो परों की फिर भी,
2: कितनी झूठी थी वो कहानी,
0: झूठी थी कहानी वो परों की फिर भी, कितनी उम्मीद से सुरखाब खरीदे मैंने, कितनी उम्मीद से सुरखाब खरीदे मैंने। और अगर इजाजत है तो दूसरी गजल के चंद अशआर रखूं। मतला है, मैं जिस जहां से हूँ वो जहाँ है पानी का,
2: हाँ मैं जिस जहाँ से हूँ वो जहाँ है पानी का,
0: जिस जहाँ से हूँ
3: वो
0: जहाँ है पानी का, वहाँ जमी ही नहीं आसमान
2: है पानी का, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: वहाँ जमी ही नहीं आसमान है पानी का,
2: वाह वाह
3: क्या बात,
0: वाह वाह। कहा ये किसने कि है इश्क आग का दरिया,
2: कहा ये किसने,
0: कहा ये किसने कि है इश्क आग का दरिया, कहाँ है आग ये बहता धुआं है
2: पानी का, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: कहाँ है आग
2: ये बहता धुआं
0: है पानी का,
2: क्या बात है।
0: और शेर रख रही हूँ,
2: हाँ अता कीजिए मैम, अता कीजिए।
0: जहाँ की खाक थी आखिर उसी जगह पहुँची,
2: जहाँ
0: की खाक थी आखिर उसी जगह पहुँची, मगर वो राज जो अब तक नहा है
2: पानी का, क्या आला शेर हुआ,
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मगर वो राज अब तक नहा है पानी का,
2: खूब दर।
0: और तुम्हारी याद की कौसे कुजा निकल आई,
2: तुम्हारी याद की
0: कौसे कुजा निकल आई, है फैज़े अब्र या फैज़े अना है
2: पानी का, फैज़े अना है पानी का, क्या बात है, क्या क्या खूब इस्तारे।
0: और ये भी शेर हुआ है देखिए, चला था पाँव में छाले लिए कभी कोई,
2: छाले लिए कभी कोई
0: कि दश्त दिल में अभी तक निशा है पानी,
2: क्या बात है, क्या बात है,
0: दश्त दिल में अभी तक
2: निशा है पानी, क्या खूब है, क्या खूब।
0: हर एक लब पे उगाया है प्यास का सर,
2: हर एक लब पे उगाया है प्यास का सर,
0: उगाया है
2: क्या सहरा, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह।
0: हर एक लब पे उगाया है प्यास का सहरा, हर एक मोड़ पे होता घुमा है पानी का,
2: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह,
0: होता घुमा है पानी का, वाह वाह वाह, लब पे उगाया है प्यास का,
2: बहुत खूबसूरत, कमाल हसन,
0: खूबसूरत, हर एक लब पे उगाया है प्यास का सहरा, हर एक मोड़ पे होता घुमा है पानी का। और ये शेर देखिए, मेरी नजर को ही, आखिरी शेर है, उसके बाद मकता भी है
2: जी।
0: मेरी नजर को ही लाहक है अब कोई आशोब,
2: मेरी लाहक है अब कोई आशोब,
0: लाहक है अब कोई आशोब,
2: क्या खूबसूरत,
0: मुझे तो हर तरफ दिखता
2: धुआं है पानी का,
0: बाबा हर तरफ
2: दिखता धुआं है पानी का।
0: और बतौर खास ये मकता सुन लीजिए,
2: अता कीजिए, इनायत कीजिए।

0: जी आजा साहब अर्ज किया है,
1: इनायत
0: ये
1: इनायत कीजिए।
0: बसा लिया है मुझे आंख में नजर उसने,
2: बसा लिया है
0: बसा
2: मुझे
0: लिया है
2: आंख में
0: नजर उसने,
2: नजर उसने
0: नजर बसा लिया है मुझे आंख में नजर उसने, वहाँ सबात कहाँ वो मकान है पानी का,
2: वहाँ सबात कहाँ वो मकान है पानी का,
0: शुक्रिया
2: वहाँ सवार कहाँ वो मकां है पानी का। क्या खूबसूरत शायरी अता की है, क्या खूबसूरत मुशायरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निगहत नजर साहिबा आपका। और अब वो मोड़ आया है जब हमारे साहिब सदर अपना कलाम सुनाएंगे और हम सब कान बने हुए हैं, सरतापा गोश पर आवाज
3: है। मसरूफा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सही सचमुच मैं बहुत खुश हूँ इस मुशायरे में शिरकत कर।
2: बहुत शुक्रिया।
3: एक तो यह है रोशन आरा जैसी नव आमोज नव वारित और बिल्कुल अपने होने का एहसास दिलाती हुई,
0: बिल्कुल दुरुस्त
3: सागर सरफराज बिल्कुल अपने नए बांकपन के साथ। मसरूफा तो उनके क्या कहने हैं, ये तो हर रोज नए नए चीज़ों से हमें हमारी आंखें खैरा कर देती हैं। और डॉक्टर निगहत नजर साहिबा बिल्कुल ये आज उसने दिखाया कि नहीं साहब हम अभी बूढ़े नहीं हुए।
2: क्या बात है।
3: तो चंद अशार
0: अब अगर यहाँ बूढ़ों की जगह ज्यादा बुजुर्गी होता तो ज्यादा बेहतर था।
3: बुजुर्ग तो हम हैं, बूढ़े नहीं। यहाँ पर बहुत पहले क्योंकि कहीं पर परी की बात कहीं से शायद मसरूफा डॉक्टर मसरूफा ने तो मुझे बहुत पहले की अपनी एक नाज़म याद आ गई तीन सत्रों वाली
1: जी।
3: उस घमसान के रन में जूही,
2: उस घमसान के रन में,
3: उस घमसान के रन में जूही शहजादे ने तीर चलाया। उस घमसान के रन में जूही
2: शहजादे ने तीर चलाया,
3: तो बच के निकला लेकिन सब्ज परी दम तोड़।
2: हाय हाय हाय, आपने क्या असातीर ही बदल डाले। हाय हाय हाय,
3: शुक्रिया
2: शुक्रिया। क्या क्या
3: तो बच के निकला लेकिन सब्ज परी दम तोड़। ये मैंने बहुत पहले
0: आला कलाम कभी पुराना नहीं होता।
2: अब
0: आला कलाम
3: चंद अशार पेश करने हैं। एक सूरते अनाद में रखा गया हूँ मैं,
2: एक सूरते अनाद में रखा गया हूँ मैं,
3: एक सूरते अनाद में
2: रखा
3: गया हूँ मैं, यानी मेरे तजाद में
2: रखा गया हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह,
3: रखा गया हूँ मैं, यानी मेरे तजाद में
2: रखा गया हूँ मैं।
3: और शेर है अर्जे कशीर मेरी नथी करबला,
2: अर्ज़े कशीर मेरी,
3: अर्ज़े कशीर
2: मेरी
3: नथी करबला, मगर अबनाए बिन ज़ियाद में
2: रखा गया मैं, बिल्कुल वाह वाह
3: बिन ज़ियाद में
2: रखा गया
3: हूँ मैं, और चाके हुनर पे मुझको सवारा गया तो था,
2: चाके हुनर पे मुझको सवारा गया तो था,
3: चाके हुनर पे मुझको सवारा गया तो था, बाजारे पुर कसाद में
2: रखा गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है,
3: वाह वाह वाह। आपके लिए शेर है चाके हुनर पे मुझको संवारा गया तो था, बाजारे पुर कसाद में रखा गया हूँ मैं, और ये जो कजी है मुझ में मेरी कजरवी नहीं।
2: हाय बाबा, ये जो कजी है मुझ में मेरी कजरवी नहीं,
3: ये जो कजी है मुझ में मेरी कजरवी नहीं, इस शहर कज निहाद में
2: रखा गया मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब,
3: ये जो कजी है मुझ में मेरी कजरवी नहीं, इस शहर कज निहाद में
2: रखा
3: गया, और खौफे जिया से गर्चे निकाला गया तो था,
2: खौफे जिया से गर्चे
3: निकाला गया तो था, नौमीदिये मुराद में
2: रखा गया, क्या बात,
3: नौमीदिये मुराद में रखा गया। और आखिरी शेर है लवहे बदन पर हर्फ गरा हूँ मिटा मुझे,
2: अरे वाह, लवहे बदन पे हर्फ गरा हूँ
3: मिटा
2: मिटा
3: मुझे, کیوں چشمِ غربت باد میں
2: رکھا گیا ہوں میں. واہ واہ واہ واہ واہ.

0: लव है
1: बदन पे हरफे ग्रां हूँ मिटा मुझे क्यों चश्मे गर्द बाद में रखा गया हूँ मैं एक सूरत अनाद में रखा गया हूँ
2: मेरे तजाद में रखा गया हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शोरा का, बहुत बहुत शुक्रिया, और रेडियो कश्मीर की इंतजामिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मुशायरे को मुनाकद किया, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही हमारा आज का बज़्म सुखन का ये मुशायरा इख्तिताम को पहुँचता है। आप सबका शुक्रिया, कभी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
3: आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे बज़्म सुखन, जो शुरा इसमें शिरकत कर रहे थे उनके असमाई ग्रामी यूं है: रोशन आरा, डॉक्टर नज़ीर आज़ाद, डॉक्टर निगहत नज़र, सागर सरफराज और मसरूफा कादिर। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। अब पेश हैं फिल्मी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश।

0: प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश लेकर मैं रोहित मुश्ताक आप सबकी खिदमत में हाजिर। सामईन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफत होंगे, खुश खुर्रम होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपनों के साथ खैरियत से होंगे। सामईन, आए करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज इस फोन कॉल से। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रोहित दीदी, आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस अल्लाह का करम और आपकी दुआएं होने चाहिए।
0: बिलाल बोल रहे हो?
1: जी जी, मैं खाक खैपुरा से आपका मुस्तकिल काफी अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है।
0: खुश आमदीद है आपका बिलाल, एक बार फिर से आप ही के इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका चहीता है, आप लोगों की वजह से ही इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं।
1: जी दीदी, आपसे बात हुई थी काफी अरसे के बाद, जब आप LO FM 2 फिल्मी करते थे।
0: बिल्कुल,
1: उसमें मैं आपसे बात करता था।
0: बिल्कुल सही।
1: और सुनाए, घर पे सब ठीक ठाक है दीदी?
0: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जी जी जी, पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को और तमाम सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक।
0: खैर मुबारक, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
1: दीदी कल ईद है तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात करूं और अपनी पसंद सुनो ईद के मौके पर।
0: जरूर बिलाल, बताइए कौन सा नगमा सुनेंगे आप?
1: वो सॉन्ग एक है ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सबको सलाम,
0: जी
1: यही नगमा सुनना है दीदी।
0: ये कौन सी मूवी से है?
1: जी दीदी, मूवी का नाम याद नहीं है।
0: कोई बात नहीं है, प्ले करेंगे आपके लिए, अपने साथियों का नाम बताएं।
1: आप सुनेंगे दीदी?
0: जरूर।
1: और मेरा छोटा भाई गुजार अहमद और मेरी बेटियां दो है हाजिया और सायरा और हर्द पुंदो से फारुक अहमद चौपान, दूध पत्री रोयार से अब्दुल हमीद और पूरा से गुलजार अहमद।
0: चलिए बिलाल, अपने सभी साथियों के साथ सुनेंगे आप अपनी पसंद का ये नगमा और हमारी तरफ से भी आपको ईद की एडवांस में मुबारकबाद।
1: खैर मुबारक दीदी, बहुत ही अच्छा लगा कि आप इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए पहले तो फिर भी आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
1: बहुत ही शौक था कि पुराने अनाउंसरों से कब बात हो जाए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम।
0: चलिए, इस प्यार और खलूस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, हेलो, आपकी फरमाइश।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। الحمدللہ کمل شو تو کت پٹ چھو
2: بشوس محمد اشرف ڈار بانیر پٹ
0: محمد اشرف سب تو چھو ٹھیک پٹ
2: شکر خدا بودی کلیف گھر بات چھو ٹھیک
0: الحمدللہ وین تو کیا مصروفیات چھ آج کل روزان
2: جناب آسا سی کرم پانی کو موت مگر بیگن سی جناب چورین جناب سبزار سبزار ہز سون گام جناب چھو جیل والے پٹ کھلی 8 کلو میٹر جناب دور ہز
0: اچھا اچھا
2: سورین جناب چھو سبزار سبزار ہز
0: ماشاء اللہ یعنی دل چھو خوش گسان خدا صبنی قدرت وچھت چھنا
2: اہم اہم بہت والا والا آپ

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: जी अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी आपका मुस्तकिल सामिन अर्ज करा हूँ, मुर्शिद नगर त्रिगाम से साजिद अहमद मगलू।
0: साजिद कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया दीदी, ठीक हो ना?
0: जी शुक्र अल्लाह का। आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया। पहली बार आपसे बात हो पा रही है इस प्रोग्राम में।
0: जी बिल्कुल, क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: दिल का क्या करे साहिब,
0: दिल का क्या करे साहिब।
1: है ना आपके पास?
0: जी जी जी।
1: कुछ साथी है मेरे साथ।
0: जी
1: जी। सबसे प्यारा दोस्त शौकत अहमद टेलर, मेरे दो भाई है मुजफ्फर अहमद मगलू मोहम्मद यूसुफ मगलू और लंगेड़ से फिर दोस्त अहमद मीर और फिर जावेद अहमद डार फैयाज अहमद मगलू।
0: अच्छा साजिद, ये बताइए कल ईद है तो ईद की तैयारियां कहाँ पहुँची?
1: जी एक्चुअली मैं टेलरिंग का काम करता हूँ दीदी, इस वक्त कपड़े सिला रहे लोग ला रहे, मैंने सोचा यार पहले आपके साथ बात करें।
0: बल्कि यूं कहिए कि आप मसरूफ ही मसरूफ है।
1: हाँ दीदी इस वक्त बहुत बिजी हूँ, मैंने सोचा पहले दीदी के साथ बात करेंगे फिर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मसरूफियत के बावजूद भी आपने इस प्रोग्राम में कॉल किया। साजिद आप सुने अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये नगमा।
1: जी अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम।

0: बहुत बड़ा नगमा है जो मुझे आपको भी पसंद आएंगे और लोगों को भी पसंद आएंगे।
1: नगमे के बोल बताएं।
0: कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्म।
1: जी आपके साथ और कौन सुनेगा?
0: जी मेरे साथ है मेरा भाई बशीर अहमद जावेद अहमद और सनावारी जिचपारा से मोहम्मद शफी परे, संबल सनावारी से साहिल अशरफ, मोहम्मद शफी ड्राइवर और एक सनावारी से एक और दोस्त है उसमें मोहम्मद शहबान भट्ट और जावेद अहमद बाफंदा बशीर अहमद बाफंदा। दीदी आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारी सब पहली बार बात।
1: चलिए आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: दीदी, आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: बस शुक्र है अल्लाह का। दीदी मैं फारूक बोल रही हूँ, शाहगंज सनावारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर।
0: फारूक साहब कैसे हैं आप?
1: बस शुक्र है अल्लाह का दीदी। आपको मेरी तरफ से, सब भाइयों के लिए आपको भी है मेरी तरफ से एडवांस ईद की बहुत बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक, कि आप हमारे लिसनर्स तक भी आपका जो है ये ईद मुबारक ज़रूर पहुंचेगा, बल्कि पहुंचने वाला है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं सामीन, के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो होती है हर सोमवार सुबह 11:30 बजे से 12 बजे तक होती है, और ये प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट होता है मंगलवार को शाम 10 बजे। और समीन, अब जो है फारूक साहब की पसंद जानना चाहेंगे। फारूक साहब कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: दीदी आज के हमें सुनना है एक

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: सलाम अलैकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, आप ठीक हो?
0: जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: साहिल बात कर रहा हूँ जनाब साहब, सोरा से।
0: साहिल, कैसे हैं आप?
1: बस अल्लाह का करम और आप बहन की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद यही है कि आपकी पूरी टीम ठीक होगी।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी बखैर आफियत हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप भी बखैर आफियत होंगे। साहिल, क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: दीदी कल ईद मनाई जा रही है,
0: जी
1: पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को और जितने भी इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो।
0: चलिए, शुक्रिया एडवांस में ईद मुबारक के लिए, और हमारी तरफ से भी, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लिसनर्स को भी, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में। क्या सुनना पसंद करेंगे साहिल?
1: फिल्म का नाम है
0: जी
1: तुम बिन।
0: तुम बिन फिल्म से कौन सा नगमा?
1: ये उसका कोई भी नगमा
0: जरूर आपके लिए प्ले करेंगे। साहिल, ये बताइए कि ईद की तैयारियां कहाँ पहुंची? ईद की तैयारियां कहाँ पहुंची साहिल?
1: बस अल्लाह का करम है, ईद की तैयारियां तो मुकम्मल हो गई है, तो अब इंशाल्लाह कल ईद मनानी है। बिल्कुल, मेरी यही इस्तेदा रहेगी उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह ताला को जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस बार चुना है कुर्बानी करने के लिए,
0: माशाल्लाह।
1: तो जब वो कुर्बानी करेंगे फिर जब उनका वो निकलता है तो वो बीच रास्ते पे ही छोड़ देते हैं कहीं
0: बिल्कुल
1: कहीं।
0: सही, बिल्कुल सही।
1: उससे क्या होता है, एक तो हमारा माहौल भी गंदा होता है
0: और वो
1: और इसकी
0: कुर्बानी
1: भी
0: भी कबूल नहीं होती।
1: जी और इसकी भी बेकदरी होती है।
0: बिल्कुल सही साहिल। देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, जब भी कुर्बानी देनी होती थी किसी भी जानवर की, तो वहां पर क्या होता था, बाज़ाबिता उस खून के लिए भी जो है एक गड्ढा खोदते थे जिसमें वो खून जाता था। बल्कि वो नालियों में जैसे आजकल बह रहा है, ड्रेन्स में बह रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा था। लेकिन आजकल अगर देखें तो काफी गलत हो रहा है, और इस बारे में जो है वाकई में लोगों को बेदार होने की जरूरत है कि ऐसी कुर्बानी अल्लाह ताला को बिल्कुल भी मंजूर नहीं।
1: बिल्कुल, और सरकार ने भी रखा है कि उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां भी रखी है।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर वो एक दिन वो घर में ही रखेंगे कहीं, मानो कि वो कह रहे हैं कि हमें बदबू आ रही है, तो वो कहीं रखे उसको जहाँ से बदबू ना आए, या उस पर कोई स्प्रे डाले,
0: बिल्कुल
1: जब तक कि ये म्युनिसिपैलिटी की तरफ से गाड़ियां आती है, हर रोज आती है, सुबह हर मोहल्ले में आती है, तो फिर वो उनको आराम से वो दे सकते हैं।
0: बिल्कुल साहिल,
1: वो जहाँ फिर वो म्युनिसिपैलिटी वाले वो डंप करेंगे तो वो तो उम्मीद है कि वो अच्छी ही जगह उसको डंप करेंगे।
0: सही बात है, सही बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लिसनर्स में से जिन्होंने भी किसी भी जानवर की कुर्बानी देनी है वो इस बात पे जरूर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी हिदायत अता फरमाए। साहिल, अपने साथियों के नाम बताएं।
1: और एक बात मैं कहूंगा वालिदैन से,
0: जी
1: वो अपने माइनर बच्चों को बाइक गाड़ी या स्कूटी ना दे
0: जी
1: ईद के
0: बिल्कुल।
1: दिन, क्योंकि उस दिन बहुत ही हादसातों का खतरा रहता
0: अल्लाह
1: है।
0: बचाए,
1: और
0: अल्लाह सबकी हिफाजत
1: बिल्कुल
0: करे।
1: बिल्कुल, और ये जो
0: सही
1: बड़ी
0: बात है,
1: ईद है, ये जो बड़ी ईद है, ईद पे बहुत ही रश रहता है लोगों का,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: सही,
1: उनको
0: बिल्कुल सही।
1: कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो अपने अपने रिश्तेदारों को बांटना होता है। तो मेरी यही इस्तेदा रहेगी वालिदैन से कि वो अपने माइनर बच्चों को गाड़ी चलाने ना दे ईद के
0: बिल्कुल,
1: दिन,
0: न
1: कुछ
0: सिर्फ
1: भी हो ना।
0: ईद ईद के मौके पर बल्कि हमेशा जो है माइनर जितने भी बच्चे हैं एहतियात करें। माइनर्स को जो है कोई भी व्हीकल ड्राइव करने से उन्हें मना करे, उन्हें ना दे।
1: और उन लोगों से भी जो बाइक का मतलब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर वो उन बाइकों को स्पीड में उठाते हैं,
0: एहतियातन
1: उनसे
0: चलाए।
1: भी।
0: बिल्कुल सही
1: बिल्कुल
0: साहिल, बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छा लगा आपसे ये इतनी
1: क्योंकि
0: इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने लिसनर्स तक पहुंचाई।
1: कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर बली है,
0: बिल्कुल,
1: अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे।
0: आमीन सुमा आमीन। अपने साथियों के नाम बताएं।
1: जी, मेरे भाई दो है, मुश्ताक और इम्तियाज, और एक गौडरा गांधरबल से फारुक अहमद मलिक,
0: जी
1: और एजाज अहमद हमदानी, और जितना जितने भी इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो सब सुनेंगे हमारे साथ।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये नगमा, और हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक।
1: जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: दीदी
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: शफात बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: जी शफात, कैसे हैं आप?
1: बस दुआ, ठीक हो मैम?
0: शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। जी
1: तो
0: शफात,
1: मैंने आज पहली बार ही ट्राई किया तो पहली बार ही कॉल भी लग गई है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है शफात कि आज आपने पहली बार ही कोशिश की और पहली बार
1: बार
0: ही
1: ही कॉल
0: फोन
1: लग
0: लग
1: गई।
0: गया। बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात
1: जी
0: है।
1: मैम, क्योंकि पहली बार आपसे बात हो रही है।

0: तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। शफात, अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप?
0: जी हम पश्मीने के साथ करें मैम।
1: माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम है कि नहीं? क्योंकि
0: हाँ बिल्कुल
1: ये
0: मैम,
1: पश्मीना जो है ना, ये हमारे कश्मीर की एक
0: ये
1: पहचान
0: कल्चर
1: है,
0: है एक। हाँ बिल्कुल
1: ये
0: मैम,
1: पहचान है, और पश्मीने की वजह से भी हमारे कश्मीर को बहुत नामावारी मिलती है हमारे कश्मीर को, क्योंकि
0: हाँ बिल्कुल,
1: पश्मीना
0: हाँ
1: एक
0: बिल्कुल,
1: पहचान है। बहुत अच्छा लगा
0: हाँ
1: कि
0: बिल्कुल,
1: आपसे बात करके, और इतना अच्छा काम करते हैं आप जिससे हमारा कल्चर जो है वो जिंदा रहता है। शफात, ये बताएं कि आजकल के नौजवानों की अगर हम बात करेंगे, क्या लगता है आपको, दिलचस्पी ले रहे हैं इस काम में?
0: बहुत काम है मैम,
1: बहुत
0: बहुत
1: कम।
0: काम। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि कल तो लोग रोजगार के पीछे भी, लेकिन उसमें तो मैम क्या बता सकता हूँ, लोग
1: मुनाफा ज्यादा नहीं मिलता है।
0: नहीं मिलता है मैम, नहीं, क्योंकि इस दौर की इस महंगाई में थोड़ा इस पे काम मिलता है, महंगाई
1: शफात,
0: तो बहुत
1: बहुत अच्छा
0: ज्यादा
1: काम है ये, लेकिन यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला और
0: है।
1: भी
0: आमीन
1: आपको
0: मैम
1: कामयाबी
0: जी,
1: दे,
0: आमीन
1: ताकि
0: आमीन आमीन,
1: हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी इस काम के साथ शौक और प्यार के
0: हाँ
1: साथ जुड़
0: बिल्कुल,
1: जाए।
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल
1: बताइए
0: मैम,
1: शफात, क्या सुनेंगे आज?
0: मूवी का नाम है बेवफा सनम।
1: बेवफा सनम, इसका कौन सा नगमा?
0: जी, दिल तोड़ के हसती हो मेरा,
1: बहुत ही प्यारा
0: वफाई मेरी
1: नगमा है
0: याद करोगे। हाँ बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल,
1: आपके साथ और कौन
0: तो
1: सुनेगा?
0: मेरे साथ है मेरे दो तीन दोस्त,
1: नाम बताए।
0: एक है साहिल,
1: हाँ
0: और है अफरोज पुलवामा से, और है नापोरा की निगर जान।
1: चलिए, आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

सामीन आपको बताया कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है। फोन नंबर है 2480364 2480364। और ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है हर मंगलवार को शब के 10 बजे। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा।

0: दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, आप रखेंगे अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले

0: जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शब के

रात 9:30 पर ईद उल अजहा के मौके पर ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ का तहरीर करदा एक ख़ुसूसी म्यूज़िकल फीचर पेश होगा। रावी हैं रफ़ीक राज और नईमा महजूर। शब 10 बजे उर्दू गज़लों का फरमाइशी फ़ोन इन प्रोग्राम पेश होगा हेलो महफ़िल गज़ल। प्रोग्राम पेश करेंगी फरजाना।

रात 9 बजे सुपानसर 2 ग्राम ब्रॉडकास्ट होगा हम सफर। प्रोग्राम का मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। इस मौजू पर बात करेंगे प्रोग्राम के रूह रवा मौलाना फयाज अहमद जरूर साहब। कल आप इसकी छठी किस्त सुनेंगे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा।

प्रोग्राम सुबोगाई पेशे खिदमत होगा सुबह 6:35 पर, सुबह 7:10 पर, ईद के मौके पर खुसूसी लाइव मॉर्निंग शो पाने सुबह आप सुनेंगे रशीद निजामी और सकीना राठौर के साथ।

से आज से मुतालिक स्पॉन्सर प्रोग्राम जोर जावर ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे मकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। सूफी सदा यह प्रोग्राम पेश होता है सुबह 10 बजे। कल का प्रोग्राम वादी के मारूफ सूफी शायर शशकराल से मुतालिक है। तहरीर अब्दुल रशीद नाज़ की।

गुलाम अहमद शेख वनपुरी और साथी शक्तियों में कलाम रहीम से पेश करेंगे दिन के 11:30 पर। बाजमी निस्वार आस्था होगी दोपहर 12:40 पर। दिन के 1:10 पर एनसीईआरटी का तैयार करदा सुपानसर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग।

2:30 बजे और फिर सफर 4:30 पर आप ईद रुफ सुनेंगे। पार्टी प्रोग्राम सफर 4 बजे नष्ट होता है, गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे ब्रॉडकास्ट होगा। धीरेवायु के प्रोग्राम में शाम 6:05 पर मामूल के अलावा गुलाम अहमद वानी से गुप्तगु होगी। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चों के हफ्तेवार महफिल भी सजेगी फलविन टूर। हालात वाकयात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शहरबीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। समीन यह कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम।

268 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। समीन, हमारी आज की मजरी पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर, जय हिंद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ग्यारह बजकर 27 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगले दो गीत जो है उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक और गीत होगा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की, और फिल्म का नाम है हीरो। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत, एक बार फिर से राजेश रोशन का संगीत होगा, इंदीवर के लिखे हुए बोल होंगे, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की होगी, फिल्म का नाम है कामचोर। इन दो फिल्मों से आप गीत सुनेंगे गीत मेरे मनमीत में।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता

0: है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:45 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है विशाल भारद्वाज का संगीत है, गुलजार के लिखे बोल है, लता जी की आवाज में होगा माचिस फिल्म से गीत, और इसके बाद होगा 1982 में आई फिल्म डायल 100 से गीत। कुमार इसके आवाज जो है वो है किशोर कुमार की है, महेंद्र कपूर ने इनका साथ दिया है। और इसके अलावा संगीत की बात करें तो संगीत है बप्पी लहरी का, तो आप इस गीत का आनंद लीजिए, दोनों गीतों का बल्कि मैं कहूंगी कि आनंद

जी हाँ दोस्तों, रात को नींद कैसे आ सकती है जब गीतों का ऐसा सिलसिला चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। अगला गीत आप सुनेंगे उत्सव फिल्म से, लता जी और आशा जी की आवाज में होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत है। और इस खूबसूरत गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाजत, उत्सव फिल्म के इस गीत के बाद आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा चाहेगी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य

0: उपकरण, उसके लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। एनआईए के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुसूचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की रात आपके साथ मैं हूँ माधुरी। कार्यक्रम है निशिगंधा, जहाँ जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है। आज हम

बात करेंगे जिंदगी की उस हकीकत की जिससे रोज अंदर ही अंदर हम लड़ते हैं। बजाहिर हम दिखते खुश हैं, शायद हो भी, पर हम आज बात कर रहे हैं उस कश्मकश की जो हमें अपनों से दूर कर रही है, हमें अपने अपने अजनबी बना रही है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अगर हैं तो जुड़ जाइए ना हमारे साथ, देखते हैं क्या हल निकलता है इस कश्मकश से निकलने का।

आरडी बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म आपकी कसम का ये गीत सुना आप सभी ने। और आज हमारा जो मौजू है थोड़ा सा भावनात्मक भी है और थोड़ा मुश्किल सा मौजू भी है और हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन क्या करें, हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा ना। आज का जो समय है ना, उसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उसके बावजूद हमारी आपस में एक दूसरे के लिए अजनबियत जो है वो बढ़ती जा रही है। घर में ही ले लीजिए, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, सभी एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी उनके बीच भावनात्मक दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। हम अपने अपनों को खोते जा रहे हैं और उन्हें अपने अपने अजनबी बना रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसकी है, कौन है यहाँ बेवफा।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और हम आज बहुत ही अपनी खास बात कर रहे हैं, अपने अपनों के दिलों का हाल जानने की कोशिश में आज हम निकल पड़े हैं। देखिए ना, आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, नौकरी की भागदौड़ है, शहरों का अलगाव और फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, इससे हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कमजोर हो रहे हैं। रविवार की एक छोटी सी फैमिली पार्टी ही को ले लीजिए। किसी शादी का उत्सव में जब सब इकट्ठे होते हैं तो मेज पर चाय नाश्ता चल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। अगर किसी ने पूछ भी लिया, बेटा नौकरी कैसी चल रही है, तो सामने से जवाब मिलता है, ठीक है चाचा, बस बात खत्म। कोई गहराई नहीं, कोई दिल से पूछताछ नहीं। ताई ने अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो सामने से जवाब में एक औपचारिक मुस्कान आ जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। क्या आपसी प्यार इतना हल्का होकर रह गया है? क्या हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं? मेरा कमरा, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरी शर्ट, मेरा जूता। पहले हम अपनी चीजें बांट लिया करते थे, अब अपना अपना करने लगे हैं। क्या कहीं हम में बदलाव आ गया है? अगर है तो हमें फिर से बदलने की जरूरत है। प्यार की कहानी दो लफ्जों की है तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और अपने आसपास उसे आजमाया जाए।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

आशा जी की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, और साथ में शरद कुमार की आवाज भी थी और अमिताभ बच्चन की भी आवाज आपको इस गीत में सुनने को मिली होगी। बात कर रहे हैं निशिगंधा में आज अपने अपने अजनबी हो जाने की। ये जो अजनबीपन बढ़ रहा है आपसे रिश्तों में, इसका एक तो सबसे बड़ा कारण जो नजर आ रहा है वो है समय की कमी। लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। चाचा शहर के एक छोर पर रहते हैं तो ताया दूसरे राज्य में। मिलना सिर्फ फेसबुक पर वो जो हैप्पी बर्थडे वाली शुभकामनाएं है ना, उन्हीं तक सीमित हो गया है। दूसरा, आप समझिए कि आर्थिक असमानता भी एक कारण है। एक भाई की आय अच्छी है तो दूसरे की कम। इससे आपसी रिश्तों में ईर्ष्या, तुलना और जो है दूरी भी पैदा हो रही है।

है। कभी कभी पुरानी बातें, संपत्ति के झगड़े या फिर शादी के लिए गए फैसलों पर भी मतभेद रिश्तों में दरार डाल देते हैं। बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर यह सच है, हम आज किसी को भी समझना नहीं चाहते और बिना समझे ही सामने वाले के लिए धारणा बना लेते हैं, और सब बिगड़ जाता है जब हम उसी धारणा में जीने लगते हैं, बिना एक दूसरे को सुने, बिना किसी को समझे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये निशिगंधा का सफर है जिसे लेकर मैं माधुरी हूँ आज की रात आप सभी के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं निशिगंधा में अपने अपने अजनबी की। जी हाँ, हर घर में ऐसा एक कश्मकश जो है वो आ ही गई है कि हम अपने अपने अजनबी होते जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि आज के युवा इस अजनबीपन को और बढ़ा रहे हैं। वो अपने दोस्तों और सोशल सर्कल से ज़्यादा जुड़ गए हैं, घर वालों से ज़्यादा उन्हें अहमियत देते हैं। घर पर चाचा चाची आएँ तो बस हेलो हाय और बाय। उनकी समस्याएँ यानी कि चाचा चाची की बातें, उनकी समस्याएं, उनके अनुभव सुनने के लिए आज के युवाओं में इच्छा ही नहीं रही है। पर सारा दोष जो है युवाओं पर नहीं डाला जा सकता, शायद हमने भी कहीं चूक कर दी है। रिश्तों से ज्यादा महत्व उनके अपने समय को दिया, उनके दोस्तों को दिया। जब समझने की जरूरत थी तब शायद हम ही चुप रह गए, और या फिर हमने ही रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी या उन्हें उस तरह से समझाया या उन्हें बताने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते जो हैं हमारे कितने मूल्यवान हैं और इन्हें हमें बचाना है। तो कहीं ना कहीं किसी एक पे गलती थोपना गलत होगा। ये हमारे आपसी समझ का ही परिणाम है कि आज हम अलग अलग होते जा रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में से घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और आज निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं अपने अपनों की, जिनसे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो दूर जाने से पहले इन रिश्तों को मना लेना चाहिए, अपने पास बुला लेना चाहिए और समय निकाल कर अपने, मतलब जो अपने हमारे अपने हैं, उनके लिए सोचना चाहिए और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ये जो दूरियां हैं ये घट जाएं, कम हो जाएं।

हमारे अपने भी हमारी जिंदगी में इसी तरह से शामिल हैं। उन्हें रोक लेना है, उन्हें जाने नहीं देना है। हमारे छोटे छोटी सी कोशिशें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं। अगर परिवार में पार्टी हो तो मोबाइल बंद करके बैठ के देखिए, पुरानी यादों को ताजा करिए, एक दूसरे की समस्याएं सुनिए और अगर जरूरत पड़े तो बिना शर्त मदद के हाथ बढ़ा दीजिए। एक छोटे कदम से बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चों को बचपन से ही रिश्तों के महत्व को सिखाइए। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। आखिरकार जीवन की यात्रा में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अगर चाचा चाची ताया ताई अजनबी बन गए तो फिर अपना कौन बचा। समय है कि हम इस अजनबीपन को तोड़ डालें और फिर से अपने बने। अपने अपने अजनबी बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये धीमी जरूर है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। इसे रोकना हमारे हाथ में है। परिवार की गर्माहट तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समय दें, सम्मान दें और प्यार दें। वरना भीड़ भरे घर में भी हम अकेले और अजनबी महसूस करते रहेंगे।

निशिगंधा का ये सफर कहता है कि आपसे यहीं इजाजत ले ली जाए। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार, बने रहिएगा आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा

0: जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। आपके साथ आज की रात मैं हूँ माधुरी।

बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग ये रहा, और ये गीत था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से, लता जी की आवाज और वसंत देसाई का संगीत।

विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से।

ये प्यारा सा जोशीला सा गीत सुना आपने गीता दत्त, महेंद्र कपूर, मुकेश मन्ना डे और साथियों की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म श्री 420 से।

हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म जाल से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म आजाद से, आवाजें लता और उषा मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे गीत लता जी के आवाज में फिल्म तीसरी कसम से, और शंकर जयकिशन का संगीत था। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म चोरी चोरी से, लता जी और मन्ना डे की आवाज है और गीत आप सभी के लिए है।

0: 90.
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये जो सफर आपने तय किया, इसका नाम था गीत सुहाने। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आते हैं इसमें आपके लिए, और एक आखिरी गीत इस सफर का बचा हुआ है, वो भी हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आशा जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और गीत आपके लिए।

गीत सुहाने का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मित्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत

0: चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah yesterday said the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah has said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district yesterday, the Home Minister said while threats originating across border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi last evening. In a social media post, Dr. Jaishankar said they exchanged views on the Indo-Pacific, the situation in West Asia and other regional, global and multilateral issues. They also reviewed the steady progress of the comprehensive strategic partnership between the two nations. India and Romania held the second meeting of the Joint Committee on Defence Cooperation in New Delhi to further strengthen bilateral defence ties yesterday. The meeting reviewed ongoing defence cooperation and discussed ways to expand collaboration in key areas. The two sides finalised

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई। रात सुरमई लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। किसे आए नजर अंधेरे में, हाँ कोई है मगर अंधेरे में, एक दो पल को फिर से उभरा है एक दिया डूब कर अंधेरे में, इससे आगे जमीन हो शायद, सोचकर पांव धर अंधेरे में।

मोहब्बतें उल्फतें शिकस्ता, शिकस्ता दिल हसरतें शिकस्ता, रहे सहे ख्वाब टुकड़े टुकड़े, बची बची लज्जतें शिकस्ता, करार के लम्हे टूटे टूटे, सुकून की साँतें शिकस्ता।

धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार

30 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:28 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। बात लफ्जों के दरमिया रख जा, अक्ल वालों रख जा, रूट कर सबसे जा रहा है तो दिल में झूठी तसल्लियां रख जा।

जगजीत सिंह की आवाज में वो बात है कि हर दिल की बात अपने आप ज़बां पर आ जाती है। ये बहुत अच्छी सी एक ये बात है जो आप तक पहुंचा रही हूं कि जो मेरा वो उसका गम हो, ये कैसे हो सकता है। शामो सहर का एक मौसम हो, ये कैसे हो सकता है। दिल में कुदूरत, जहन में नफरत और जुबां अंगारा हो, फिर लहजे का सुर मध्यम हो, ये कैसे हो सकता है। जज्बों का मासूम परिंदा उड़ता है हर मौसम में, रंजो खुशी में आंख न नम हो, ये कैसे हो सकता है। और दिल की बात समझने वाला कोई तो होगा, शहर ये सारा शहरे अजम हो, ये कैसे हो सकता है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये सफर है रात सुरमई का। समय हो गया है 2:41 और पूरे 47 सेकेंड्स।

चंदन दास की आवाज में ये गजल जरूर पसंद आई होगी आप सभी को। दरवाजा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज दे रहा था तेरा रास्ता मुझे। दिल पे वही है बोझ, वही सुबह शाम है, फिर भी ये साल जाने क्यों अच्छा लगा मुझे। मैं खुद ही जान बूझ के नजरें चुरा गया, वरना तेरे सुलूक ने टोका तो था मुझे। अगलों की तरह उसको भी दावा था साथ का, ये और बात आज वो तन्हा लगा मुझे।

इसी के साथ रात सुरमय का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए विदा माधुरी को। आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा

की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM गोल्ड चैनल 101 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ। नमस्कार।

वाकई में ही दोस्तों, जिसने इस दिल को और दिल के जज्बातों को समझ लिया, उसने सबका प्यार पा लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं लोग किसी से बात करते हैं, कोई प्यार से बात करता है तो कोई गुस्से से, लेकिन आपकी मीठी वाणी सुनने वाले के दिल को जीत लेती है। दिल एक मंदिर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ पत्थर के सनम फिल्म से, ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब वो गीत जो आपसे मैंने कहा था। धुन पहचान ली ना आपने, पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। अख्तर रोमानी की रचना थी और दोस्तों ये गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: जब कोई इंसान किसी को चाहने लगता है तो देखा गया है कि उसे उसकी वैल्यू ही सब कुछ लगने लगती है, उसके बिना कुछ भी नहीं लगता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

0: OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक।

संजोग फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, एसएच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा जब आपकी जिंदगी में इतनी कोई अमूल्य चीज आ जाती है। और अब एक और गीत सुनने का आनंद उठाते हैं।

संगम फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीत शंकर जयकिशन का।

सूरज फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अरे अगला गीत ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, एसएच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे जंगली फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधानों के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार

किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस कार्यक्रम में आप सभी को गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूं मैं वंदना चुग। नमस्कार।

किसी की आवाज, किसी की बात आपके दिल की इतने करीब हो जाती है कि आपको लगता है ये हमारे जीने की वजह बन गई है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना बरसात की रात फिल्म से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आपकी खिदमत में, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे इस जिंदगी हम दूर से पहचान लेती हैं।

हकीकत फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अंदाज फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, हर दिन की शुरुआत हमारे लिए नई होती है और हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे और नया करके दिखाएंगे और अच्छा ही सोचेंगे।

0: दूर का राही, इस फिल्म से ये गीत था। कृष्णा पंडित की आवाज में इरशाद की रचना थी और किशोर कुमार का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अरुणिमा, इस कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

घर संसार, इस फिल्म से गीता मन्ना डे और आशा भोसले का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रवि का संकेत। अब अगला गीत, जिसमें ये कहा गया है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपका दिल वहीं बसता है जहां आप रहते हैं। वैसे भी आप कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन जब अपने घर आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।

दोस्तों, फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे, श्री 420 फिल्म से ये गीत था। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज वही जानी पहचानी मुकेश की थी। अगला गीत आप सुनेंगे कोहरा फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ। कैफी आजमी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुप के साथ। दोस्तों ये तो सच बात है ना कि जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें खुद ही कदम चूम लेती हैं।

दोस्तों, हम समझते भी हैं और जानते भी हैं कि हर इंसान के जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन सब को हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और परवाह किए बिना ही उन जिंदगी में आए थपेड़ों को सहन कर लेते हैं। और फिर जब वक्त बीत जाता है तो हमें खुद को भी एहसास होता है कि हम तो बहुत बड़े मंजर से गुजर गए। आपको बता दें, मेरी जंग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, बहुत से गीत हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे हैं और हमें देते भी रहेंगे। और बहुत बार किसी का मूड ठीक नहीं होता तो वहां भी हमें गीत ही याद आते हैं। और अगला गीत शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों का गाया हुआ है। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हर गीत में कोई ना कोई बात छिपी होती है और यहां भी ये गीत हमें कह रहा है कि हमें अपना स्वभाव ऐसे सम रखना चाहिए कि हर कहीं हम अपने आप को ढाल लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी भरोसे पर आधारित होगा। ये दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन

सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर में 92 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ ही समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों, हर इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है, इसलिए अपने कदमों के निशान आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे ही छोड़कर जाएं।